सुप्रभात। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 39 सेकंड हो रहे हैं। आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को

6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दो फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में चौथा वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रभु स्मरण के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम ओ वंदना।

ये तो वाकई में सच है कि इस संसार में आकर भौतिक रूप से प्राणी माया के आकर्षण में फंसकर उसके आकर्षण ही इतना आकर्षक होता है कि प्राणी बहुत मुश्किल से बचा पाता है, लेकिन जो इसके गिरफ्त में आ जाते हैं वे इधर उधर तेरी मेरी छाछ मेरी सब में अपने इस जीवन अपने समय अपने सांसों को व्यर्थ गंवाते हैं। और फिर वह परम नाम जो स्मरण जिससे कि मुक्ति है

परमपिता से मिलने का जो मार्ग है, जो उन तक पहुंचने का हम लोगों का जो आशय होता है, उससे विरत हो जाते हैं। ये माया होती ही ऐसी है। तभी तो कबीरदास जी कहते हैं कि माया महाठगिनी हम जानी।

हे प्रभु, संसार में इस जीवन में संघर्ष तो नित नित कदम कदम पर है। संघर्ष से जीवन का एक ऐसा पता नहीं कैसा रिश्ता है जो है, और चाहे कितनी भी परेशानियां आए, है ना, लेकिन हे प्रभु, मन तो घबराता है। अंधकार जब छा जाता है चारों तरफ तो मन आकुल व्याकुल हो जाता है, और यहाँ इस स्वार्थी संसार में किससे क्या आशा की जाए कि कोई आपके साथ खड़ा भी हो। लेकिन हाँ, एक तत्व जरूर ऐसा है, और वो है परमपिता। आप उसे अगर दिल से, हृदय से याद करें, अपने आप को उनसे एक ऐसा आत्मिक रिश्ता जोड़ें, तो फिर वह हर कदम पर, जीवन के हर पल पर वह आपके साथ रहेगा। यह तो बस हृदय और मन की निष्ठा और विश्वास की तो बात है, और इसको करने में हर्जी क्या। अगर हम ये कहें कि प्रभु, अब जो भी है, हार है या जीत है, जिंदगी के कोई भी रंग हो, कोई भी स्थिति हो, प्रभु हमने तो अब अपना जीवन, अपना सर्वस्व आपको सौंप दिया, अब आप ही जाने प्रभु, हमने तो आपका हाथ पकड़ लिया, अब हार हो या जीत हो प्रभु, हमें कुछ नहीं पता, वो सब आपको सौंप दिया।

0: आप सुन रहे थे अभी संवे स्वरों में देशभक्ति पर रचना को। इसके अलावा जिन गायक स्वरों में भक्ति पर रचनाएं सुनी वे गायक स्वर थे पंडित कुमार गंधर्व, लता मंगेशकर, ओम व्यास और साथी जन और उस्ताद राशिद खान। आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। श्रोता साथियों, चिंतन बिंदु क्रम में लीजिए, प्रस्तुत है आज संत कबीरदास जी के विचार। आलेख और वाचन स्वर है राजेश शर्मा का।
1: के साथ साथ साधक, दार्शनिक और तत्वान्वेषी थे, भक्त और ज्ञानी थे। कबीर साहित्य में जहाँ दर्शन, आध्यात्म, ज्ञान, वैराग्य की गूढ़ता मिलती है, वहीं उनके साहित्य में समाज सुधार का शंखनाद भी है। वो दार्शनिक होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। जन जीवन का उत्थान कबीर के जीवन की आराधना थी। सुधार का समन्वय स्वरूप उन्होंने भक्ति के आडंबरों पर चोट करके किया, वहीं अंधविश्वासों, रूढ़िवाद परंपराओं और सामाजिक परंपराओं पर भी निर्भीकता से कहा। भक्ति में सुधार, समाज की कुप्रथाओं में सुधार, जीवन के हर क्षेत्र में सुधार कबीर के जीवन की साधना रही है। वास्तव में कबीर का जीवन उच्चतम मानवीय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। कबीर के पहले तथा समसामयिक युग में भक्ति साधनाओं में सबसे प्रमुख भक्ति साधना रही है। भक्ति आंदोलन ने भगवान की दृष्टि में सभी के समान होने के सिद्धांत को दोहराया। कबीर की भक्ति भावना इसी तथ्य से जुड़ी है। भक्ति पथ में भक्ति के द्वारा प्राण स्पंदन देने वालों में कबीर भी प्रमुख हैं। अनेकानेक साधनाओं के अंतर विरोध के युग में कबीर का प्रादुर्भाव हुआ। कबीर के व्यक्तित्व को सभी अंतर विरोधों ने प्रभावित किया। इस पर कबीर ने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया। कबीर में परिस्थिति जन्य निर्णय की अभूतपूर्व क्षमता थी। वो आत्मचिंतन से प्राप्त निष्कर्षों को कसौटी पर कसने में कुशल थे। कबीर ने मानवतावादी तत्वग्राही व्यक्तित्व से अपने दृष्टिकोण में मजहबी, वर्गगत अहंकार और आचार संहिता की उलझा देने वाले तत्वों को भुला त्याग दिया। कबीर नैतिकता से विकसित भगवत प्रेम में मानव कल्याण समझते हैं। कबीर की दृष्टि में यही मानवता का मूल आधार है। कबीर जीवन का चरम लक्ष्य परम तत्व की प्राप्ति है। इस तत्व को प्राप्त करने का प्रमुख साधन ज्ञान और प्रेम है। कबीर के अनुसार ज्ञान से तात्पर्य शास्त्र ज्ञान के अहंकार से मुक्त व्यक्ति को सहज रूप से ज्ञान होता है। ऐसे ही प्रेम का सहज रूप कबीर को मान्य है। कबीर ने आध्यात्मिक, धार्मिक, दार्शनिक और साधना के स्तर पर समन्वय का संदेश दिया। कबीर के अनुसार पिंड और ब्रह्मांड से भी परे निर्विशेष तत्व है, वही सबसे परे परम तत्व है, जिसका अनुभव होने पर भी वो वर्णनीय नहीं है। पिंड और ब्रह्मांड से परे का जो तत्व है वही हरि है। उसका कोई रूप नहीं, वो घट घट में समाया है। गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण है, बांट छाण क्यों जहिए, अजर अमर कथे सब कोई अलख ना कथना जाई। इसी चिंतन में कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाह

0: पर भीतर पानी फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथों ज्ञानी। वो कहते हैं पानी ही से हिम भया, हिम है गया बिलाई। उनके अनुसार प्रेम साध्य भी है साधन भी। प्रेम स्वयं ही प्रेम का वर्णन करता है। केवल प्रेम के अनुग्रह से प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम लौकिक अलौकिक दोनों स्तर पर एक सा रहता है। प्रेम वस्तुतः आत्मरति रूप है। आत्मबोध की सहज स्थिति आत्मरति है। कबीर ने आध्यात्मिक प्रेम को लौकिक माध्यम से व्यक्त किया। कबीर का सौंदर्य सविशेष ब्रह्म है। इससे उनके अंतःकरण में भगवान का प्रेम जागा तो कबीर ने कहा, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। रहस्यवाद की तीन अवस्थाएं कबीर ने बताई, अनुराग उदय परिचय और मिलन। कबीर में भावनात्मक रहस्यवाद की प्रथम अवस्था से ही साधनात्मक रहस्यवाद के ही दर्शन होते हैं। सुरति समाणी निरत में निरत रही निर्धार, सुरति निरत परिचा भया तब खुले स्वयं द्वार। कबीर का दृष्टिकोण सुधारवादी ही रहा। कबीर ने किसी धर्म विशेष और दर्शन की पताका ऊंची नहीं की। उन्होंने तो अपने मानवीय तत्वों से अपने आप को संबद्ध रखा। धर्म और सुधार के नाम पर कबीर ने जन जन को उलझाया नहीं, उन्होंने तो खंडन कर उलझनों को दूर किया। जनमानस को अभेद की ओर प्रेरित कर भ्रम माया से दूर रहने की प्रेरणा दी।
1: आप सुन रहे थे अभी चिंतन बिंदु क्रम में संत कबीर दास जी के विचार। आलेख और स्वर राजेश शर्मा का था। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण।

महाबली रावण ने अपने भुजबल से सारे विश्व को अपने अधीन कर लिया था। बढ़ते अनाचार और धर्म के प्रति अनास्था देखकर पृथ्वी भयभीत और व्याकुल हो गई। अंत में और कोई उपाय न देख पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वहां पहुंची जहां रावण से त्रस्त और उत्पीड़ित देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर उन्हें अपना हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने धरती को धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करने का उपदेश दिया।

आप सुन रहे थे अभी श्री रामचरित मानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण गायक स्वर महेंद्र कपूर और साथियों के संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। लीजिए अब प्रस्तुत है आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज आप सुनेंगे 10:30 पर सुबह यतीन्द्र चतुर्वेदी का लिखा हुआ रूपक कहे गए दास कबीर। फोन इन कार्यक्रम का समय रहेगा पूर्वाह्न 11 बजे का और पूर्वाह्न 11:30 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम कबीर प्रेम सत्य और समरसता।

दोपहर 12:30 का समय रहेगा ब्रज लोकगीत कार्यक्रम का। आज कलाकार होंगे दामोदर शर्मा। बहने कार्यक्रम सुनेंगी वनिता लोक दिन में 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में बहने चर्चा सुनेंगी महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य और बच्चों को मोटापे से कैसे दूर रखें विषय पर। आरोग्य क्रम में डॉक्टर सृष्टि भारद्वाज से ली गई भेंट वार्ता इसी कार्यक्रम में बहने सुनेंगी। विषय होगा गर्मियों में कैसा हो आपका आहार। भेंट करता होंगी रेशमा गर्ग। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा दोपहर 2:30 का। शाम 5:00 आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण। ये कार्यक्रम आप कार्यक्रम की समाप्ति तक सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के साथ आप शेष कार्यक्रम आकाशवाणी के न्यूज ऑन AIR इस ऐप पर सुन सकते हैं। संध्या 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी दिवस और राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती।

0: बढ़ेगी खेती की आय, मृदा स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि विषय पर। साथ ही सुनील कुमार चौधरी से ओपी सिंह की ली गई भेंट वार्ता भी आप इसी कार्यक्रम में सुनेंगे। विषय होगा टिकाऊ खेती के फायदे। संध्या वंदन कार्यक्रम संध्या 6:45 पर सुनिएगा। संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता डॉक्टर प्रमोद वल्लभ गोस्वामी की। विषय होगा ब्रज के मंदरन में संगीत परंपरा। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सहानी शाम 7:31 पर और श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 12 बजे भी कार्यक्रम गीत बात SMS के अंतर्गत। रात्रि 10 बजे सुनिएगा गोकुल चंद्र गोस्वामी का लिखा हुआ आज हाउ लीला प्रसंग रासलीला क्रम में। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में विदुषी भारती सिंह का गाया ख्याल गान सुनिएगा। और ब्रज दर्पण कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 9:30 का। हिंदी वार्ता क्रम में 9:00 आज आप सुनेंगे डॉक्टर दीन बंधु समाधिया की वार्ता। विषय होगा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हमारा अपना योगदान। और ब्रज माधुरी कार्यक्रम में प्रातः 7:31 पर आज आप सुनेंगे कवि मुखसुख क्रम में कवि गोपाल प्रसाद गोप का काव्य पाठ। ये था आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आइए सुनते हैं आज विजय सिंह नौलखा से जानकारी पालतू पशुओं को रेबीज से कैसे बचाएं।
1: कि पालतू पशुओं को रेबीज से कैसे बचाएं। रेबीज कुत्तों का एक प्रमुख रोग है जो कि पागल कुत्ते के काटने से उसकी लार में पाए जाने वाले विषाणु द्वारा पालतू पशुओं तथा मनुष्यों में फैलता है। यह एक अत्यंत घातक रोग है जिसमें समय पर बचाव का टीका न लगाने पर काटे जाने वाले पशुओं निश्चित रूप से दर्दनाक मौत हो जाती है। अन्य पशु जैसे बिल्ली बंदर नेवला शियार व लोमड़ी आदि के काटने से भी रेबीज रोग होने की संभावना रहती है, किंतु भारत में रेबीज के लगभग 96% मामले कुत्ते के काटने के द्वारा ही होते हैं तथा 4% ही अन्य पशुओं के काटने से होते हैं। यदि दुधारू पशु को पागल कुत्ता काट ले तो उसका दूध पीने या मांस खाने से रेबीज होने की संभावना बनी रहती है। अब चर्चा करते हैं इसके रोग के लक्षणों की। कुत्तों में रेबीज के लक्षणों में मुख्यतः चिड़चिड़ा स्वभाव होना, लकड़ी कपड़ा पत्थर या मिट्टी को खाना, रोग की उग्र अवस्था में जो सामने आता है उसे काटने के लिए दौड़ना, आवाज में अंतर आना, मुंह का खुला होना, पूंछ लटक जाना तथा पक्षाघात यानी लकवा हो जाना आदि प्रमुख कारण है। रोगी कुत्ते की मौत लक्षण प्रकट होने के 10 दिन के अंदर ही हो जाती। अन्य पशुओं जैसे गाय व भैंसों में अपचन, अचानक दूध में गिरावट महसूस होना, कान का ऐंठना, अत्यधिक लार गिरना, निगलने की शक्ति नहीं बचना, दांतों को पीसना तथा पानी न पी पाना तथा एक खास किस्म से रंभाने की आवाज निकालना आदि प्रमुख लक्षण है। भेड़ बकरियों सुअर में भी लगभग इसी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। मनुष्यों में यह बीमारी हाइड्रोफोबिया कहलाती है क्योंकि इससे संक्रमित व्यक्ति पानी से डरने लगता है, तेज प्रकाश, अत्यधिक शोर व ठंडी हवा सहन नहीं कर पाता, मुंह से लार गिरने लगती है, अत्यधिक पसीना आने लगता है तथा शरीर ऐंठने लगता है। अंत में 2 से 3 दिन के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। प्रयोगशाला में विभिन्न टेस्ट करने के उपरांत इस बात की पहचान हो जाती है कि पशु इसी रोग से पीड़ित है। अब चर्चा करते हैं कि रेबीज रोग का क्या उपचार है व क्या बचाव हो सकता है। कुत्ते अथवा अन्य जानवरों द्वारा काटे हुए स्थान अथवा खरोंच का उपचार जितना जल्दी हो सके उतना अधिक फायदेमंद होता है। काटे हुए भाग को फिनॉल युक्त साबुन आदि से अच्छी तरह से धोएं और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पानी की तेज धार के नीचे रहने दें। यह साधारण प्रक्रिया रेबीज को रोकने में अत्यंत मददगार साबित होती है। इसके बाद टिंचर अथवा बीटा इनका लेप लगा लें और किसी योग्य चिकित्सक की सलाह लें। जहां तक हो सके कटे हुए भाग में टांके न लगवाएं। रोग से बचाव के लिए मुख्यतः काटने वाले पशु पर 10 दिन तक नजर रखनी चाहिए। अगर जानवर में रेबीज के लक्षण नजर आ रहे हों अथवा जानवर 10 दिन के निरीक्षण अवधि में उसकी मृत्यु हो जाए तो पागल पशु द्वारा काटे गए पशुओं तथा मनुष्यों में तुरंत बचाव के टीके लगवाने चाहिए। ये टीके बाजार में आसानी से उपलब्ध होते हैं। आजकल रेबीज से बचाव के लिए कुल 6 इंजेक्शन का कोर्स होता है। पहला इंजेक्शन काटे गए दिन पर, फिर उसके तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, उसके बाद 14वें दिन, फिर 28वें दिन और अंतिम यानी 6ठा टीका जो है वो 90 दिनों के बाद लगवाना। किसी जानवर के काटने के तुरंत बाद कम से कम 10 दिनों की अवधि में जितने इंजेक्शन लगते हैं तुरंत अवश्य लगवाने चाहिए।
0: आप सुन रहे थे भी कार्यक्रम खेती।

0: की बातें क्रम में पालतू पशुओं को रेबीज से कैसे बचाएं विषय पर जानकारी दे रहे थे विजय सिंह नौलखा। और वक्त हो चुका है संस्कृत समाचारों का, अब से कुछ ही देर में।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती समारोहे मुख्य अतिथिरूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारत परं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायि अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन सम्बलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी सेशल्स देशे ह्यः मारिशस् देशस्य समकक्षेन डॉक्टर नवीनचन्द्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मारिशसस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मारिशस् वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षी अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडी नगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षी अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्कर समूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानां आरक्षी अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकम् आर्थिक सहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते।

अभी आप सुन रहे थे तलत महमूद साहब की आवाज़ में फिल्म वारिस के इस गीत को। संगीत दिया था अनिल विश्वास ने। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आपने सुना अभी सांझ और सवेरा फिल्म के गीत को, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लिखा था। गीत को हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: झुक रही है, निगाहें उठ उठ के झुक रही है।
1: मजे मुहब्बत के आ रहे हैं,
2: वो हमसे चुप है, हम उनसे चुप है।

सरगम, आपने सुना भी इस फिल्म के गीत को लता मंगेशकर और चेतालकर की आवाज़ में। गीत को लिखा था गीतकार पीएल संतोषी ने और संगीत दिया था सी रामचंद्र ने। साथियों, इस वक्त आप आनंद दे रहे हैं पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के अंतर्गत। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आपने सुना फिल्म यहूदी केस गीत को? आवाज़ें थी लता मंगेशकर और साथियों की, शब्द रचना गीत गीतकार शैलेंद्र की और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: आप अभी सुन रहे थे लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज में जवक फिल्म के इस गीत को। लिखा था प्रेम धवन ने, चित्रगुप्त का संगीत था। आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। श्रोता साथियों, अब समय हो चुका है अगले प्रसारण का, तो बस अब से कुछ ही देर में।
1: अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के कई अन्य मंत्रियों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया।

0: पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के कई अन्य मंत्रियों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक अवसंरचना सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कहा, निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए प्रत्येक परियोजना। और प्रदेश भर में शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान, आज से घर घर जाकर दवा पिलाएंगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी ने कल प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। यह पहली बार है कि जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी चर्चा की, जिसे 21 जून को दुनिया भर में मनाया गया।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की बनी मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। वहीं जल संरक्षण के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। प्रदेश भर में कल प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं के साथ ही आम जनता ने सुना और सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर देश की मिट्टी से निर्मित भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को अपनाने तथा स्थानीय कुम्हारों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित प्रतिमाओं को प्राथमिकता देने की अपील करके आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन से जोड़ने का कार्य किया है। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुना। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कल सिद्धार्थनगर में स्थानीय लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देशवासियों को राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एक्सप्रेसवे, औद्योगिक अवसंरचना

0: संरचना, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा और ईवी चार्जिंग सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, जिला स्तरीय महिला और पुरुष चिकित्सालयों तथा होटलों में फायर एनओसी की स्थिति का तत्काल सत्यापन कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेस वे सहित अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए एक्सप्रेस वे के किनारे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हाथरस जिले में 548 करोड़ रुपए की लागत वाली 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर लाभार्थियों को आवास की चाबी, स्मार्टफोन और चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथरस में जल्दी ही प्रोसेसिंग सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका लाभ वहां के आलू उत्पादक किसानों को मिलेगा।
1: अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ अब उद्यम यहां पर आ रहे हैं। यहां पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना, प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है, उसके कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री ने आगरा में जन प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति तथा कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या दौरे के दूसरे दिन कल डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति कॉन्क्लेव अयोध्या 2026 में शामिल हुई। कार्यक्रम में मां बेटी संवाद के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास जैसे विषयों पर चर्चा की गई। अयोध्या के श्री राम मंदिर दान के मामले में कल पुलिस तथा प्रशासन की टीम ने गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों के घरों पर छापेमारी करके तलाशी ली। इस दौरान आरोपियों के परिजनों से पूछताछ भी की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की। आज पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में फिर से पेश करेगी। कल से प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई। कल पहले दिन बूथ दिवस पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाई गई। वहीं आज से 3 जुलाई तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर ये दवा पिलाएंगी। अभियान के पहले दिन कल विभिन्न जिलों में जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बच्चों को दवा पिलाकर पोलियो से बचाव का संदेश दिया। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने जिला महिला अस्पताल से बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में वर्षों पहले पोलियो का उन्मूलन हो चुका है, लेकिन पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके वायरस अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में सभी अभिभावक अपने बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा अवश्य पिलाएं। इस मौके पर सदर सांसद श्री शुक्ल ने गोरखपुर के नवाचार मैटरनल इमरजेंसी असिस्टेंस फॉर टाइमली रेफरल एंड इंटेंसिव सर्विसेज मातृ सेवा का भी शुभारंभ किया। इस नवाचार के जरिए मातृ मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य है। बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण उमस भरी गर्मी के बीच आज सुबह प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह सुबह हल्की हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को फिलहाल उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के कई अन्य मंत्रियों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक अवसंरचना सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कहा, निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए प्रत्येक परियोजना। और प्रदेश भर में शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान, आज से घर घर जाकर दवा पिलाएंगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: Tugenden geäußert.
1: अब आरंभ हो है आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम। ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सब श्रोता साथिन को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।

0: साथियों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं और अच्छे ही होंगे। हम तो यही कामना कर रहे हैं राधे रानी दे कि आप सब बढ़िया रहें, राजी खुशी रहें और स्वस्थ रहें। जब तन और मन स्वस्थ हो हो तो फिर आनंद तो मिलेगा कि ना मिलेगा, और फिर अपने ब्रजमादरी कार्यक्रम में तो आनंद ही आनंद है। और हम जाने हैं, अब आते हैं कि आप सबन को जो प्रतीक्षा रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी समय होए और हम ब्रजमादरी कार्यक्रम सुने। तो आज देखो, हम आपके ताई जो लेके आए हैं कवि मुखशुक्रम में, क्योंकि आज है सोमवार और आज के दिन हम, आप सब जानो हो कि आपके तरह लेके आवे हैं हम काव्य पाठ कवि मुखशुक्रम में। तो आज फिर आओ, फिर बिना देर किए आओ, आनंद लें काव्य रस को और चलें फिर काव्य लोक में। बहुत ही खूबसूरत दुनिया होवे है ये तो, और कवि की कल्पना तो हो गई है, बिन में अपने रंग भरे हैं कवि, लेकिन ऐसो नए नए वामे यथार्थ को जो है पुट हुए हैं। तो फिर आओ चलें और देखें आज हमारे जो कवि हैं गोपाल प्रसाद गोप, देखें कैसे कैसे रंग लाए हैं अपने कवितान में। तो फिर बिना देर के आओ, फिर आनंद लें कार्यक्रम को।
1: पहले मुख तो पाठ करूं हूं। ब्रज केली के रचैया घनश्याम कुन मनु है। ब्रज केली के रचैया घनश्याम कुन मनु है। हृदय में प्रभु बिराजे ब्रज बाम कुन मनु है। कोटि कोटि प्रणति वृषभानु जाके चरणन है। कोटि कोटि प्रणति वृषभानु जाके चरणन। गिरिराज

ब्रज धाम कुन मन है गिरिराज भानु जाकू, ब्रज धाम कुन मन है। एक छंद ब्रज की पनिहारिन को सौभाग्य बतावे के लिए। ब्रह्मा हु भूले हैं चौकड़ी कूं, ब्रह्मा हु भूले हैं चौकड़ी कूं, लखी लीला भ्रमे सब वेद निहारी। ऊधो हु सूधो भयो ब्रज में, ताको ज्ञान गरो सुन के ब्रज गारी। बैकुंठ लोक को नाथ यहाँ बिचर्यो।

नारी घूंघट ओट निहार रिझाय नचाय दियो ब्रज की पनिहारी। घूंघट ओट निहार रिझाय नचाय दियो ब्रज की पनिहारी। ब्रज में वे रहिए ब्रजवासी,

मे ठकुरानी राधासी ब्रज में वे रहिए ब्रजवासी। ब्रज की कुंज करील जमुन तट, ब्रज की कुंज करील जमुन तट, मिले प्रेम अविनाशी। ब्रज में वे रहिए ब्रजवासी। ब्रज रज कण दृढ़ राश्रय हिय कर, ब्रज रज कण दृढ़।

आसी। अब एक गीत। हमारो देश विभिन्न विभिन्न संप्रदाय और जाति में बढ़तो जा रहे हो है, हम जाको उत्थान कैसे कर पाएंगे, जाके लिए एक गीत पढ़ूं और बातें पहले चार पंक्ति को एक मुक्तक पढ़ूं हूं और

भावो भैया त्यागो हृदय में जितने हैं घात दाबो भैया। उत्थान चाहो करनो चलनो परे गो मिलके, उत्थान चाहो करनो चलनो परे गो मिलके। कछु कूं गले लगाओ कछु छुओ पावो भैया, कछु कूं गले लगाओ कछु छुओ पावो भैया। अब एकता के काजे एक गीत। जब तलक एक होंगे नहीं हम सबई, जब तलक एक होंगे

जब तलक एक होंगे नहीं हम सवई, राह अपनी अलग जो बनाते रहे, राह अपनी अलग जो बनाते रहे। जाने कोई कहूं के कहूं जाएंगे, जब तलक एक होंगे नहीं हम सभी। जब तलक अगलो बंद है, जब तक हम एक नहीं होंगे, हमें परमुखापेक्षी रहना पड़ेगा। जाकी संदर्भ में अगलो बंद।

कहा बिखरे तिनके की भांति जो रहते रहे, बिखरे तिनके की भांति जो रहते रहे, जितने अवसर मिले सब निकर जाएंगे जब तलक एक है के, जब तलक एक होंगे नहीं हम सबई, टूट के सिगरे सपने बिखर जाएंगे जब तलक, जिनके आशीष ते फूल फलते रहे, जिनके आशीष ते फूल फलते रहे, लोग आके चरण में झुका में हैं सर,

हम सबई टूट के सिगरे सपने बिखर जाएंगे जब तलक एक। अब करो बंद आपस में पग खेंच बो,

ये जो जारी रहो तो उतर जाएंगे हाथ, वो अब सबई कुं सहारो बने। हाथ वो अब सबई कुं सहारो बने।

और अब में एक दो छंद। हम ब्रजवासी अपनों प्रभात अपनों भोर कब माने हैं या के संबंध में एक छंद पढ़ू हूं। कान परी एक बात अहो, चहु धा ब्रज में अति सोर भयो है, और डोलत है गही बांसुरी या कर, मंडल को चित चोर नयो है।

बस में जो किशोर बसे बाही ठोर गयो है। और नंद लला ने को दीख परे तब ही समझू अब भोर भयो है, तब ही समझू अब भोर भयो है। एक सखी जो स्वप्न में ठाकुर जी को दर्शन कर रही थी, बाकू भोर कैसा लग्यो के कान

करी मटकी, पटको दधि भाजन फोर दयो हे, बाह गही अतेले पट्यो, ममहार हिया झट तोर दयो हे, बाह गही अतेले पट्यो, ममहार हिया झट तोर दयो हे, नैना खुले दुरी श्याम गयो, समझी की निगोढ़ जी भोर भयो हे, नैना खुले दूरी श्याम गयो, समझी की निगोढ़ जी भोर भयो हे।

है ना, देखो तरिया तरिया के रंग काव्य रस में आप सबन ने अभी जो है महसूस किए होगो कि कहूँ तो देखो उद्धव और गोपियन के बीच जो योग और प्रेम निर्गुण है ना और सगुण, योग और प्रेम, तभी तो वे कह उठे हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, अंत में कह उठे और उद्धव को सारो ज्ञान प्रेम के आगे सब धरो को धरो रह जाए है। तो बहुत ही बढ़िया ये जो प्रसंग है हम सवन ने सुनो हो तो अभी या काव्य रस में या कोई चर्चो अभी आई है थी और कविता में हम सवन ने सुने हो तो आनंद लियो। और या के अलावा आप देखो एक रंग और देखे हो या कभी अपने काव्य उसमें संसार में कि अगर हम सब अलग अलग होंगे, अलग अलग अपनी अपनी राह चलेंगे तो देखो यहाँ में तो सब बिखराव ही बिखराव है। या लिए जीवन में अगर कहें ना कि विकास करना हो, आगे बढ़ना हो तो सब मिल के चलें, मिल के रहें, मिलजुल के आगे बढ़ें, कहें ना कि मिली जुली संस्कृति और हम सबन को जोड़े हैं, तो यह जीवन में बहुत ही जरूरी है कि हम सब मिलके एक रहें, एक चलें। तो यानी कि एकता पर कवि महोदय ने अपनी बात रखी कि हम सब उनको ये संदेश दियो कि एकता सबसे ज़्यादा जरूरी है। और यह के अलावा कान्हा, अब कान्हा को अगर जिक्र ना हो तो कैसे है सके, ये तो बिल्कुल ना है सके। तो अंत में जो आपने सुने होते हो तो कैसे सखी जो है सपने में कान्हा को देखे है ना, अब आपको जो वर्णन मिलो है। बहरहाल ये है कि आज को काव्य रस तो बस कहाँ कहे हो, बहुत ही आनंद। और अपने काव्य ब्रज माधुरी कार्यक्रम में आगे बढ़ें और फिर कछु लोकगीत सुन लिए जाएँ। तो आओ सबसे पहले सुने जे लोकगीत।

तो अभी जो है आप सुन रहे थे ओम प्रकाश डांगुर की आवाज में इसे लोकगीत को, और आओ अब सुने एक और लोकगीत।

तो अभी आप सुन रहे थे श्रीमती नीरज की आवाज़ में इस लोकगीत को, और आज को ब्रजमादरी कार्यक्रम यहीं विश्राम ले है। तो आप सबन को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि

0: जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता करने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार,

0: प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317 और 0112341444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा। बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो। माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुज।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

आप सुन रहे थे अभी फिल्म अखियों के झरोखे से का ये गीत, आवाजें थी हेमलता और जसपाल की। अब आइए सुनते हैं ये अगला।

शब्बीर कुमार की आवाज़ में आपने सुना अभी फिल्म बेताब के इस गीत को। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा था, संगीत दिया था R.D. वर्मन ने। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आपने सुना अभी कुमार शानू, अनु मलिक और साथियों की आवाज़ में फिल्म बाजीगर के इस गीत को। देव कोहली ने शब्द रचना को इस गीत को संवारा था और

0: दहेक फिल्म में ये आवाज़ें थीं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की, जिसका कि अभी आपने गीत सुना। और आज का ये कार्यक्रम इसी गीत के साथ ही अब यहीं पर संपन्न होता है। साथियों, अब वक्त हो चुका है कार्यक्रम हिंदी वार्ता का। आइए आज हम सुनते हैं डॉक्टर दीन बंधु समाधिया की ये वार्ता। विषय है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हमारा अपना योगदान।
1: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ऐसा माना जाता है कि मनुष्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में सबसे अधिक बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ है। किंतु वर्तमान समय में ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अपनी बुद्धि और विवेक से मोह भंग हो गया है, क्योंकि वह वही कार्य करने लगा है जो कि उसको और उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अभिशाप साबित होगा और उसके लिए इसको सीधा सीधा जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्राकृतिक संपदा वह प्रकृति के साथ खेल रहा है, उससे छेड़छाड़ कर रहा है। इसके कारण वर्तमान समय में उसके सामने पर्यावरण प्रदूषण जैसी विकराल समस्या मुंह खोले खड़ी है। प्रकृति हमारा अपना घर होती है जिसमें हम निवास करते हैं, इसलिए इसमें निवास करने वाले प्रत्येक जीव को इसके रखरखाव की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। भारतीय संस्कृति में आदि काल से ही प्रकृति की पूजा किसी न किसी रूप में करते रहे हैं, जैसे सूर्य व चंद्रमा की पूजा, पीपल के वृक्ष की पूजा, केला आम आदि वृक्षों की पूजा, फूल पत्तियों की पूजा, तुलसी के पौधे की पूजा, कुएं की पूजा, नदियों व सागर की पूजा इत्यादि। पर्यावरण के अनेक अंग हैं, वहीं दूसरी ओर मानव प्रकृति का शोषण भी बड़ी बेरहमी से करता जा रहा है। मनुष्य अपने भौतिक लाभ के लिए बिना सोचे समझे प्रकृति का दोहन कर रहा है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए मानव के दिल में कोई रहम नहीं रह गया है, वह बेदर्दी से इसका दोहन करता जा रहा है। वर्तमान समय में मानव अपने निहित स्वार्थवश पर्यावरण को दिनों दिन नष्ट करता चला जा रहा है, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में हमारा पर्यावरण इतना प्रदूषित हो जाएगा, इसमें सांस लेना भी दूभर हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियों को हम एक ऐसा पर्यावरण देकर जाएंगे जो कि पूर्णतः दूषित होगा, और वह इस सब के लिए सीधा सीधा हम लोगों को ही जिम्मेदार व दोषी ठहराएंगे। और वास्तव में यह अपने आप में सही होगा, जिसको हम नकार नहीं सकेंगे, क्योंकि आज जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। और यदि हम सब चाहें तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से धीरे धीरे निजात पा सकते हैं तथा हम अपने लिए तथा अपने बच्चों के लिए एक स्वच्छ पर्यावरण बना सकते हैं, जो कि समाज व राष्ट्र व स्वयं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कुछ आवश्यक कदम उठाएं तथा उन्हें व्यावहारिक जीवन में एक आदत बना लें तो निश्चय ही पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है तथा भविष्य में आने वाली एक भयंकर कष्टकारी समस्या को रोका जा सकता है। इसी तरह देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर पर्यावरण प्रदूषण को रोके, हम दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें तथा साथ ही साथ देश के उच्च अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को इसको रोकने के लिए आगे आना होगा। देश में पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा व इसके साथ साथ हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में अपना योगदान विभिन्न स्तरों पर दे सकते हैं, जिसमें हम समाज व राष्ट्र के एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा कर सकते हैं। जैसे समाज में शिक्षा बदलाव विकास का एक बड़ा मार्ग है। शिक्षा द्वारा हम बालकों को पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली हानियों के बारे में बताकर जागृत कर सकते हैं तथा उसके संरक्षण के तरीके बताकर पर्यावरण प्रदूषण को रोक भी सकते हैं। शिक्षा द्वारा हम बच्चों को ही नहीं, बड़ों को, शिक्षित व गरीब लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बता सकते हैं तथा इससे फैलने वाली भयंकर बीमारियों व संक्रमण के बारे में हमें बताना होगा, जिससे वे इससे सबक लेकर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में सहायक सिद्ध हो सकें। इसके साथ साथ शिक्षा का व्यवस्था ऐसी हो जिसमें पाठ्यक्रम में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानकारी प्रदान

की जाए तथा उसको रोकने के उपाय भी बताए जाएं। समाज में समय समय पर पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित रैलियां निकाली जाएं, जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल हों तथा विभिन्न स्वयंसेवी संगठन तथा एनजीओ द्वारा लोगों को पर्यावरण प्रदूषण व उससे होने वाले प्रभावों के बारे में बताया जाए तथा उनको रोकने के लिए उपाय भी बताए जाएं। इसके साथ साथ समय समय पर सरकार तथा समाज के जागरूक संगठनों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर पर्यावरण प्रदूषण पर लेख व विचार लिखवाने चाहिए, जिससे लोग उनको पढ़कर जागरूक हो सकें। हमारे द्वारा समय समय पर बड़े बुजुर्गों युवाओं द्वारा छोटे बच्चों के साथ पर्यावरण प्रदूषण आदि पर चर्चा होनी चाहिए तथा उन्हें पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए छोटे छोटे उपाय बताए जाने चाहिए, जैसे पॉलीथीन का प्रयोग न करना, खुले में शौच आदि न करना, पॉलीथीन आदि जलाना व पेड़ पौधों आदि को नष्ट न करना आदि। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक वृक्ष लगाना तथा एक वृक्ष को कटने से अवश्य रोकना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण को रोकने के लिए हरे बड़े पेड़ पौधों को लगाने और बचाने से पर्यावरण शुद्ध होता है तथा प्रदूषण को कम होता है। हमारा अपना प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक घर में थोड़ी बहुत फुलवाड़ी होनी चाहिए, जिससे हम घर का वातावरण शुद्ध रहता है तथा पर्यावरण संरक्षण होता है। इसके साथ साथ हमें अपने घर के आसपास हरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए तथा परिवार व मोहल्ले के बड़े व सेवानिवृत्त लोगों को एक संगठन बनाकर पर्यावरण प्रदूषण पर जागरूकता कार्यक्रम चला रहने चाहिए, जिससे लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए हमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा सरकार द्वारा इस पर पूर्ण व प्रभावी रोक लगाए जाने चाहिए। हमारा समय समय पर अपना प्रयास होना चाहिए कि जो लोग घरों में अथवा हमारे आसपास व सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते पाए जाएं, उन्हें तुरंत ऐसा करने से रोकना चाहिए तथा इससे होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करनी चाहिए। हमें अपने निजी वाहनों जैसे कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि का प्रयोग कम से कम करना चाहिए तथा समय समय पर उनको प्रदूषण स्तर मानकों के अनुसार चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाला धुआं हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। हम सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति हरे वृक्षों को काटता है अथवा नुकसान पहुंचाता है तो तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर अथवा वन विभाग को सूचित करना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। समय समय पर हमें जिला प्रशासन तथा पर्यावरण द्वारा अनेक जागरूक कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। यह कार्यक्रम शहर व गांव दोनों स्तरों पर निरंतर चलते रहने चाहिए। इसके साथ साथ समाज के प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए तथा समय समय पर साफ सफाई करनी चाहिए तथा गंदगी फैलाने वाले लोगों को भी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जागृत करना चाहिए। समय समय पर हमारे द्वारा पर्यावरण प्रदूषण संबंधी चार्ट, चित्र, बैनर, पोस्टर आदि बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर लगाने चाहिए, जिससे लोग उनसे प्रभावित हो सकें। इसके साथ साथ हमें अपने आसपास पार्क, गली आदि में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, नियमित रूप से उनकी देखभाल करनी चाहिए। साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कभी किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, इसे अपनी जिम्मेदारी मानकर तुरंत अवसर मिलने पर शुरू कर देना चाहिए। इसमें हमें शर्म व हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। इस सबसे दूसरे लोगों को भी आपसे प्रेरणा लेकर पर्यावरण प्रदूषण के महत्व को समझ सकेंगे। हमें अपने घर तथा आसपास के कूड़े कचरे को सड़कों तथा नालियों आदि में नहीं फेंकना चाहिए, उसको उसके समुचित स्थान पर डालना चाहिए तथा यथासंभव कूड़ेदान व गड्ढों आदि में दबा देना चाहिए। हमें अपने निजी वाहनों को, खास करके बड़े वाहनों को, व्यस्तम भीड़ वाले स्थानों पर बहुत आवश्यकता होने पर ही लेके जाना चाहिए, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि इससे बहुत बड़ा जाम लग जाता है और घंटों अनेकों गाड़ियों से काला गहरा जहरीला धुआं निकलता रहता है, जो कि हमारे और पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें नदियों आदियों में पूजा पाठ की सामग्री, धार्मिक किताबों, मूर्ति आदि को नहीं डालना चाहिए, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। हमारा अपना प्रयास हो, यदि हम रिहायशी क्षेत्रों में कल कारखाने, फैक्ट्रियां स्थापित हों तो उन्हें शासन प्रशासन को अवगत कराकर शहर से दूर स्थापित कराना चाहिए, क्योंकि इससे

0: वाला जहरीला व काला धुआं, रासायनिक गंदा पानी नदियों व नालियों में मिलकर पर्यावरण को प्रदूषित करता है, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। यदि हम इन प्रमुख बातों को ध्यान में रखें तथा खुद व दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें, तो निश्चय ही हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अहम योगदान साबित होगा, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास कभी कभी बड़ी चेतना बन जाते हैं और यही प्रयास समाज के लिए एक बड़ा उदाहरण पेश करते हैं। उन लोगों के लिए जो विकराल समस्या को महत्व नहीं देते, हमारा अपना विश्वास है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है और थोड़ी सी मेहनत व जागरूकता निश्चय ही हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक उत्तम व स्वच्छ पर्यावरण दे सकेंगे। कहा जाता है कि जिस देश की युवा पीढ़ी जिस ओर अपना ध्यान आकर्षित कर लेती है, निश्चय ही उस ओर से परिणाम सुखद व संतुष्टिपूर्ण आते हैं। इसलिए यदि हम लोग अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, ऐसी शिक्षा दें कि वह प्रकृति से प्रेम करें, उसके महत्व को स्वीकारें तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो, तो वह दूसरे लोगों को भी पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए प्रोत्साहित कर सकें, तो निश्चय ही वर्तमान में व्याप्त पर्यावरण प्रदूषण रूपी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और निश्चय ही हम एक साफ स्वच्छ पर्यावरण की कल्पना कर सकेंगे।
1: तो अभी आप सुन रहे थे ये हिंदी वार्ता क्रम में डॉक्टर दीनबंधु समाधिया की वार्ता। विषय था पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हमारा अपना योगदान।

एफएम में 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को है, कुछ ही बोलो में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए हमीरपुर और इटावा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार का।
2: जनपद हमीरपुर की राड विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 21 जून के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के तहत आए और उन्होंने जनपद हमीरपुर की दोनों विधानसभाओं को 636.82 करोड़ की लागत की 75 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। साथ ही जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, मुख्यमंत्री मुद्रा उद्यमी विकास अभियान योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, परिवार नियोजन, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के कुल 12 लाभार्थियों को मंच से डेमो चेक देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री से सम्मान और प्रमाण पत्र पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल गए। आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले बुंदेलखंड के लोग पानी और रोजगार की समस्या को लेकर पलायन करने को मजबूर थे, लेकिन अब नमामि गंगे मिशन जल शक्ति के चलते हर घर नल जल से जल मिल रहा है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रत्येक माह में कम से कम 4 बार रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नामी गिरामी कंपनियां प्रतिभाग कर बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रही हैं। बिना किसी जात मजहब को दरकिनार कर सभी को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पर कार्य किया जा रहा है। जनपद हमीरपुर को मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई सौगात के तहत बेतवा नदी में 650 मीटर लंबा पीपा पुल बनाने का कार्य किया जाएगा। ग्रामीणों को जाम की झाम से निजात के साथ 30 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा। पढ़ने वाले बच्चों को भी सहूलियत मिलेगी और कानपुर जालौन जाने में भी सहूलियत रहेगी। सदर विधायक मनोज कुमार प्रजापति ने बताया कि मेरे द्वारा 4,16,00,000 की कार्य योजना बनाकर शासन को स्वीकृत के लिए भेजी थी, जिसे मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया है और मंजूरी मिल गई है। बरसात के बाद पैटून पुल का निर्माण कराया जाएगा। जनपद हमीरपुर में अंतर्राष्ट्रीय 12वें योग दिवस को उत्साह और व्यापक जन भागीदारी के साथ राजकीय स्पोर्ट स्टेडियम में मनाया गया, जहां बच्चे बूढ़े जवान सभी ने योग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग के आयोग के उपाध्यक्ष सोहन लाल श्रीमाली, नोडल अधिकारी भूतत्व निदेशक माला श्रीवास्तव, राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद सहित अन्य लोगों ने योग अभ्यास किया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक ने कहा कि योग भारत की प्राचीन एवं अमूल सांस्कृतिक धरोहर है। योग केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करने में प्रभावी माध्यम है। बुंदेलखंड के विकास और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बांदाकृष्ण एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों को सुविधापूर्ण माहौल उपलब्ध कराने के लिए 31,48,00,000 रुपए की लागत से 2 भव्य व अत्याधुनिक छात्रावासों का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। सुविधाओं से सुसज्जित छात्रावासों में रहने से बुंदेलखंड सहित अन्य जिलों के अध्ययनरत छात्रों को उच्च शिक्षा की राह सुगम और आसान होगी। जनपद हमीरपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। वर्ष 2021 की अपेक्षा 2026 में लगभग 5% मतदाताओं की वृद्धि विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद हुई है। 2026 की मतदाता सूची में 34,495 नए मतदाता शामिल हुए हैं, वहीं 4,556 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम डिलीट भी किए गए हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसके शुक्ला ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष पुनरीक्षण डुप्लीकेट मतदाता सत्यापन के बाद अब जनपद हमीरपुर की नई मतदाता सूची में 7,28,518 मतदाता हैं, जिसमें 3,26,350 महिला मतदाता और 4,01,762 पुरुष मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जनपद हमीरपुर में 7 विकास खंडों की 330 ग्राम पंचायतों में कुल 524 मतदान केंद्र और 1214 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। जनपद हमीरपुर का किसान पारंपरिक खेती के साथ कैश क्रॉप की तरफ तेजी से रुझान बढ़ा है और फायदा भी मिला है। जिला उद्यान अधिकारी सौभाग सिंह ने बताया कि किसानों को भीमा सुबर प्याज की खेती करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें निशुल्क प्याज का बीज दिया गया, जिससे किसानों ने प्याज की खेती करके नासिक प्याज के ऊपर निर्भर न रहते हुए अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं।
3: NHRDF द्वारा उपलब्ध उच्च

0: जाती हैं का निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें मुख्यतः एग्रीफाउंड लाइट रेड, भीमा सुपर, भीमा राज, भीमा शक्ति जैसी प्रजातियां किसान भाइयों को निःशुल्क दी जाती हैं, जिनका जमाव और उत्पादन दोनों ही बहुत अच्छा हुआ है।
1: हमीरपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार तिवारी का।
2: इटावा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ताओं के लिए डीबीए सभागार में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। सैकड़ों अधिवक्ताओं ने शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सभी बीमारियों के एक दर्जन से अधिक एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम ने परीक्षण किया। मेडिकल कैंप का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला जज रजत सिंह जैन ने फीता काट कर किया। इटावा में 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावी छात्रों का सम्मान हुआ। सदर विधायक सरता भदौरिया की अध्यक्षता में विकास भवन के प्रेरणा सभागार में आयोजित समारोह में 14 टॉपर्स को 21,000 रूपए देकर सम्मानित किया गया। अन्य मेधावियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोक भवन लखनऊ से लाइव प्रसारण को भी देखा गया। विधायक सरता भदौरिया ने कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो से पीता है वही दहाड़ता है। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने भी छात्रों को मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के सम्मान की सीख दी। इटावा में जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में एक जनपद एक नदी, डिजिटल लाइब्रेरी, जीरो पॉवर्टी अभियान समेत कई योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने सिरसा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए फिल्टर चैम्बर प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन में नए पात्रों को शौचालय से जोड़ने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सामुदायिक शौचालय बनाने को कहा। 117 डिजिटल लाइब्रेरी प्रतियोगी पुस्तकें रखने और जीरो पॉवर्टी के चिन्हित परिवारों को राशन हर घर नल का लाभ प्राथमिकता से देने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर इटावा में उद्यमी संवाद कार्यक्रम हुआ। सदर विधायक सरता भदौरिया की अध्यक्षता में विकास भवन के प्रेरणा सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि 12 साल में भारत ने अभूतपूर्व विकास किया है। इटावा के अंगोछा, बेडशीट, खीर मोहन जैसे उत्पादों को भी नई पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि ओडीओपी योजना में 2000 लोगों को टूल किट, विश्वकर्मा योजना में 5,805 को प्रशिक्षण और युवा उद्यमी अभियान में

0: उद्यमी संवाद कार्यक्रम हुआ। सदर विधायक सरिता भदौरिया की अध्यक्षता में विकास भवन के प्रेरणा सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि 12 साल में भारत ने अभूतपूर्व विकास किया है। इटावा के अंगोछा, बेडशीट, खीर मोहन जैसे उत्पादों को भी नई पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि ODOP योजना में 2000 लोगों को टूल किट, विश्वकर्मा योजना में 5805 को प्रशिक्षण और युवा उद्यमी अभियान में 1937 युवाओं को 74 करोड़ से अधिक ऋण मिला। जिलाधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ल ने भी युवाओं से नवाचार के साथ आगे आने की अपील की। कार्यक्रम में लाभार्थियों को ऋण चेक और टूल किट वितरित की गई। इटावा पहुंची महिला कल्याण मंत्री बीबी रानी मौर्य ने केंद्र की 12 राज्य और 9 साल के सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा, अपराधी जेल में है, महिला सुरक्षा प्राथमिकता है, सड़क, बिजली, पुल, हॉस्पिटल बन रहे हैं। इटावा में यमुना और सिरसा नदी में जाने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए जिला पंचायत राज विभाग ने बड़ी पहल की है। DPRO रोहित कुमार ने बताया कि यमुना किनारे के 10 गांव में फिल्टर चैम्बर बना दिए गए हैं। 10 ग्राम पंचायतों में 16 फिल्टर चैम्बर बनाए जा रहे हैं, जिनमें 12 तैयार हो चुके हैं। सिरसा नदी का जीर्णोद्धार भी शुरू कर दिया गया है। इस पहल से यमुना और सिरसा नदी को प्रदूषण से बचाया जा सकेगा और गांव का गंदा पानी नदियों में जाने से रोका गया है।
1: हमारे 10 गांव थे जिनका गंदा पानी यमुना नदी में जा रहा था, तो जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में उनमें हमने फिल्टर चैम्बर बनाए गए। 10 गांव जो हमारे थे कवर किए गए, अब उनमें जो है पानी साफ तरीके से लगभग जा रहा है।
0: जनपद इटावा में 285 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 21 राजकीय, 54 सहायता प्राप्त और 210 वित्त विहीन विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में 1,29,000 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जनपद में 5 माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी है। इटावा पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,31,97,000 रुपए कीमत के मादक पदार्थ नष्ट किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में 7 केसों से जुड़ा 1,772 किलो गांजा चरस डोडा कानपुर देहात के अधिकृत प्लांट में जलाया गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हुई। इटावा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प दोहराया। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने यह कार्रवाई की। NDPS एक्ट के तहत विभिन्न थानों पर पंजीकृत 7 अभियोगों से संबंधित कुल 1,772 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए गए। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पहुंचे ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने नुमाइश पंडाल में पहुंचकर योग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, देश की जनता को स्वस्थ रखने के लिए यह प्रारंभ किया है, निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग से 15 छात्रों की मौत के बाद इटावा प्रशासन सतर्क हो गया। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल और SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापारी संगठनों और कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कोचिंग मॉल और प्लाजा में फायर सेफ्टी मानकों का 100% पालन हो, शॉर्ट सर्किट रोकने को अच्छी वायरिंग MCB लगाएं। SSP ने बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे कोचिंग पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
4: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबो हवा के अंतर्गत जानकारी। विषय है जलवायु संकट और हमारे दायित्व। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं विजय मताई।
5: जलवायु संकट यानी कि मौसम में अत्यधिक बदलाव होना, यह एक ऐसी समस्या है जो मूलतः वैश्विक गर्मी के कारण हो रही है और दिन प्रतिदिन गहराता जलवायु संकट आज संपूर्ण विश्व के सामने चुनौती है। जलवायु संकट के कारण मानसूनी क्षेत्रों में वृद्धि होगी, जिससे बाढ़, भूस्खलन तथा भूमि अपरदन जैसी समस्याएं पैदा होंगी। जल की गुणवत्ता में भी गिरावट आ सकती है और जल वितरण को भी प्रभावित कर सकती है। जलवायु संकट जो कि वैश्विक गर्मी के परिणामों को नजरअंदाज करने के कारण हो रहा है और इस पर लगभग सभी देशों ने चुप्पी साध रखी है, जो कि भविष्य में होने वाली एक गंभीर समस्या को नजरअंदाज करता है। औद्योगिकरण, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, विज्ञान और तकनीकी के बढ़ते प्रभाव, उपभोक्तावादी संस्कृति और प्रकृति के अनियंत्रित दोहन के कारण पर्यावरण को असंतुलित बना रहे हैं और इसी कारण पृथ्वी की आबोहवा दिन ब दिन बदल रही है। अगर सब कुछ ऐसे ही और इसी रफ्तार से चलता रहा तो ऐसा लग रहा है कि जलवायु संकट के कारण पूरा विश्व तबाही का मंजर देखेगा। जलवायु संकट के कारणों को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। प्राकृतिक कारण महाद्वीपों का खिसकना, ज्वालामुखी, पृथ्वी का झुकाव और समुद्री तरंगे। मानव निर्मित कारण कोयला, पेट्रोल आदि जीवा

अश्म ईंधन का उपयोग करके अधिक जमीन की चाहत में पेड़ों को काट करके अपघटित न हो सकने वाले सामान अर्थात प्लास्टिक का अधिकाधिक उपयोग करके खेती के उर्वरक व कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग करके। जलवायु संकट का एक मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसें जो कि कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन नाइट्रो ऑक्साइड आदि हैं की परत पृथ्वी पर इसकी उत्पत्ति के समय से है, लेकिन अब अधिक मानवीय क्रियाकलापों के कारण इस प्रकार अधिकाधिक गैसें वातावरण में छोड़ी जा रही हैं जिससे ये परत मोटी होती जा रही है वह प्राकृतिक ग्रीन हाउस का प्रभाव समाप्त हो रहा है। जलवायु संकट से प्रभावित क्षेत्र खेती पर प्रभाव बढ़ती जनसंख्या के कारण भोजन की मांग में भी वृद्धि हुई है। इससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बनता है और जलवायु संकट का सीधा प्रभाव खेती पर पड़ता है क्योंकि तापमान और वर्षा में बदलाव आने से मिट्टी की क्षमता कीटाणु और फैलने वाली बीमारियां अपने सामान्य तरीके से अलग प्रसारित होंगी और तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आने वाले समय में बाढ़ से खेती को नुकसान होगा। मौसम पर प्रभाव गर्म मौसम होने से वर्षा का चक्र प्रभावित होता है, इससे बाढ़ या फिर सूखे का खतरा भी हो सकता है। ध्रुवीय ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र के स्तर में वृद्धि की भी आशंका है। कुछ वर्ष पूर्व आए तूफान व भवंडरों ने प्रत्यक्ष रूप से इसके संकेत भी दिए हैं। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होना समुद्र के गर्म होने ग्लेशियरों के पिघलने से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाली आधी सदी के भीतर समुद्र के जल स्तर में लगभग आधे मीटर की वृद्धि होगी और जिससे अनेकानेक दुष्परिणाम सामने आएंगे जैसे तटीय क्षेत्रों की बर्बादी, जमीन का पानी में जाना, बाढ़, मिट्टी का अपरदन होना, खारे पानी के दुष्परिणाम आदि। इससे तटीय जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, खेती, पेयजल, मत्स्य पालन व मानव बसाव भी तहस नहस हो जाएगा। पेड़ों को बचाया जाए और अधिक वृक्षारोपण किया जाए, प्लास्टिक जैसे अपघटन में कठिन व असंभव पदार्थों का उपयोग न किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं समस्या कोई भी हो उसका समाधान भी होता है, वैसे ही जलवायु संकट का भी समाधान है हमारी आपसी सूझबूझ और संसाधनों का समझदारी से उपयोग करने से यह संभव हो सकता है। वैश्विक गर्मी और इसके कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन से वर्तमान एवं भविष्य में पैदा होने वाले भयानक परिणामों से जनता को जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाना होगा। याद रखिए, जलवायु संकट से लड़ना हमारा नैतिक दायित्व है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा के अंतर्गत, ये जानकारी विषय था जलवायु संकट और हमारे दायित्व। जानकारी दे रहे थे विजय मताई।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आ रही हैं सुरभि शर्मा।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: कार्यक्रम के संयोजक हैं ओपी सिंह।
1: आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका करते हैं आप बड़ी बेसब्री से इंतजार। इस कार्यक्रम में न केवल दी जाती है आपको सही और सटीक जानकारी, करवाया जाता है प्यारे प्यारे गीतों से आपका मनोरंजन भी। श्रोताओ, आज है ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी, कबीर जयंती संत कबीर दास के जन्म की याद में मनाई जाती है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को पड़ती है। 15वीं सदी के इस महान कवि और समाज सुधारक ने अपनी सखियों दोहों के माध्यम से मान्यता और ईश्वर प्रेम का संदेश दिया, यानी मानवता का संदेश दिया, ईश्वर प्रेम का संदेश दिया। कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म वर्ष 1398 में काशी के लहरतारा तालाब में हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों, जाति पाति और धार्मिक पाखंडों का खुलकर विरोध किया। उनकी शिक्षाएं सभी धर्म और इंसान के बीच समांतर पर जोर देती थी। उनके विचारों और दोहों का संकलन

मुख्य रूप में बीजक और कबीर गंथरावली में मिलता है। कबीरदास जी के दोहे इस प्रकार हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मनुष्य को हमेशा ऐसी मीठी और विनम्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सुनने वाले के मन को शांति दे और बोलने वाले को भी शीतलता प्रदान करे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। जब संसार में हम बुराई खोजने निकलते हैं तो कोई व्यक्ति बुरा नहीं मिलता, लेकिन जब हम अपने मन के अंदर झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमसे बुरा कोई नहीं है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हे ईश्वर, मुझे बस इतना धन या अन्न दीजिए जिसमें मेरे परिवार का गुजारा हो जाए, मैं भूखा ना रहूं और मेरे घर पर कोई भी अतिथि या साधु या संत आए तो वो भी भूखे ना लौटे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। ये सीख आज के समय में उतनी ही प्रासंगिक है, चाहे कोई व्यक्ति हो, हमारे विद्यार्थी हो, कोई भी कर्मयोगी, उसके लिए सीख अत्यंत उपयोगी है। जो काम कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही पल में प्रलय आ सकती है, तो फिर काम कब करोगे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हमारी कुटिया, जो हमारी कमियां बनाते हैं, कमियां बताते हैं, वही हमारे सच्चे हितचिंतक होते हैं। बिना साबुन पाने के हमारे स्वभाव को और भी शुद्ध और निर्मल बता देते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। संसार में जब दुख होता है तो हर कोई ईश्वर को याद करता है कि मेरे ऊपर दुख क्यों आ गया, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, मेरे ऊपर कितनी विपत्तियां आ गई। लेकिन अगर हम सुख में भी ईश्वर को याद करना शुरू कर दें या सुख में भी ईश्वर का स्मरण करें तो निसंदेह ईश्वर हमारे साथ रहता है। वो प्रयास करता है कि मेरे भक्त को किसी प्रकार की दुविधा ना हो या किसी प्रकार का दुख ना आए।

0: श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि टीकाकरण एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके द्वारा हम कई सारी बीमारियों का निराकरण करते हैं। क्या है टीकाकरण, किस प्रकार ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसी बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ में।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को। मेरा नाम डॉक्टर वंशराज सिंह है। मैं जनपद मथुरा में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर जिला प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर तैनात हूँ और टीकाकरण कार्यक्रम को जनपद मथुरा में संचालित करने में अपना सहयोग प्रदान करूंगा।
0: टीकाकरण और प्रतिरक्षण में क्या अंतर है?
1: देखिए, टीका और प्रतिरक्षण एक ही बात है। जब हम टीकाकरण कहते हैं या इम्यूनाइजेशन या प्रतिरक्षण, तो बेसिकली इसमें बच्चे को एक एंटीजन दिया जाता है, चाहे वो ओरल हो इंजेक्टेबल हो, जिसके शरीर में जाने से जो है एक होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है, कुछ टीके जिनके बूस्टर्स डोज लगते हैं, कुछ टीके हैं जैसे BCG है और मीजल्स के हम दो टीके लगा रहे हैं, इनमें जो है बार बार देने का बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और ये एक बार जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बन जाती है शरीर में, तो इनको शरीर में बनी रहती है। और कुछ टीकों में हम रिपीट करना पड़ता है, जिससे कि उनके बूस्टअप करने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए, मेमोरी को याद दिलाने के लिए, जैसे डिप्थीरिया कंटेनिंग एंटीजन है, पेंटाथीन बार लगता है, DPT के दो टीके लगते हैं, तत्पश्चात जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो TD के दो टीके लगते हैं। जी मैम,
0: कई बार ऐसा होता है टीके लगने के बाद बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उनको बुखार हो जाता है, कई बच्चों को उल्टी दस्त की भी शिकायत हो जाती है। क्या ये नॉर्मल है या इससे माता पिता को घबराना चाहिए?
1: नहीं, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं बता दूं, जैसे कि कुछ टीके हैं जिनमें हल्के फुल्के बुखार की शिकायत बन सकती है, इसीलिए हम बच्चे को टीकाकरण करने के साथ ही हम पैरास्टामोल की सिरप की बॉटल डिस्पेंस करते हैं हमारी ANM जो है, और इसको आवश्यकता अनुसार वो निर्देशित भी करती है कितनी दवाई देनी है। पेंटा का टीका अगर लग रहा है या DPT के टीके लग रहे हैं, तो इनमें थोड़ा बुखार आने की संभावना रहती है। लेकिन जैसे आपने बताया, अन्य कोई चीजें हैं आ रही, तो ऐसी स्थिति में घबराए नहीं, हमारे ANM को ही बताएं, वहां पर आशा को आप बताएं इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, और हम लोग ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तैयार रहते हैं, हमारा सिस्टम साथ में है। और ऐसा कभी कभी होता है कि जो है जैसे गर्मी का मौसम है, या हमने कुछ बाहर का खाना खाया है और उससे उल्टी दस्त की शिकायत हो गई, हमने टीकाकरण भी करवाया, फिर हमको लगता है कि टीकाकरण से ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे नोटिस में आने के पश्चात हम पूरी गहराई से जांच करते हैं इन प्रकरणों को, जिससे कि जो है उसमें सही

0: का हम आकलन कर सकें, और टीकाकरण जो है किडनी की बीमारी के लिए कहें बेहद ही सेफ है। यह लाखों करोड़ों बच्चों को दिन प्रतिदिन पूरे देश भर में लगाया जा रहा है, तो इसमें कोई भी वैक्सीन जो है असुरक्षित नहीं, सभी वैक्सीन बहुत सुरक्षित हैं, सेफ हैं, और अगर हल्के फुल्के थोड़े से साइड इफेक्ट से मतलब कहें आफ्टर AFI कहते हैं एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इंजेक्शन अगर इस तरह के आते हैं तो हमारे नोटिस पर लाएं, इसमें हम तत्काल कार्रवाई करते हैं, और जो है इसीलिए हम पैरासिटामोल की सिरप की बॉटल में डिस्पेंस करते हैं, अगर हल्का फुल्का बुखार रहता है तो उसको तो माता को बताते हैं।
1: कई बार ऐसा होता है कि टीका लगने के बाद जिस स्थान पर टीका लगता है वहाँ गांठ बन जाती है, तो कुछ माता पिता का ये मानना होता है शायद सुई रह गई या सुई गलत तरीके से लगी है, या जैसे उसके बाद भी जो हमारी आशाएं बहनें वो कहती है कि उस जगह को ठीक से मलिए, तो क्या प्रक्रिया है ये, क्या ऐसा वास्तव में सही में होता है या कुछ समस्या आ जाती है?
0: देखिए गांठ बनना तो ऐसा सामान्यता नहीं होता है, गांठ वगैरह नहीं बनती है, यह होता है कि जैसे पेंटा की वैक्सीन लगाते हैं थोड़ा सा हल्का सा लोकल थोड़ा सा इंफ्लेमेशन होती है और उसमें थोड़ा दर्द वगैरह की संभावना रहती है, तो इसीलिए इसमें बर्फ की सकाई के लिए एडवाइस करते हैं, उसको कोई मालिश नहीं करना है, ना ही उसको सूखना है, ना उस तरह कोई किसी तरह की और कोई उसमें कार्रवाई करने की आवश्यकता रहती है, और गांठ वगैरह सामान्यता नहीं बनती है, लेकिन अगर इस तरह की आ रही है कि वहाँ है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर हमारे मेडिकल अफसर को अवगत कराया जा सकता है और वहाँ उसका मुआयना करने की उपरांत जो सही ट्रीटमेंट रहेगा वो हम लेते हैं।
1: संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम, इन शब्दों से हम क्या समझते हैं?
0: देखिए दो हैं, एक तो फुल इम्यूनाइजेशन और एक कंप्लीट इम्यूनाइजेशन। फुल इम्यूनाइजेशन, फुली इम्यूनाइज चाइल्ड हम ये कहते हैं कि 9 माह तक के जितने टीके हैं ड्यू टीके हैं वो सारे टीके लग गए तो उस बच्चे को कहते हैं फुल्ली इम्यूनाइज्ड, साल भर के अंदर ये सारे टीके लग जाने चाहिए। फिर जब 16 माह से 24 माह पे जो MR की सेकेंड डोज लगती है वो भी जब टीके लग जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट इम्यूनाइजेशन या संपूर्ण टीकाकरण, जैसा कि आपने कहा। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया, इसके माध्यम से सभी श्रोतागण जागरूक होंगे, जागरूकता ही सबसे बड़ी कुंजी है आज के समय में जानकारी रखना, सही जानकारी रखना। तो मैं आपके रेडियो के माध्यम से सभी श्रोतागणों से यही सरबल निवेदन करूंगा कि आपके बच्चों को समय समय पर जो ड्यू टीके हैं जो छूटे हुए टीके हैं वो टीके लगवाएं और बच्चे को सुरक्षित रखें।
2: इन दिनों तो सबसे ज्यादा बीमारी यही है, बाकी इस समय कुछ किस्म के वायरस भी हो जाती हैं, एलर्जिक बीमारियां भी हो जाती हैं, गर्मी में स्किन की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन डिजीजेज ज्यादा हो जाती हैं, तो उनसे भी बचाव के लिए यही सोचना पड़ता है, स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है इन दिनों।
1: डायरिया
2: इज ए कॉमन थिंग, वो हर मौसम में होता है लेकिन बदलते मौसम में ज़्यादा होता है, मई और जुलाई में ज़्यादा होगा, जून में भी होता है समर डायरिया लेकिन कंपेरेटिवली कम होता है, लेकिन डायरिया इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम फॉर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में डायरिया की बहुत शिकायत होती है, और उसके लिए भी डिहाइड्रेशन ना हो इसका ध्यान रखा जाए, अगर आपके बच्चे को पानी कम हो रहा है या एडल्ट को पानी कम हो रहा है तो उसको तुरंत रिहाइड्रेट कराना चाहिए।
1: तो डायरिया की समस्या उत्पन्न क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है कि डायरिया?
2: डायरिया इसलिए होता है कि इन दिनों जो आपको शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है,
1: यानी शुद्ध पानी की वजह से डायरिया की समस्या हो जाती है,
2: होता है, और गर्मी में बैलेंस बिगड़ जाता है बॉडी का जी। तो वो नहीं कर पाते हैं तो, और वायरल डायरिया भी होता है इन दिनों ही।
1: वायरल डायरिया और सिंपल डायरिया में क्या कोई फर्क है?
2: वाटरी डायरिया जो होता है और स्टॉप जल्दी नहीं होता है वो वायरल डायरिया होता है, और बैक्टीरियल डायरिया जल्दी कंट्रोल हो जाता है।
1: उसकी मूलतः लक्षण क्या होते हैं, कैसे व्यक्ति पहचाने?
2: पहचान वाटरी डायरिया है, पानी बिल्कुल पानी पानी जा रहा है, बच्चे को रुक ही नहीं रहा, पानी पानी जा रहा है, फीवर भी होता है उसमें
1: जी।
2: फीवर भी हो जाता है।
1: इससे बचाव के क्या उपाय
2: हैं? वायरल के बचाव के तो वायरल की तो आपको जानकारी है नहीं, ना वायरल की कोई एंटीवायरल मेडिसिन होती है, ना आइजन डायरिया की कोई, अब कुछ डायरिया की वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लगवाना चाहिए बच्चों को
1: जी। खाने पीने का कुछ

0: खाने पीने का तो जरूरी है ध्यान रखना, इसमें खाना, इसीलिए मैं कहता हूँ बासा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे डायरिया होने के, बैक्टीरिया डेवलप होने के, वायरस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फर्मेंटेशन ज़्यादा हो जाता है उसमें।
1: इस मौसम को देखते हुए अंत में श्रोताओं से क्या कहना चाहिए?
0: इस मौसम में अपनी को सावधान रहना चाहिए, इस मौसम से लड़ने के लिए सावधानी अगर आप में है तो इस मौसम से आप बच सकते हैं।
1: एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया का बड़ा प्रबल रोल है, सोशल मीडिया में कुछ इस तरह के मैसेज आते हैं कि बहुत बड़ी समस्या है, एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है, यानी समस्या है ही समस्या है, लेकिन उसको इतना विकराल रूप दे दिया जाता है कि व्यक्ति घबरा जाता है, घर से बाहर निकलने का सोचता ही नहीं। ऐसे
0: ऐसा है, अगर आप प्रिवेंटिव मेजर लेंगे तो आप बिल्कुल निकलेंगे घर से, बिल्कुल 24 घंटे तो आप नहीं बैठे रह सकते, आप काम काज पे जाएंगे, ड्यूटी करेंगे, सारे ऑफिस तो बंद हुए नहीं है, तो उसकी सावधानी से आप निकलें, छाता लेके चलें, कपड़ा सर पे ढकें, इन चीज़ों के साथ आप और थोड़ा ध्यान रखें, पानी हमेशा आपके पास हो, पानी पीते रहें, ये चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो आप बहुत कुछ बचाव कर सकते हैं इससे।

है। जनपद मथुरा से होकर गुजरने वाले यमुना एक्सप्रेसवे के मॉडल स्टोन 59 से 141 किलोमीटर तक के पूरे हिस्से को नो प्रोटेस्ट जोन घोषित किया गया। इस निर्णय के बाद इस क्षेत्र में किसी प्रकार के राजनीतिक अथवा अन्य धरना प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जा सकेंगे। यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 22 मई 2026 को दिए गए निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की निधि से ग्रामीण क्षेत्र की 3 सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी। इस कार्य में 88.98 लाख रुपए की लागत आएगी। राया सोनाई में 13 मार्ग पर 19.51 लाख रुपए से 0.80 किलोमीटर लंबी सड़क का कायाकल्प होगा। इसी तरह राया सादाबाद मार्ग पर दमका से अलीगढ़ सीमा तक 120 किलोमीटर लंबे मार्ग का 31.21 लाख रुपए और जुलैदी से पैदल मार्ग का 1.80 किलोमीटर मार्ग के लिए 38.26 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस बजट में अगले 5 वर्षों के लिए सड़कों के रखरखाव की लागत भी जोड़ी गई है। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने संबंधित विभाग को कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। नए बस अड्डे के समीप तीसरी रेलवे लाइन परियोजना के तहत बनाए जा रहे रेलवे अंडरपास की गहराई बढ़ा दी गई है। पहले यह पुल 3 मीटर गहरा था, लेकिन अब इसकी गहराई 3.7 मीटर की गई है। इससे बड़े और भारी वाहनों की आवाजाही बिना किसी बाधा के हो सकेगी। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा मथुरा भूतेश्वर रेलखंड पर आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से अंडरपास का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए दिन रात युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। तीसरी रेलवे लाइन परियोजना केवल रेल संचालन क्षमता बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ सड़क यातायात को भी अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस उद्देश्य से अंडरपास की गहराई में संशोधन कर इसे पहले से अधिक उपयोगी बनाया गया है। आधुनिक इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप तैयार किए गए इस ढांचे को भविष्य में बढ़ने वाले यातायात का दबाव भी आसानी से संभाला जा सकेगा। रेलवे का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूरा करना है। अंडरपास की बढ़ाई गई गहराई से पहले की तुलना में यातायात सुगम रहेगा और बड़े व्यावसायिक वाहन भी आसानी से निकल सकेंगे। रेलवे द्वारा कई बिंदुओं पर एक साथ काम किया जा रहा है। तीसरी रेलवे लाइन परियोजना पूरी होने के बाद इस मार्ग पर रेल और सड़क दोनों का आवागमन पहले से अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगा, ऐसा कहना है संजय कुमार गौतम, जनसंपर्क अधिकारी। नौका विहार और आम के कुंज में मनमोहा चंद्रोदय मंदिर में गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की गौरवशाली परंपरा के तहत पानीहाटी दही चूड़ा महोत्सव को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। दिन भर चले धार्मिक आयोजनों में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान के दर्शन किए और भक्ति रस में सरोबार हुए। महोत्सव के दौरान नित्यानंद प्रभु एवं गौरांग महाप्रभु का नौका विहार, पुष्प महाभिषेक और आम से तैयार कुंज ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। महोत्सव का शुभारंभ प्रातःकालीन मंगल आरती से हुआ। इसके बाद भगवान श्री राधा वृंदावन चंद्र का विशेष श्रृंगार, धूप आरती, 56 भोग अर्पित किए गए। मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों और रंग बिरंगे सजावट से सजाया गया। आम और हरियाली से तैयार कुंज ने श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ दर्शन कर आनंद लिया। संध्या के समय नित्यानंद प्रभु एवं गौरांग महाप्रभु के शिव विग्रहों को भव्य पालकी यात्रा से निकाली गई। हरिनाम संकीर्तन, मृदंग और करताल की मधुर ध्वनि के बीच श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ यात्रा में शामिल हुए। पालकी यात्रा के दौरान भक्तों ने पुष्प वर्षा का प्रभु का स्वागत किया। इसके बाद मंदिर परिसर स्थित कल्याणी में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच नित्यानंद प्रभु एवं गौरांग महाप्रभु का पुष्प महाभिषेक कराया गया। महोत्सव का सबसे आकर्षक और भावपूर्ण शब्द तब आया जब नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु का दिव्य नौका विहार कराया गया। पुष्पों से सजी नौका जैसे ही कल्याणी के जल में आगे बढ़ी, हरिनाम संकीर्तन से पूरा वातावरण गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने प्रभु पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दीपों की रोशनी, पुष्पों की सुगंध और संकीर्तन की मधुर ध्वनि ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक उल्लास से भर दिया। महोत्सव के समापन महाआरती के बाद सभी भक्तों को पारंपरिक दही चूड़ा प्रसाद वितरित किया गया। चंद्रोदय मंदिर के अध्यक्ष चंचलापति दास ने कहा कि पानीहाटी दही चूड़ा महोत्सव केवल धार्मिक परंपरा का निर्वहन नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा, समर्पण और निष्काम भक्ति का संदेश देने का अनूठा पर्व है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मंदिर पर श्री ठाकुर द्वारकाधीश महाराज ने रविवार को सुबह श्रद्धा और परंपरा के साथ राजा धीरज का जप ज्येष्ठा भी किया गया। सुबह 6:30 बजे से वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य ठाकुर जी का यमुना जल से अभिषेक किया गया। मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी जी ने बताया कि मंदिर के मुखिया सुधीर कुमार ने जलाभिषेक कराया। सेवा अधिकारी के अजय कुमार भट्ट की देखरेख में धार्मिक अनुष्ठान हुए। धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी वर्ष के सबसे गर्म दिनों में से एक होती है। मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। भक्तों ने ठाकुर जी के जलाभिषेक और मनोहारी स्वरूप के दर्शन किए। श्रोताओं, हर दिन अपने आप में कुछ ऐतिहासिक घटने समेटे रहता है और नजर डालते हैं आज के दिन इतिहास क्या कहता है। 1927 में

लेस्टर मैटलैंड और अल्बर्ट हैगनबर्ग के नेतृत्व में दो अमेरिकी विमानों चालकों ने प्रशांत महासागर के पार अपनी पहली सफल उड़ान पूरी करी। वहीं 1995 में अमेरिकी स्पेस शटल अटलांटिस की पहली बार रूसी अंतरिक्ष स्टेशन मीर से जुड़ा, जिससे अंतरिक्ष में एक नए सहयोग की शुरुआत हुई। वहीं 2007 में टेक कंपनी एप्पल ने दुनिया का पहला आईफोन बाजार में उतारा, जिसे मोबाइल फोन और स्मार्टफोन की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। वहीं 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्याविद प्रशांत चंद्र महालोबनिस की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए इसकी शुरुआत 2007 में हुई। वहीं 1901 में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, काकोरी स्टेशन के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक का जन्म आज के दिन हुआ। वहीं सरदार बलदेव सिंह, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के पहले रक्षा मंत्री रहे, 1961 में उनका निधन आज ही के दिन हुआ था। ये थी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो आज के दिन के साथ जुड़ी हुई थी। श्रोताओं, हर दिन अपने आप में कुछ न कुछ घटनाएं ऐसी समेटे रहता है जिनका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी जागरूकता की कमी की वजह से बड़ी मुसीबत को न्योता दे देते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि हर जगह आवागमन बहुत बढ़ गया है, सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, तो आवागमन के इस तरीके से कहीं ना कहीं यातायात प्रभावित होता है। ऐसे में हमें यातायात के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में आकाशवाणी ने इतने आयाम स्थापित किए हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर आकाशवाणी ने ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण किया है जिससे लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े और ऐसी सोच विकसित हो ताकि वो अपनी वैज्ञानिक सोच को विकसित कर सके और नए सिरे से दुनिया को देख सके। जब भी हम सड़क पर निकलें तो यातायात के नियमों का पालन अवश्य करें। दुपहिया वाहन चलाने वाले हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, चार पहिया वाहन चलाने वाले सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें और अपनी ही लेन में गाड़ी चलाएं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे युवा हैं वो जोश में आकर होश खो देते हैं और बड़ी तेज गति से गाड़ी चला देते हैं, हेलमेट का प्रयोग नहीं करते। ट्रिपल राइडिंग, कभी कभी तो चार पांच लोग भी एक साथ दोपहिया वाहन पर बैठ जाते हैं, इससे समस्या उत्पन्न होती रहती है। फिर जब एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना घटित हो जाती है, फिर हम शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं। अपने अंदर ये आदत विकसित कीजिए कि आपको यातायात के नियमों का पालन करना है, ओवरटेकिंग ना करें। अचानक पीछे से कोई आकर गाड़ी को ओवरटेक करके चल देता है, क्योंकि यातायात के नियम हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। यातायात के नियमों का पालन कीजिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए और सबसे अहम बात, सदा प्रसन्न रहें और खुश रहें। और इसी के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोता साथियों, अब सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

द बर्निंग ट्रेन, अभी आपने सुना इस फिल्म के गीत को अर्षा भोसले किशोर कुमार के युगल सुरों में। गीत को लिखा था शायर जनाब साहिल लुधियानवी ने, संगीत दिया था आर डी वर्मन ने, और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

0: ஸ்பீக்கர் பட்டுச்சான்.
1: आपने सुना अभी हृदय संधु अफजर अख्तर, अदिति सिंह शर्मा, जोनिता गंगी की आवाजों में फिल्म टोटल धमार का ये गीत। साथियों, इस वक्त आप आनंद दे रहे हैं फिल्म संगीत का आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे नेहरा की आवाज़ में फिल्म सरामे इश्क का ये गीत। और अब साथियों आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आज का अर्जुन, आपने सुना अभी इस फिल्म के गीत को लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार और साथियों की आवाज़ में। लिखा था गीतकार अनजान ने इस गीत को, और संगीत से संवारा था बप्पी लहरी ने। और अब साथियों, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

चित्रा और साथियों की आवाज़ में आपने सुना भी अशोका फिल्म के गीत को। गुलजार के लिखे इन बोलों को धुन से संवारा था संगीतकार अनु मलिक ने। साथियों, इस गीत के साथ ही आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

सुबह के 10:30 हुए हैं। साथियों, प्रस्तुत है कार्यक्रम ये कह गए दास कबीर रूपक। इसके लेखक हैं यतीन्द्र चतुर्वेदी और स्वर है विमल अरोरा यतीन्द्र चतुर्वेदी का। तो आइए सुनते हैं ये रूपक।

0: मध्यकाल धार्मिक कट्टरता का काल था। इस्लाम हो या सनातन हिंदू धर्म, दोनों ही अनेक कुरीतियों व धार्मिक अंधानुकरण से ग्रसित थे।
1: लेकिन ये काल सूफी संत महात्माओं और संत कवियों के प्रादुर्भाव का भी काल था, जिन्होंने ज्ञान की, साहित्य की, प्रेम की और इंसानियत की ऐसी मंदाकिनी प्रवाहित की जिसमें अवगाहन करके जनमानस का एक नवीन मार्ग प्रशस्त हुआ।
0: ये मार्ग था ठाई आखर प्रेम का, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने का, धार्मिक कट्टरता को मिटाकर मानवता को प्राथमिकता देने का।

0: कबीर का ये प्रेम संदेश आज भी कितना सामयिक है।
1: कबीर सूफी संतों का बेताज बादशाह, फकीरों का मुखिया, पंचतत्व का एक ऐसा भीना और श्वेत परिधान जो कभी मैला नहीं हुआ।
0: कबीर जो मिट्टी में जन्मा और मिट्टी से जुड़े लोक जीवन पर छा गया।
1: कबीर भक्ति संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण संत कवि थे। कहा जाता है कि वे एक हिंदू विधवा के पुत्र थे जिसने लोक लाज के भय से उन्हें नवजात अवस्था में बनारस के एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। नीरू नाम का एक मुसलमान जुलाहा उन्हें वहां से उठा लाया और अपने पुत्र की तरह उसका लालन पालन किया। वो कबीर को भी जुलाहा बनाना चाहता था जो उसकी तरह ही वस्त्र बुने। कबीर जुलाहा बन भी गए, लेकिन उन्होंने बुनी जीवन की चादर, उन्होंने बुना प्रेम का ताना बाना, वो ताना बाना जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता थी, जिसमें विचारशीलता थी, जिसमें था वाह्य धर्म आडंबरों से मुक्त आंतरिक आध्यात्मिक विकास का संदेश।
0: साधारणतः विद्वान उनका जन्म 1440 ईस्वी मानते थे। वे एक निराकार ईश्वर को मानते थे और वेद व कुरान दोनों को ही स्वीकार करते थे। वे हिंदू धर्म और इस्लाम के अर्थहीन आडंबरों और रस्मों के विरुद्ध उपदेश देते थे। कबीर मानते थे कि ईश्वर और मानवता के प्रति प्रेम ही धर्म का मूल आधार है।
1: उन्होंने कहा कि राम रहीम, कृष्ण करीम, मक्का और काशी उसी एक परमात्मा की अभिव्यक्तियां हैं।

0: कबीर अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने बहुत से पदों की रचना की थी। उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं बीजक, सबद, साखियां, मंगल, वसंत, होली, रेगताल आदि के रूप में हैं।
1: एक बार अपने दाम्पत्य जीवन से दुखी एक व्यक्ति संत कबीर के पास पहुंचा।
2: महात्मा जी, मैं अपने दाम्पत्य जीवन से बहुत दुखी हूँ। छोटी छोटी बातों को लेकर मेरा मेरी पत्नी से भयंकर झगड़ा होता है। मेरी पत्नी भी बहुत झगड़ालू है। कोई उपाय बताइए महाराज।
1: ठीक है, तुम मेरे पास आया करो, यहाँ मेरे पास बैठा करो। समय आने पर इसका उपाय तुम्हें अवश्य बताऊंगा।
2: महाराज, मैं इतने दिनों से आपके पास आ रहा हूँ। आपकी सत्संगति का लाभ तो मिला, किंतु आपने अभी तक कोई उपाय नहीं सुझाया।
1: ऐसा है बंदे, तुम कल दोपहर हमारे साथ भोजन करो, मेरी पत्नी भोजन बनाएगी, मैं तभी तुम्हें सफल दाम्पत्य का रहस्य समझाऊंगा।

0: बंदे का प्रणाम स्वीकार करें।
1: प्रणाम, आओ बैठो। सुनती हो, मेरे मित्र भी भोजन करेंगे। यहां बहुत अंधेरा है, एक दीपक जलाकर तो रख दो।
0: ये संत पागल तो नहीं है? दोपहर का सूरज तेजी से चमक रहा है, दिन की पर्याप्त रोशनी है, फिर भी ये दीपक।
2: ये लीजिए दीपक।
0: लगता है संत की पत्नी भी पागल है।
2: ये लीजिए खिचड़ी।
1: भाई एक थाली हमारे मित्र को दो और एक हमें। हाँ भाई मित्र, भोजन करो।
0: हैं? ये क्या, कितना सारा नमक पड़ा है, खिचड़ी तो बिल्कुल कड़वी है।
1: वाह वाह, क्या स्वादिष्ट खिचड़ी बनी है, जवाब नहीं, वाह।
0: संत ये क्या मजाक है, तुमने मुझे सुखी दाम्पत्य का रहस्य नहीं बताया और ऊपर से ऐसी कड़वी खिचड़ी।
1: बंदे यही तो है सफल दाम्पत्य का रहस्य। तुम्हें ये रहस्य समझाने के लिए ही मैंने कड़वी खिचड़ी बनवाई है और दिन के उजाले में दीपक जलवाया है।
0: क्या मतलब?
1: मतलब ये बंदे कि पति और पत्नी में इतना तालमेल होना चाहिए कि पति यदि सूर्य की रोशनी में भी अंधेरा मानकर दीपक जलाने को पत्नी से कहे तो पत्नी बिना किसी तर्क के आज्ञा पालन करे, और पत्नी यदि भूलवश कोई गलती कर भी दे तो उसकी सार्वजनिक निंदा न की जाए और न ही आलोचना की जाए, बल्कि प्रशंसा की जाए।
0: धन्य है प्रभु, संत आप धन्य हैं।
1: जाओ और अब सुख से रहो।

0: बाय।
1: कबीर हमें ये कभी नहीं भूलने देते कि संसार में मनुष्य दीनहीन रूप में प्रवेश करता है।
2: इसी प्रकार मनुष्य का प्रस्थान भी दयनीय और दुखद परिस्थितियों में होता है।
1: कबीर अभिमान से घृणा करते थे।
0: कबीरा।

0: उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर कुठाराघात किया है, जिसके कारण ये दोनों जातियां संघर्षरत रही हैं। कबीर ने अपने विश्लेषण में उस उभयनिष्ठ और सामान्य तत्व की प्रतिष्ठा की है जो मानवीयता की आधारशिला पर आधारित है।
1: कबीर ने सद्गुण के स्वरूप की भव्य अवधारणा की है। सद्गुरु वो है जो अपने ही स्वरूप को संसार में व्याप्त देखता है।

0: यद्यपि कबीर अद्वैत द्वैत आदि सिद्धांतों से परिचित थे, फिर भी अनुभव के आधार पर उन्होंने जिस सत्य का साक्षात्कार किया वो इन दोनों से विलक्षण था।
1: कबीर ने अपने काव्य में माया जगत जीव मन की चंचलता और परब्रह्म का विस्तृत वर्णन किया है। कबीर ने संसार को परिवर्तनशील और नश्वर माना है। वे अमरपुरी जाने के लिए आतुर हैं, जहां संत समाज के साथ निरंतर सदा सत्संग होता रहता है और वहीं पर सत्य पुरुष भगवान भी।

0: कबीर ने ज्ञान की, नीति की, उचित मानवीय आचरणों की, भक्ति की ऐसी दीपशिखा प्रज्वलित की जिससे आज भी जनमानस का जीवन पथ आलोकित है। आज भी कबीर की वाणी हमारा सच्चा मार्गदर्शन करती है।
1: शत शत नमन ऐसे संत शिरोमणि को, ऐसे भक्त कवि को, ऐसे समाज सुधारक को।

कबीर, लेखक इसके और प्रस्तुतिकरण यतीन्द्र चतुर्वेदी का था, वाचन स्वर विमल अरोड़ा और यतीन्द्र चतुर्वेदी का। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: लीजिए सुनिए, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। कार्यक्रम लेके आ रहे हैं आपके बीच देवराज कृष्ण दीक्षित।
1: हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हां श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 एसटीडी कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी।
3: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार जी।
2: नमस्कार,
3: मैं सुरेश चंद्र शर्मा बोल रहा हूँ सहार से।
2: शर्मा साहब, कार्यक्रम में स्वागत आपका।
3: जी सर, कैसे हो?
2: एकदम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
3: बढ़िया हैं सर हम।
2: और गांव में कैसे हैं सब?
3: सब बढ़िया हैं।
2: गर्मी बहुत पड़ने लगी है फिर से?
3: हाँ जी, गर्मी बहुत पड़ रही है।
2: क्या कर रहे हैं आजकल?
3: दुकान करता हूँ सर, परसों।
2: अच्छा, ठीक ठाक चल रही है दुकान?
3: हाँ ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है।
2: बताइए आज आपको क्या सुनवाएं?
3: आज गाना सुनना है आगरे से घाघरा मंगा जाए रसिया।
2: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: श्री हरिदास।
2: श्री हरिदास।

0: हेलो आकाशवाणी
1: हेलो आकाशवाणी।
0: सर जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो बताइए सर, कैसे हो आप लोग?
1: एकदम अच्छे हैं। कौन सा आप बोल रहे हैं हमारे?
0: सर मैं आपका पप्पू सिंह बोल रहा हूँ, श्री गरगाले धाम गड़ाया लखीपुर से।
1: पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
0: ठीक है सर, कृपा है आप लोगों की।
1: और काम कैसा चल रहा है आपका? क्या कर रहे हैं?
0: काम बढ़िया चल रहा है। अब तो खेती बेती की बुवाई की शुरुआत हो रही है बाजरा की। कुछ लोगों ने बह दिया है, कुछ उन्हें नहीं गया है, अभी बरसात के भरोसे रुके हुए।
1: अच्छा, और सब ठीक ठाक चल रहा है?
0: हाँ सब ठीक चल रहा है साहब।
1: बताइए, फरमाइश क्या रहेगी कार्यक्रम में आपकी?
0: सर जी, फिल्म का नाम है करण अर्जुन।
1: जी
0: सूरज कब सूर किरण से, चंदा कब दूर पवन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: सर जी, हमारे कुछ मित्रगण हैं, हरपाल सिंह भगत जी हैं
1: जी
0: और दयालु जी महाराज हैं, देवीदास जी हैं और हरविलास शर्मा जी हैं।
1: नमस्कार।
0: ठीक है सर, नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी।
0: नमस्कार जी, दीक्षित जी नमस्कार। मैं ब्रज रेडियो में सांवरिया गांव थरावर तहसील कुमेर जिला डीग राजस्थान से।
1: नमस्कार, स्वागत है सांवरिया जी कार्यक्रम में आपका।
0: और आप कैसे हैं सर?
1: हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, गर्मी जरूर है और बरसात भी हुई है।
1: जी जी, बरसात होने के बाद अब जो गर्मी है उमस भरी गर्मी है।
0: उमस भरी गर्मी है सर।
1: जी जी, खेतों में क्या कर रहे हैं सांवरिया जी?
0: ज्वार बाजरा यही बुवाई का काम कर दिया है, तो साहब पहले ही बरसात हो गई थी ना।
1: अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस समय फ्री हैं?
0: फ्री है साहब। हाँ,
1: परिवार में सब कुशल मंगल?
0: सभी कुशल मंगल है सर।
1: बताइए फरमाइश क्या रहेगी आज आपकी?
0: मन की आंखें दिल का ये रुक जा
1: यहीं पे कहीं
0: कहीं पे नहीं
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: हाँ भैया, नमस्कार
0: स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी। भैया योगेश चांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़
0: योगेश जी, क्या हाल चाल?
1: से। बढ़िया भैया,
0: बढ़िया। और गर्मी कैसी है बेमेतरा में?
1: बहुत है भैया।
0: अभी बारिश नहीं हुई है?
1: नहीं हुआ है अभी भी, काफी इंतजार है, खेती बाड़ी काम भी उससे अधूरा है।
0: जी, रुके हुए हैं काम खेती के।
1: हाँ जी
0: जी चलिए, भविष्य में बारिश हो अच्छी खासी और हमारे किसान खुश हों, बुवाई का
1: जी
0: काम शुरू हो,
1: जी
0: ऐसी कामना करते हैं।
1: जी
0: बताइए योगेश जी, फरमाइश क्या है आज आपकी?
1: सागर जैसी आंखों वाली फिल्म सागर से सुनवा देंगे।
0: लीजिए, सुनवाते हैं आपको आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।
1: धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: नमस्कार
0: नमस्कार।
1: सर। ग्राम लालू आगरा से बात कर रहा हूँ, नरेंद्र जी।
0: नरेंद्र जी,
1: सर काफी समय बाद आपसे बात हो रही है सर।
0: अरे वाह, बहुत दिनों के बाद फोन मिला है।
1: जी हाँ, ये बहुत बिजी मिलता है सर, आपकी श्रोताओं की संख्या बहुत बढ़ गई सर, आपका
0: जी,
1: फोन लगता ही नहीं है।
0: आप जैसे बहुत सारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन लगातार
1: जी
0: प्रयास करने पर फोन लग ही जाता है,
1: जी
0: तो इस समय व्यस्त हो जाता है फोन।
1: हाँ जी हाँ जी। और सर बताइए।
0: बढ़िया हैं सभी लोग, आप कैसे हैं?
1: जी हम भी सब ठीक हैं सर, अच्छे हैं
0: और परिवार में कैसे हैं सब?
1: सब ठीक है सर, कुशल मंगल है सब, अच्छे हैं
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आज आपका फोन मिला है तो फरमाइश बता दीजिए।
1: सर। उसका एक गाना सुनना था, मेरा तोहफा तो कर ले कबूल।
0: जी लीजिए, सुनवाते हैं आपको ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे देवराज कृष्ण दीक्षित, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए सुनिए विशेष कार्यक्रम कबीर प्रेम सत्य और समरसता। स्वर आलेख एवं प्रस्तुति सहयोग चंद्रिका कुमार का, लक्ष्मी अगम में शोधार्थी इसमें वो भी, और संयोजक हैं इस कार्यक्रम के संयोजक एवं प्रस्तुतकर्ता ओपी सिंह।

0: न मंदिर में न मस्जिद में खोजो अपने प्राण, कबीरा कहते प्रेम से मिलता है भगवान। सत्य जहां निर्भीक हो करुणा जिसका धर्म, वहीं कबीर का लोक है वहीं मनुज का कर्म।
1: श्रोताओ, कबीर एक ऐसा नाम जो केवल भारतीय संत परंपरा का उज्जवल अध्याय ही नहीं बल्कि मानवता की साझा चेतना का अमिट स्वर है। उन्होंने अपने दोहों और साखियों के माध्यम से प्रेम को जीवन का मूल मंत्र, सत्य को आचरण का आधार और समरसता को समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। कबीर ने कहा था, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यही ढाई आखर आज भी मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का सबसे सरल और सबसे गहरा सूत्र है। इन्हीं जीवन मूल्यों को समर्पित है आज का विशेष कार्यक्रम कबीर, प्रेम सत्य और समरसता। आइए संत कबीर की वाणी, उनके जीवन दर्शन और उनके अमर संदेशों के साथ एक ऐसी यात्रा पर चलें जो हमें भीतर से प्रकाशित करती है और समाज में प्रेम सद्भाव और आत्मबोध का दीप जलाती है।

0: 15वीं शताब्दी का भारत इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन अनेक अंतर विरोधों से घिरा हुआ था। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत के अंतिम चरण का समय था। राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ समाज भी गहरे विभाजनों का शिकार था। जाति व्यवस्था में मनुष्य की पहचान को उसके कर्म और गुणों से हटाकर जन्म से जोड़ दिया था। ऊंच नीच, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव ने मानवता को अनेक खांचों में बांट दिया था। धार्मिक जीवन भी बाहरी आडंबरों और कर्म कांडों के बोझ तले दबता जा रहा था। एक ओर मंदिरों और मठों की परंपराएं थी तो दूसरी ओर रूढ़ियों और कट्टरताओं से घिरा धार्मिक आचरण। ईश्वर की खोज आत्मचिंतन में नहीं बल्कि बाहरी प्रदर्शन में अधिक दिखाई देने लगी थी। ऐसे समय में समाज को एक ऐसे स्वर की आवश्यकता थी जो मनुष्य को उसके भीतर बसे सत्य से परिचित करा सके। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उत्तर भारत में भारतीय आंदोलन का सशक्त प्रवाह विकसित हुआ। इस धारा ने जाति, संप्रदाय और बाह्य आडंबरों से ऊपर उठकर भक्ति, समानता और मानवता का संदेश दिया। इसी युग में काशी की पावन धरती से एक ऐसी निर्भीक वाणी सुनाई दी जिसने समाज से प्रश्न करने का साहस किया।
1: जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ा रहिंदो म्यान।
0: ये केवल एक दोहा नहीं था बल्कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था को दी गई एक चुनौती थी। कबीर ने मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके ज्ञान, चरित्र और आचरण से की। उन्होंने प्रेम को, धर्म, सत्य को, साधना और मानवता को सबसे बड़ी पहचान माना। उनकी वाणी ने उस युग के जड़ हो चुके सामाजिक ढांचे को झकझोर दिया और एक नई चेतना का संचार किया। लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसा निर्भीक संत जिसने अपने शब्दों से पूरे समाज को नई दिशा दी, वे आया कहाँ से? उसके जन्म की कथा भी उतनी ही अद्भुत, रहस्यमय और लोक विश्वासों से समृद्ध है जितनी उसकी वाणी। संत कबीर के जन्म को लेकर इतिहास और लोक परंपराओं में अनेक मत प्रचलित हैं। अधिकांश विद्वानों का मत है कि उनका जन्म 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में काशी के समीप लहरतारा क्षेत्र में हुआ। जनश्रुति के अनुसार एक नवजात शिशु को लहरतारा तालाब के किनारे परित्यक्त अवस्था में पाया गया, जिसे काशी के जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा अपने घर ले आए। उसी वात्सल्य और स्नेह में उनका पालन पोषण हुआ।

0: अरे ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है?
1: अरे
0: तो लगातार रोते ही जा रहा
1: आ तो रही है,
0: चुप ही नहीं होता है। ए जी
1: हाँ
0: जी जरा सुनो तो।
1: हाँ हाँ
0: पालकी रुकवाओ और देखो कि माजरा क्या है।
1: अच्छा ठीक है। अरे कहार भाइयों, अरे भैया ये जरा हमारा लहर तारा तालाब के किनारे पालकी रखना जरा।
2: अरे
0: अरे भैया तनिक तनिक तनिक पीछे हटो, हम देखते हैं ना, हम देखते हैं। अरे ले आजा बेटा,
3: आजा आजा आजा मेरी गोदी में आजा आजा।
0: रो क्यों रहा है रे,
3: चुप चुप हो जा।
0: अच्छा तुझे भूख लगी है, फिक्र मत कर, अभी तेरी अम्मा आएगी तुझे दूध पिलाएगी। देखो तो कितना प्यारा बच्चा है।
1: हाँ, बच्चा तो बहुत ही प्यारा है।
0: सूरज डूबा भी नहीं है, जाने कौन इसे इस वीराने में छोड़ गया है।
1: हाँ, कौन छोड़ गया बच्चा?
3: इस तपती धरती और ऐसी तीखी धूप में
0: इस नन्नी सी जान को कोई निर्दयी ही छोड़ सकता है।
3: अब ये बच्चा रोता नहीं तो और क्या करता है।
1: यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे तुम्हें कोई दिखाई दिया क्या यहाँ?
4: अरे रुका भैया, हमें किसी को दिखाई दिया।
1: अरे अरे भाई कोई है?
5: कोई है भाई?
1: अरे कोई है? ये बच्चा किसका है?
6: हमारी कोई आवाज सुन रहा है क्या? बच्चा किसका है?
7: किसका है ये बच्चा?
1: अरे कोई है? अरे यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं कौन इसे यहाँ छोड़ गया या छोड़ गई। सुन अरे सुन, ऐसा कर तू भी इसे यहाँ छोड़ दे और चलकर पालकी में बैठ, अरे घर भी तो जाना है।
0: ना ना कैसी बात करते हो जी, है देखो तो मेरी गोद में कैसे खेल रहा है।
1: हाँ, खेल तो रहा है।
0: ले ले। अब मैं भी इसे इसके हाल पर छोड़ दूँ?
1: अरे
3: ना जी ना, ये मुझसे ना होगा।
1: अरे तो फिर क्या करेगी तू?
3: करूँगी क्या,
0: हमारा ब्याह हुआ है तो बच्चे भी तो होंगे ही ना। खुदा के फजल से ससुराल पहुंचने से पहले ही मेरी तो गोद भर गई। अब हम इसे अपना पहला बच्चा मानकर प्यार से पालेंगे और क्या है ना, है ना?
8: अरे हाँ हाँ बेटा नूरा, दुल्हन ठीक कह रही है। आलिम फाजिल कहते हैं कि बच्चा पैदा करना और उसे पालना दोनों सबाब का काम होता है, इसलिए तुम इस बच्चे को अपना लो, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा।
0: ले बच्चा आजा।
6: अरे नूरे रख ले बच्चे को,
5: रख ले नूरा,
6: करम हुआ तेरे ऊपर।
7: अरे समझ ले।
1: अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाइयों, अब हम इस बच्चे को अपना ही बच्चा मानेंगे। चल अरे चल नहीं, अब पालकी में तो बैठ। चल उठाओ भैया, चलो चलो
9: कबीर के बारे में अधिक जानने के लिए हमने रुख किया उन लोगों की ओर जिन्होंने कबीर को बहुत करीब से जाना और जिया।
10: हमारे साथ है लक्ष्मी अगम्य जो एक शोधार्थी है। आप कबीर के सुझाए हुए मार्ग पर न केवल चलती हैं, बल्कि उस मार्ग पर चलने के लिए लोगों को भी प्रेरित करती हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी।
11: ऐसी वाणी बोलिए मन का आप आखोए, और अनको शीतल करें आप हो शीतल होए। आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रिका। साथ ही इस कार्यक्रम को सुन रहे आकाशवाणी के सभी प्रिय श्रोताओं को कबीर साहब के प्रकाशित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
10: लक्ष्मी सबसे पहले ये बताइए कि कबीर को आप किस रूप में देखती हैं?
11: बालम आओ हमरे गे, तुम बिन दुखिया देह रे, तब कोई कहे तुम्हारी नारी मोकू यह संदेह रे। है कोई ऐसा परोपकारी पियसे कहे सुनाए रे, अब तो कबीर बेहाल भयो है बिन देखे जो जाए रे। चंद्रिका मैं कबीर पंथ से हूँ और कबीर मेरे इष्ट हैं, तो मैं उन्हें तमेव सर्वम मम देव देव वाले भाव से ही देखती हूँ। लेकिन अगर भाव पक्ष को छोड़कर कला पक्ष से देखना हो तो वे संत साहित्य के पुरोधा होने के साथ साथ एक क्रांतिकारी हैं, समाज सुधारक हैं और संत होने के साथ साथ एक अद्भुत भक्त और कविराज हैं
10: जी।

0: लक्ष्मी जी कबीर का चाहे जो भी रूप हो, चाहे वो संत के रूप में हम देखें या फिर एक
1: बिल्कुल
0: समाज
1: बिल्कुल
0: सुधारक के रूप में देखें, वो
1: बिल्कुल
0: सभी को प्रेरित करता है। अच्छा ये बताइए कि कबीर का व्यक्तित्व भारतीय समाज में इतना प्रभावशाली क्यों माना जाता है?
1: देखिए, जब भारतीय समाज और बात कबीर को लेकर होती है तो वे उसमें बिल्कुल सटीक बैठते हैं। उनकी बातें लोक जीवन, विशेषकर नैहर, शासुर और बाजार से उठती हुई अंततः पारलौकिक हो जाती हैं। जैसे कहते हैं कि नैहरवा हम का न भावे, नैहरवा नैहरवा साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई जाए ना आवे। ठीक है, और यही बात हमें मलिक मोहम्मद जायसी साहब में भी दिखती है। ए रानी मन देखो बिचारी, यही नैहर रहना दिनचारी। यहाँ हमें कबीर के सूफियाना अंदाज का भी दर्शन होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि कबीर में सूफियों के प्रेम तत्व, इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी का भी दर्शन होता है। यही कारण रहा है कि आज 14वीं सदी हो या आज, दोनों ही युगों में कबीर हमारे समाज में उतने ही प्रभावशाली हैं और आगे भी रहेंगे जब तक जनजीवन में साहित्य रहेगा।
0: जी क्या बात है, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने कबीर के भाव को व्यक्त किया। और जब भी हम लक्ष्मी जी बात करते हैं भारतीय
1: जी
0: दर्शन की, तो कबीर का नाम आना, कबीर के विचारों के दोहे आना लाजिम ही है। तो कबीर के दोहे आज भी जनमानस की जुबान पर है, और उनकी भाषा और शैली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है?
1: देखिए, कबीर स्वयं कहते हैं कि संस्कृत जल निधि कूप है, भाखा बहता नीर। उस समय जब काशी में पंडितों का दबदबा था, संस्कृत भाषा का दबदबा था, तभी गोस्वामी जी ने भी कहा कि कीरति भरति भूति भले सोई, सुर समान सब कर हित होई, कहकर मानस की रचना की, अवधि में की। वैसे ही 14वीं 15वीं सदी में जहाँ जनता अनपढ़ और अशिक्षित थी, कबीर ने अपनी वाणियों को सधुकड़ी भाषा में जन जन की जुबान पर चढ़ाया। वेदों और शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को दोहों चौपाइयों के माध्यम से जनता में परोसा। उन्होंने कहा कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। बहुत ही सहज शब्दों में संस्कृत के, जो संस्कृत में वेदों में शास्त्रों में जो बहुत ही गूढ़ था, बहुत ही गहरा था, उसे सहज भाषा में पब्लिक के सामने रखा, जनता के सामने रखा। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। भाषा तो कबीर के पीछे पीछे चलती है, जिस भाव से वो जो कह देते हैं वही फिट बैठ जाता है। यही कारण है कि हिंदू उर्दू की तमिल लिए रेखता के मंचों पर भी कबीर गाए जाते हैं। गजल परंपरा की झलक में भी कबीर अग्रणी हैं। कि भाषा तो देखिए वास्तव में शोध का विषय है।
0: जी, इनकी
1: हाँ जी
0: चाहे हाँ फक्कड़पन हो या
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पटकार की
1: बिल्कुल
0: भाषा हो,
1: हाँ
0: प्रेम की
1: जी जी
0: भाषा,
1: फक्कड़
0: ये सभी
1: बिल्कुल
0: इनकी भाषा
1: बिल्कुल
0: में समाहित है।
1: फक्कड़ फिल्म में अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। तो कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, ये चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या। वही जब वो हिंदुओं को, या हिंदू और मुस्लिम उनके दोनों समय अनुयायी थे, 15वीं सदी में जब वो आए थे, तो
0: जी
1: उन्होंने मुसलमानों को फटकारते हुए कहा कि क्या बहरा हुआ खुदा, ऐसे ही
0: हाँ
1: टीटी के पग नेवर बाजे, अगर आप चीटी के पाओ में पायल बनवा दे तो भी साहेब सुनता है।
0: जी
1: हिंदुओं के लिए उन्होंने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जंग मो पंडित भया ना कोई। लेकिन जब वो प्रेम में आते हैं, फटकार की भाषा अलग हो जाती थी, लेकिन जब प्रेम में आते हैं तो कहते तड़पे बिन बालम मुरझिया।
0: कबीर ने किसी गुरुकुल या मदरसे में औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। उनका विद्यालय था जीवन, समाज और अनुभव। वे स्वयं विनम्रता से कहते हैं,
2: मसी कागज छुयो नहीं, कलम कही नहीं हाथ।
0: किंतु यही संत अपनी सहज वाणी और गहन अनुभूति के बल पर भारतीय चिंतन के महानतम लोक दृष्टाओं में गिने गए। उनकी वाणी ने शिक्षित और अशिक्षित दोनों को समान रूप से प्रभावित किया। लोक मान्यता है कि संत कबीर ने वैष्णव संत स्वामी रामानंद को अपना गुरु स्वीकार किया। कबीर के जीवन में गुरु केवल ज्ञानदाता नहीं बल्कि आत्मबोध के पथ प्रदर्शक हैं। इसलिए वे श्रद्धा से कहते हैं,
2: गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद तियो बताए।
0: गुरु से प्राप्त यही आत्मज्ञान आगे चलकर कबीर की वाणी में प्रेम, सत्य और निर्भीक सामाजिक चेतना के रूप में अभिव्यक्त हुआ। मतलब कबीर को अगर हम पढ़ें, उनको देखें, उनके विचारों पर अगर हम अमल करें, तो हमें किसी भी बाह्य आडंबर की जरूरत नहीं
1: बिल्कुल
0: है, चाहे हम
1: बिल्कुल
0: किसी भी
1: बिल्कुल
0: पंथ के हों। और यही भाव था कबीर का, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़कर आज भी उनके विचारों को जीते हैं और उनके

0: जो उन्होंने विचार बनाया है उसकी ओर अग्रणी है, उस पर हम अमल करते हैं, उस पर चलते हैं। तो आज के समय में जब समाज अनेक प्रकार के विभाजनों और तनावों से गुजर रहा है, हम देख रहे हैं, इसी में कबीर के विचार कितने प्रासंगिक हैं, क्या मानती हैं आप?
1: कबीर, देखिए आज कबीर साहब का प्रकाट्य दिवस है और 2 दिन पहले अभी मुहर्रम मनाया गया पूरे देश भर में। कबीर ने कहा कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारी। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको लेकर कबीर 14वीं शताब्दी में चल रहे हैं। तभी उन्होंने कहा कि क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, राम है कौन निहोरा। ऐसा
0: जी
1: उन्होंने कहा था कि वे जगह को मत देखो, न धर्म को देखो, न मजहब को देखो, और सबकी एकता पर उन्होंने बल दिया। यही कारण जी आज काशी में कबीर चौरा है, कबीर साहब का जो मजार है, तो वहां पे हिंदुओं का भी है और मुसलमानों का भी, क्योंकि उस टाइम उनके दोनों ही अनुयायी थे। और उन्होंने ये भी कहा कि कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, वो तो सबकी खैर मना रहे हैं।
0: जी
1: कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर, मतलब किसी से झगड़ा नहीं है।
0: जी और यही कारण है आज चाहे वो हिंदू संप्रदाय हो,
1: बिल्कुल
0: मुस्लिम
1: बिल्कुल
0: हो, कोई भी संप्रदाय हो,
1: जी जी
0: वो उनके विचारों को पूछता है। तो नई पीढ़ी के लिए कबीर का सबसे बड़ा संदेश क्या है आज के समय में?
1: आज की जो नई पीढ़ी है वो हमारी प्रतियोगिता के दौर से गुजर रही है, कंपटीशन के दौर से गुजर रही है, तो उनके लिए छोटा सा संदेश ये हो सकता है, जो मैं खुद समझती हूँ मेरे लिए भी है, कि मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत, और कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत। हमारी जो नई पीढ़ी है वो नई ऊर्जा से लबरेज है और होनी भी चाहिए। जो नया यूथ है वो एक दिन पुराना होगा, मानती है कि नहीं?
0: जी बिल्कुल,
1: हाँ,
0: जब
1: तो
0: पत्ते हरे होते
1: हाँ
0: हैं और एक
1: बिल्कुल
0: समय बाद वो पीले होकर झड़ते भी हैं,
1: जी
0: ये
1: जी जी ये बहुत
0: परिवर्तन ही
1: सुंदर।
0: संसार
1: हाँ
0: का नियम है।
1: मुझे ये दोहा याद आ गया कि तरवर बोले पास से सुनो पात एक बात, यहाँ की तो
0: जी
1: यही रीति है, एक आवत एक जात, तो
0: जी
1: यानी जाने की परंपरा। इसी पे कबीर ने कहा कि कबीर काहे गर्भियों इस जोबन की आस। जोबन ये जो नई नई ऊर्जा है, नई सुंदरता है, टेसु का फूल, टेसु टेसु फूले दिवस दो खंखड़ पड़े पलास।
0: जी बिल्कुल
1: युवा पीढ़ी को टेसु का फूल कहा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसमें चेतनता होनी चाहिए, उसे जागरूक होना चाहिए। ऐसा संसार है, ऐसा ही संसार है, ऐसा ये संसार है जैसे सेमर फूल है ना, दो
0: जी
1: दिन के व्यवहार में झूठे रंग ना भूल। तो उन्होंने हमेशा चेताने की कोशिश की है, जागरूक करने की कोशिश की है, जगाने की कोशिश करी है। तो आज जो लोग दिखावे में होड़ सी लग गई है कि उसका छोटा मकान है, तुम्हारा भी बड़ा होना चाहिए, है ना जी। तो कबीर
0: बिल्कुल
1: ने कहा कि वही साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो अंततः हमें संयम, संतोष और विवेक
0: जी,
1: और सांस से
0: मतलब
1: बचाते, डिप्रेशन से बचाते हैं कबीर।
0: आज के समय में कबीर के विचारों को सुनना, उनके विचारों को पढ़ना अपने आप में एक
1: बिल्कुल
0: संतोष दे जाता है। अच्छा, अंत में संत कबीर प्राकट्य उत्सव के अवसर पर हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जी, प्रेम सबसे जो गहरा, जो मुझे लगता है कि भाईचारा हो, प्रेम हो, है ना, यह तो मार्ग प्रेम का खाला कर घर नहीं, कबीर ने कहा।
0: बिल्कुल
1: तो जी यही संदेश है कि हम केवल पढ़े, कबीर को पढ़े सुने ही नहीं, बल्कि आत्मसात करें। जब
0: जी
1: आत्मसात करेंगे तो वही फक्कड़पन, वही मिजाज हमारे में भी आ जाएगा, और
0: हम सामने वालों को भी उतना
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: प्रकाश उतना रोशन कर पाएंगे
1: बिल्कुल
0: अगर हम
1: बिल्कुल
0: कबीर के विचारों को अपनाएंगे तो। लक्ष्मी जी, आपने हमसे आज के शुभ अवसर पर बातचीत की, और न सिर्फ बातचीत की, बहुत खूबसूरत संदेश, बहुत खूबसूरत विचार कबीर के हमसे साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।
2: कबीर के लिए प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि ये जीवन का सर्वोच्च सत्य था। ज्ञान तभी सार्थक है जब उसमें प्रेम हो, धर्म तभी पूर्ण है जब उसमें करुणा हो, और मनुष्य तभी श्रेष्ठ है जब उसमें दूसरों के लिए सम्मान हो। कबीर ने सत्ता से भी प्रश्न किए और समाज से भी। उन्होंने पाखंड पर निर्भीक प्रहार किया।
3: माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर।
2: कबीर बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि भीतर के परिवर्तन की बात करते हैं। वे कहते हैं,
3: बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई।
2: कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों समाजों की रूढ़ियों की आलोचना की। वे किसी धर्म के विरोधी नहीं थे, बल्कि

संकीर्णता के विरोधी थे। उनका संदेश स्पष्ट था, ईश्वर मंदिर और मस्जिद में नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में है। उन्होंने कहा है, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आज जब समाज अनेक प्रकार के विभाजनों से जूझ रहा है, कबीर की वाणी हमें जोड़ने का कार्य करती है। यदि आज कबीर हमारे बीच होते तो शायद वे सोशल मीडिया की कटुता, जातीय भेदभाव, धार्मिक असहिष्णुता, पर्यावरण संकट और उपभोक्तावाद पर भी उतनी ही निर्भीकता से बोलते। वे कहते, सत्य बोलो, प्रेम बांटो, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। यही कबीर का संदेश।

कबीर ने कहा था, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर की वाणी हमें सिखाती है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, सत्य सबसे बड़ा धर्म और समरसता ही मानवता का वास्तविक स्वरूप है। इन्हीं विचारों के साथ ये विशेष कार्यक्रम कबीर, प्रेम, सत्य और समरसता यहीं संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम कबीर प्रेम सत्य और समरसता। स्वर आलेख एवं प्रस्तुति सहयोग चंद्रिका कुमार का था। संयोजक एवं प्रस्तुतकर्ता थे ओपी सिंह। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीत बात और SMS। आप भी सुन सकते हैं अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा। करें हमें व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9412-25575।

लेते हैं सुधी श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेश। आप जुड़े कार्यक्रम में अपने व्हाट्सएप संदेश के साथ में। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने, पीएस नभानकर और तुषार करांगले अगले संदेश के साथ में है व्हाट्सएप में। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से है विनोदपुरी वीपी, रंजू अशोक, सुशील बीकेपुरी, कैलाशपुरी नीलम, रमा पालीपुरी, सुनील पाठक और वीकेपुरी का ये व्हाट्सएप संदेश। और आप भी जुड़े कार्यक्रम में। शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल और सोनिया साईराज विशाल भी जुड़े संदेश के साथ में। बबलू ठेकेदार शेख वजीर, सोहिल शेख और मोताला बाजार से ये भी जुड़े हैं सुधी श्रोता। और कार्यक्रम में जुड़े आप भी। शेरवानी स्कूल गंजुटवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। मोताला मार्ग से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, कुमकुम सुरलकर भी जुड़े हैं कार्यक्रम में। गीत बात और एसएमएस कार्यक्रम में जुड़े हैं श्रोता साथी। गांव पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे यादव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, कुमारी प्रणाली, कुमार सर्वद और कुमारी सानवी देशमुख, ये देशमुख परिवार जुड़ा कार्यक्रम में। आपका संदेश भी मिला नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन। अगले संदेश के साथ में जलाला वैस से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा और विशाल पिया दिशानी और निमित आहूजा भी जुड़े कार्यक्रम में। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू मोनू, अनय अनाया, ईशु और पेंटर बाबू। अगले संदेश के साथ सप्तरंग श्रोता परिवार कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी ऋषिकेश, जीविका और सानिका दले। पूनावड़ी पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका और विशाखा।

संदेश के साथ में श्रुति श्रोता है, व्हाट्सएप के साथ में मंजिल जी हाँ, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव एक और संदेश के साथ में है। आप सुधी श्रोता हष्ट रामेश्वर, परमेश्वरी मीनाक्षी, मनोहर बागरी और प्रभुलाल बागरी, ये सभी हमें संदेश भेजते हैं। संदेश के इन्होंने भेजा झालावाड़ राजस्थान से, लाल माता सुदामा नगर अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान के सुधी श्रोता। और अगले संदेश के साथ में आप पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू, पप्पू हसमुखलाल, बुलबुल संजीव। और ये एक और संदेश हम तक पहुंचा झज्जर हरियाणा से, बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया का।

संदेश के साथ में जुड़े हैं व्हाट्सएप संदेश में। आप हैं सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबाहत किरण हुजरे और रेहान शेख। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। आप जुड़े दरियापुर भावली। महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप सुशील और शेरी बडनेर अकोला से हैं अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर। एक और मैसेज मिला हमको बोरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। विनोद मूरत, निहिता जैन, मयंक मूरत, चेतन नाटा, दिशा कुशु मूरत का आप जुड़े कार्यक्रम में। नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी और बेगम गुलनाज नाज। आइए सुने सुधी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म जीवन धारा से ये गीत कार्यक्रम में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीत आनंद बख्शी का, आवाज इस गीत में किशोर कुमार की।

गीदड़ जी ने लीडर बनकर झाड़ी एक तकरीर, अखबारों में छप गई तोता मैना की तस्वीर। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अरे फिर वही हुआ जो हमेशा

0: गंगाराम बेचारा गंगाराम सहारा रह गया।
1: आरन बख्शी का गीत संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज से सजा रहे थे इस गीत को फिल्म जीवन धारा के लिए किशोर कुमार। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। लेते हैं अगला व्हाट्सएप संदेश।

व्हाट्सएप संदेश के साथ में जुड़े हैं सुधीर श्रोता कार्यक्रम में। राजकुमार कांति निकेतन से कुणेश्वर प्रसाद गुप्ता, मास्टर रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता, कोमल गुप्ता, रानी मुकेश, कुमकुम, रूपा इलाहाबादी आप जुड़े कार्यक्रम में। आहार नाथगाड़ छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा कार्यक्रम में। अम्बेडकर चौक वाकड़ी से हैं उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े। एक और मैसेज के साथ में मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज, भाभी सरता गौतम का संदेश। और आप जुड़े बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव वोदवड़े, अनीता गाठोड़े, रमेश गाठोड़े, पत्रकार हरिभाऊ विडवे, चिरंजीव, अनिकेत सोनवड़े, शुभांगी श्रवण, अनिता विडवे, ये सभी श्रीरामपुर भोकर महाराष्ट्र के सुधी श्रोता। और आप जुड़े रिंग छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का संदेश भी मिला। हरदिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता गांव नथाना पंजाब के सुधी श्रोता। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली से जुड़े कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से हैं मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलूफर फातिमा अगले संदेश के साथ में है। कुड़ी सेक्टर 5 से जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, बेबी, गर्मी और हिमांश, सैयद मसूर, शाइना अक्सा, नाजिया, आफिया इब्राहिम ये सभी जुड़े। कुमार हेड़ा सहारनपुर से आप जुड़े कार्यक्रम में। रंगोली राजनगर से नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, चुलबुल रानी, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, प्रदीप कुमार नायक, राजबहादुर शाह, शंभू, रजनी और सागर। एक और सुधी श्रोता चौलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया व्हाट्सएप संदेश के साथ में। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार जुड़े। जॉन डिकस्टो, रोजी डिकस्टो, पॉल डिकस्टो ने जनकपुरी सहारनपुर से मैसेज भेजा है और आप भी जुड़े कार्यक्रम में। वीरगम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावेश और सनी भावसार कार्यक्रम में जुड़े। ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी का है मीना पुंजराज, आरती आकर्षण और जयश्री। एक और मैसेज के साथ में तेलंगाना से चोटपल, कस्तूरी रामगढ़ और विभा और पृथ्वी नारायण आप जुड़े कार्यक्रम में। ऑरेंज सिटी नागपुर महाराष्ट्र से विठल यादव, अनसुईया, पवन रजादे, छत्रपति संभाजीनगर से मंगेश इंगले, संध्या और स्वराज विराज। मैसेज के साथ में रहे सुधी श्रोता। सदर बाजार मारवाड़ा बिलाड़ राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण, तरुण और प्रतीक चौहान कार्यक्रम में। राजकोट से जेमनी कुमार, हितल और राकेश जैन एक संदेश के साथ में। चांदनी चौक गणई पडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लकी, विक्की, नानू, रविंद्र और सोनक फिल्म ये सभी सुधी श्रोता जुड़े कार्यक्रम में। मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूमा, महिमा शेख, नोमान माहिरा शेख, नोमान शेख, सुलेमान और शेख मोहम्मद कलीम, नाला सुपारा मुंबई के सुधी श्रोता। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साई गायकवाड़। प्रेम सिंह जोड़ा, जी हां प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दीपेंदर, कुलदीप सिंह, एकम और दमन अभिज्योत ये बठिंडा पंजाब से हमारे सुधी श्रोता। सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता मंदूरकर भी जुड़े डाबकी रोड अकोला से। कार्यक्रम में जुड़े सुधी श्रोता हैं अपने संदेश के साथ में। गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा, मिखाइल, जैनब और सुजावर। जैनब मुजावर हैं गोविंदपुरा अहमदनगर से और आपने संदेश भेजा। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, महेश्वरी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी और शौर्य दिनेश ये सभी उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के सुधी श्रोता। भगवत वर्मा, शांति, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा भी दतरंगी से हमें मैसेज भेजते हैं और आपने मैसेज भेजा सनावत से। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और शादाब खत्री का संदेश मिला। जिला वरंगल से हैं मोहम्मद खाजा रिजवानुद्दीन, मोहम्मद ख्वाजा फसीउद्दीन और आयशा तबस्सुम जुबेरिया का यह संदेश मिला। दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, सायमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत जुड़ी कार्यक्रम में। बादरा ठाकुरा पथरिया से मीनू मरावी, लता अनुराग मरावी और अभिनव मरावी का संदेश मिला। और एक संदेश और लेते हैं कार्यक्रम में आप जुड़े कार्यक्रम में। नेहरू चौक निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, नियुद्दीन मतीन, सैयद खलील,

आपने संदेश के लिए गुजारिश करी मनोज, रोहित, अयूब, अशोक जसवत, सुषमा जसवत ने, आनंद लोक कॉलोनी गोवर्धन रोड मथुरा के सुधीर श्रोता, और आप भी जुड़े कार्यक्रम में अपने व्हाट्सएप संदेश के साथ में।

आप जुड़े कार्यक्रम में संदेश के साथ में हैं। गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश प्रतीक्षा, स्वप्निल रक्षिता और पूरा लोखंडे परिवार संदेश के साथ में जुड़ा। उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसु, अर्णव सत्यामानंद भी जुड़े बाकुड़ झारखंड से। और आप जुड़े दीवाना रेडियो लिसनर क्लब जमनिया जिला गाजीपुर से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल। अगला संदेश श्रोता साथियों का अम्बाड़गढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीजा, अनस और रेहान ने संदेश भेजा। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकाल रेवाड़ भी जुड़े। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक और सीमा साहू का संदेश मिल चुका है। नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, नवेद सुहेल रसीद, अनम और यशफ अब्बासी जुड़े मारहरा दरवाजा एटा से। एक और संदेश के साथ में है टैगोर गार्डन से ये सुधीर श्रोता, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। एक और व्हाट्सएप संदेश श्रोता साथियों का लेते हैं। आप जुड़े गणेशपुर गंज डुंडवारा इटा से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, सायमा सरफराज, गुल फराज और बेबी मुस्कान। अगला संदेश श्रोता साथियों का संदेश के साथ में है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, वैदेही जोशी, हंसिका जोशी और अकिता जोशी ने संदेश भेजा। अगले संदेश के साथ में सतीश अनेजा, विमला अनेजा चंडीगढ़ से मैसेज के साथ में सुधी श्रोता है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता बमरकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू। संदेश के साथ में नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश यादव, अनिता आरती प्रसाद, सोनल बेबी सिया, सोमनाथ और गीता का संदेश मिला मनाली हिमाचल से। जी हाँ, मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस भाई। चंडीगढ़ से शैफाली, शैफी, डेविस, विमला, सतीश अनेजा का एक और संदेश। मंजू का टीला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर सतना एमपी से उमंग और आकांक्षा मलिक जुड़े हैं। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला विशाल और निशा। आप जुड़े हर्षा रामेकर, दिलीप अक्षय रुद्रा और रुचिका रामेकर परवार। गंगा रोड कंपिल फरुखाबाद से डॉक्टर प्रवेश कुमार, अखिलेश टिंकल, मास्टर गीत अरविंद और रामलखन। सुभाष योगी, सुशील, डब्बू बब्बू, रावजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, कृष्णा कॉलोनी हांसी से। आइए सुनते हैं सुधी श्रोताओं की पसंद पर हम आपके हैं कौन इस फिल्म से ये गीत। आवाज इस गीत में लता मंगेशकर की, देव कोहली का गीत संगीत राम लखन का।

गीत देव कोहली का था, संगीत राम लखन का, हम आपके हैं कौन। जी हाँ, इस फिल्म से इस गीत को आवाज़ दे रही थी लता मंगेशकर। उसके साथ ही कार्यक्रम गीत बात और ऐसे में सब संपन्न होता है FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं दामोदर शर्मा।

कह दीजो उधो इतनी सी बात हमारी। अभी आपने सुना दामोदर शर्मा के स्वर में ये गीत, और आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में ये अगली रचना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए।

0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन जुस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। कार्यक्रम लेके आ रही हैं आपके बीच प्रियंका खंडेलवाल, जिसमें महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों को मोटापे से कैसे दूर रखें, इन विषयों पर रहेगी आज की चर्चा। साथ ही लेंगे आप डॉक्टर सृष्टि भारद्वाज से आरोग्य भेंट वार्ता क्रम में, वार्ता सुनेंगे आप गर्मियों में कैसा हो आपका आहार इस विषय पर। इनसे बातचीत करेंगी रेशमा गर्ग, आज की विशेषज्ञ डॉक्टर सृष्टि भारद्वाज। साथ ही लेंगे कार्यक्रम में आप फिल्म संगीत का आनंद। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। संध्या 5 आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गर्मामयी उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। संध्या 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे दिलीप यादव, जिसमें चर्चा रहेगी आज जल संरक्षण में बढ़ेगी खेती की आय, मृदा स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि इस विषय पर चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे भेंट वार्ता टिकाऊ खेती के फायदे इस विषय पर आज के विशेषज्ञ सुनील कुमार चौधरी और आपसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह। श्रोता सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन संध्या 6:45 पर, और बे साहित्यिक कार्यक्रम सुना जा सकेगा संध्या 7:05 पर। इसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर प्रमोद बल्लभ गोस्वामी से ब्रजवार्ता, ब्रज के मंदिरन में संगीत परंपरा। श्याम सुहानी, जी हां, संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्याम सुहानी। वो व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित ये कार्यक्रम सुना जा सकेगा। रात्रि 8 आप एक बार फिर से लेंगे आनंद कार्यक्रम में फिल्म संगीत का, और रात्रि 8:30 पर फिल्म संगीत का आनंद एक बार फिर से लेंगे आप रात्रि 9:15 पर सुहाने तराने कार्यक्रम में।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और प्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रासलीला हाउ लीला, आज का प्रसंग लेखकों के गोकुल चंद गोस्वामी, समय रात्रि 10 बजे। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, आज के कलाकार होंगी विदुषी भारती सिंह, आप सुनेंगे इनसे ख्याल गायन जो राग जोग में निबद्ध रहेगा। तबले पर संगत करेंगे आपके साथ रामकृष्ण बोस, हारमोनियम पर संगत करेंगे जमीर अहमद।

अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए संवेद स्वर में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में देशगान।
1: इस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट

0: शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। मैंने सुनेंगी अपना कार्यक्रम प्रियंका वनिता लोक, और कार्यक्रम लेके आ रही हैं आपके बीच प्रियंका खंडेलवाल।

स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार की पहचान है। वनिता लोक सुनने वाली सभी प्यारी बहनों को प्रियंका खंडेलवाल का नमस्कार। बहनों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, यह कहावत केवल एक वाक्य नहीं बल्कि प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार और हम सभी के जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश है। क्योंकि कहा जाता है कि यदि घर की महिलाएं और बच्चे स्वस्थ हों तो पूरा परिवार स्वस्थ, सुखी और सशक्त बनता है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातों के माध्यम से जानेंगे कि महिलाएं और बच्चे स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम महिलाओं की, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस पर। बहनों, हम महिलाएं पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं लेकिन अपनी सेहत को सबसे बाद में रखती हैं, जिसके कारण हमें स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। समय पर पौष्टिक भोजन करें, मौसमी फल, दालें, दूध, दही, अंकुरित अनाज और हरे पत्तेदार सब्जियों को भोजन की थाली में शामिल करें। आयरन और कैल्शियम युक्त भोजन करें। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट टहलें, योग करें या फिर हल्का व्यायाम भी कर सकती हैं बहनों। तनाव कम रखें और पर्याप्त आराम करें। गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। यह बातें थीं जो हम महिलाओं से संबंधित थीं। अब बात करते हैं बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित। बहनों, बच्चों का बचपन स्वस्थ तभी होगा जब हम बच्चों को घर का ताज़ा और पौष्टिक भोजन दें। उनके भोजन में दाल, दूध, फल और हरी सब्जियों को शामिल करें। स्वच्छता की आदत डालें। बच्चों को बताएं कि खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोएं और साफ पानी पिएं। आजकल मोबाइल और टीवी का उपयोग बढ़ गया है। मोबाइल और टीवी का समय सीमित करें। बच्चों से प्रतिदिन बात करें, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। बच्चों को प्रतिदिन व्यायाम करने, खेलने, दौड़ने और अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करें। किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं। बच्चों को किताबें पढ़ने और रचनात्मक कार्यों से जोड़ने का प्रयास करें। याद रखिए, एक अच्छी सेहत किसी एक दिन से नहीं बल्कि प्रतिदिन छोटी छोटी आदतों को दिनचर्या का हिस्सा बनाने से बनती हैं। बहनों, यह थी हमारी आज की प्रथम चर्चा, पहली चर्चा। और इसी के साथ अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जो

आज लगभग हर घर की चिंता बन गई है और वह समस्या है बच्चों में बढ़ता मोटापा। बहनों, पहले मोटापा बड़ों में देखा जाता था, लेकिन अब यह समस्या छोटे छोटे बच्चों में भी तेजी से बढ़ रही है। इसका कारण है जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, मोबाइल, टीवी का ज्यादा इस्तेमाल और खेलकूद में कमी, यानी खेलकूद को समय ना देना। यदि हम चाहते हैं कि बच्चे मोटापे का शिकार ना हो, तो बच्चों को मोटापे से बचाने के लिए बच्चों को घर का ताजा और पौष्टिक भोजन दें। रोज बच्चों के खाने में दाल, दूध, दही, फल और हरी सब्जियों को शामिल करें। चिप्स, पिज्जा, बर्गर, पैकेट वाले स्नैक्स कम दें। कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पानी, छाछ, ताजे फलों का रस देना सेहत के लिए फायदेमंद है। इस बात पर विशेष ध्यान दें कि बच्चों का सुबह का नाश्ता कभी भी ना छूटे। अच्छा नाश्ता बच्चों को पूरी जो पूरा दिन होता है उसमें ऊर्जा प्रदान करता है और वे बार बार बाहर की चीजों से दूर रहते हैं। मोबाइल और टीवी देखने का समय सीमित रखें। जितना समय स्क्रीन पर बिताएंगे उतना उनका जो शरीर है वो सक्रिय नहीं हो पाएगा। बच्चों को प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेलने के लिए दें, जिससे उसका शरीर स्वस्थ और मन खुश रहेगा। उसके ऊपर पढ़ाई का बोझ ना डालें। बच्चों के विकास में माता पिता की भूमिका सबसे अहम होती है। बच्चे वही सीखते हैं जो अपने घर में देखते हैं। यदि घर के बड़े अच्छा भोजन करेंगे तो नियमित जो व्यायाम है वो करेंगे तो बच्चे भी वही आदत अपनाएंगे। अच्छी आदतें परिवार से ही शुरू होती हैं। बहनों, अपनी आज की इस चर्चा को मैं इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी। स्वस्थ शरीर खुशहाल मन, यही जीवन का सार। स्वस्थ शरीर खुशहाल मन, यही जीवन का सार। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ परिवार, यही खुशहाल खुशियों का आधार। मोटापे से रहे सभी दूर, मोटापे से रहे सभी दूर। रखें सेहत का ध्यान, संतुलित भोजन खेल कूद से बने स्वस्थ हिंदुस्तान। इसी के साथ बहनों, अब करते हैं मनोरंजन की दुनिया की ओर रुख और सुनते हैं यह गीत।

0: बहनों, आजकल सूरज देवता का मिजाज बिल्कुल अच्छा नहीं है। तेज धूप, लू और दिन प्रतिदिन बढ़ता तापमान हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। ऐसे मौसम में सही खान पान और पर्याप्त पानी का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। बहनों, गर्मियों के यह दिन हमारे स्वास्थ्य और मन के लिए खुशनुमा रहें, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको सुनवा रहे हैं आरोग्य क्रम के अंतर्गत भेंटवार्ता, गर्मियों में कैसा हो आपका आहार। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सृष्टि भारद्वाज और आपसे भेंट कर रही हैं रेशमा गर्ग। तो सुनते हैं यह भेंटवार्ता।
1: गर्मी का मौसम आते ही कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे डिहाइड्रेशन, भूख न लगना, अत्यधिक पसीना आना आदि शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे पारा चढ़ता जाता है, यह समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। इस कारण गर्मियों के मौसम में अपने आप को सन स्ट्रोक यानी यूं कहें लू, इनसे बचाना व शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना एक चुनौती होता है। शरीर में नमी के स्तर को बनाए रखने का सबसे अच्छा व सरल तरीका है कि हम अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिएं। लेकिन अगर बात पोषण की हो तो इसके लिए कुछ खास तरह के आहार को ग्रहण करना काफी फायदेमंद होता है। यानी गर्मियों के मौसम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, अर्थात हमारा गर्मियों में आहार कैसा होना चाहिए, तो इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सृष्टि भारद्वाज को। डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्ते।
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हमारी बहनों को बताइए कि गर्मियों में कैसा हो खान पान।
2: गर्मियों में संतुलित आहार का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए, जिसमें इंसान को अपने आप को स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त महसूस करे। इसमें ऐसा नहीं है कि उनको है ना सिर्फ खान पान के साथ साथ अपनी शरीर का भी पूरा अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। उनका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक सारे विकास एक प्रॉपर ढंग से होने चाहिए। अत्यधिक सबसे ज़्यादा उनका खाने पर ध्यान होना चाहिए। उनको सब्जियाँ, फल अत्यधिक खाने चाहिए और अपनी डाइट में पेय पदार्थ बहुत ज़्यादा लेने चाहिए, जिससे कि उनको कोई भी थकान महसूस ना हो, अपने कार्य को वो आराम से कर सके।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की पेय पदार्थ की, तो यानी गर्मियों में हमें ऐसे कौन कौन से पेय पदार्थ लेने चाहिए?
2: जनरली सबसे ज़्यादा ये रहता है कि हम क्या पिएं। पानी तो हम पीते ही हैं, वो तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन है ना उसके साथ ये रहता है कि और ऐसी क्या चीज़ लें जो हमारे लिए अच्छी रहे। तो वो नींबू पानी ले सकते हैं, ठीक है, और तरबूज का जूस पी सकते हैं। चाय कॉफ़ी को अवॉइड कर वो अपने नॉर्मल जो रूटीन में खान पीन ले रहे हैं उसी को यूटिलाइज कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने अभी एक बात और की थी चाय कॉफ़ी, और हम बहनों में यानी हम कहें यूँ महिलाओं में आदत होती है कम से कम दो बार चाय पीने की, और अगर गर्मियों में वो चाय ना पिए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और चाय अगर पीती हैं तो उसके क्या गर्मियों में दुष्परिणाम हो सकते हैं?
2: चाय पीना महिलाओं के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि जनरली आप देखोगे गर्मियों के टाइम में एसिडिटी की प्रॉब्लम होना एक स्वाभाविक है। तो इससे अच्छा है वो छाछ पिए। छाछ में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, उनको प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, जिससे कि वो अपने आप को हर न्यूट्रिएंट्स की भरपूर मात्रा में ले पाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि मतलब कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं गया उनकी बॉडी में और उनको अच्छे से कार्य नहीं कर पा रही हैं, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा है ना। और अपने खीरे का सबसे ज़्यादा
1: सेवन

0: करना
1: सेवन कर
0: चाहिए।
1: सकती हैं, क्योंकि खीरा क्या होता है, जनरली हमारी बॉडी को
0: एनर्जी
1: तप्त
0: देता
1: लगता
0: है।
1: है, एनर्जी देता है। और दूसरी चीज़ें ये है कि उसमें कब्ज वाली प्रॉब्लम नहीं होती है जो लेडीज़ में, जेंट्स में, बच्चों में जनरली देखने को मिलती है। तो कब्ज ना हो इसलिए वो खीरे का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें।
0: जी डॉक्टर साहब, और एक बात और बताइए कि इस मौसम में भूख तो लगती है बराबर, पर हम सोचते हैं कि गर्मी है गर्मी है, अगर हम खाएंगे तो हमें एसिडिटी, अभी आपने बात कही थी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, या हमें खाना जल्दी से नहीं पचता है, तो ऐसे में तला भुना जो है वो खाना चाहिए या नहीं?
1: तला भुना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जितना हो कोशिश उतना ही लाइट फूड बनाएं। घर पे
0: जी
1: भी जैसे खिचड़ी बना लिया आपने, दलिया ले लिया,
0: जी
1: रोटी ली, तो उसके साथ सब्जी भी बिना मसाले का हो।
0: जी
1: ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा आप मिर्ची वाली चीज़ें खा रहे हो, वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती है। क्योंकि
0: जी
1: कुछ महिलाएं होती हैं जो वर्किंग होती हैं, जो सुबह सुबह सैर करने भी जाती हैं, वर्कआउट भी करती हैं, लेकिन कुछ के साथ ऐसा नहीं हो पाता। तो इसलिए इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए उन्हें तली भुनी चीज़ें ना खाकर वो एक अच्छे सब्जियों का और फल का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें।
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तला भुना हमें गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, पर हमारी माता बहनें ये मान जाएंगी बात, पर बात आती है बच्चों की, क्योंकि गर्मियों में तो बच्चे तो मानते नहीं हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है कि हमारे लिए क्या नुकसानदायक है और क्या फ़ायदेमंद है, तो उनको किस तरह का ऐसी हमारी बहनें भोजन दें या ऐसी उनको ऐसी चीज़ें बना के दें जो बच्चों को अच्छी भी लगें और उनके लिए स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो?
1: उनको आपको कुछ स्पेशल नहीं, जो उन लोगों को पसंद है उसी को आप मॉडिफाई करके दे सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर तोरी की सब्जी नहीं खा रहा है तो आप मत खाने दो, लेकिन कुछ और सब्जियां हैं, जनरली बच्चों को आलू पसंद होता है तो
0: जी
1: उसकी सब्जी दे सकते हो आप। उनको नारियल पानी दे सकते हो,
0: जी
1: और ज़्यादातर आजकल लू की बहुत ज़्यादा समस्या देखने
0: जी
1: को मिल
0: डॉक्टर
1: रही
0: साहब,
1: है,
0: बिल्कुल
1: तो आप उनको प्याज दो खाने में, सलाद में। सलाद जैसे खीरे का है, प्याज का है,
0: जी
1: सलाद जितना ज़्यादा खाएंगे उनकी बॉडी में फाइबर बढ़ेगा, फाइबर
0: जी
1: बढ़ेगा तो कब्ज की भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो खाने को ऐसे मॉडिफाई करें कि बच्चा आराम से खा भी ले और उसे कोई बीमारी भी ना हो।
0: जी और डॉक्टर साहब, गर्मियों के मौसम में अगर घर में खाना कभी कभार नहीं बन पाता है, या हमारी कामकाजी महिला है वो नहीं टाइम से जैसे कभी बना पा रही है, और उनको भी भूख लग रही है और परिवार में बच्चों को सभी को भूख लग रही है, तो क्या ऐसे में बाहर का खाना खा सकते हैं?
1: नहीं, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर का खाना आप लोगों को नहीं पता होता है कि कब बना हुआ है। जनरली आजकल ये होता है कि सुबह का खाना बना देते हैं और वो शाम तक चलाते
0: जी
1: हैं। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगी सब लोगों को कि
0: जी
1: बाहर का खाना अवॉइड करके घर का खाना खाएं। और उसको ऐसा नहीं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप उस टाइम भूख लग रही है तो आप फ्रूट्स खा सकते हो,
0: जी
1: एप्पल, पपाया, पपीता,
0: हाँ,
1: ये जनरली लोग
0: बाजार
1: नॉर्मली
0: में आराम से मिल
1: मिल
0: जाते
1: सकते
0: हैं
1: हैं। सत्तू, सत्तू
0: सत्तू।
1: बहुत अच्छा रहता है जिससे कि लू ना लगे।
0: जी
1: ठीक है, तो सत्तू 1 गिलास पी लेंगे तो उससे उनको राहत भी मिलेगी और लू जैसी बीमारी भी
0: जी
1: नहीं
0: और ये
1: लगेगी।
0: तो बच्चों को पसंद भी आएगा,
1: हाँ
0: सत्तू है,
1: वो,
0: चने हुए
1: हाँ वो आप
0: हमारे।
1: कैसे भी बना सकते हो, मीठा भी दे
0: जी
1: सकते हो उन्हें। और
0: जी
1: नॉर्मल आजकल तो बहुत वैरायटी से बना रहे हैं लोग भाग,
0: जी
1: तो आप नॉर्मल उनको चीनी वाला भी दे सकते हो, और मिर्च मसाले ना देकर नॉर्मल नमक डाल के भी दे सकते हो, तो वो बच्चे आराम से कंज्यूम कर लेते हैं।
0: जी और डॉक्टर साहब, गर्मियों में ज़्यादातर क्या होता है कि अगर हमने बाहर का खा भी लिया या घर पर ही हमने बासी खाना ले लिया, या हमारे यहाँ फ्रिज में खाना बासी पड़ा हुआ है, और बहनें क्या करती हैं कि उनको भूख लग रही है और जल्दी में उनको टाइम नहीं है तो वो निकाल के खा लेती है, तो इस समय उनको फूड पॉइजनिंग हो गई या बच्चों ने खा लिया, बच्चों को हो गई, तो अब उनको क्या करना चाहिए?
1: पहली बात तो उन्हें है ना, जो खाना जिस समय बना है उसी समय समाप्त कर देना चाहिए। खाली ऐसा नहीं है कि उसे दूसरे दिन के लिए रखें या शाम
0: जी
1: के लिए रखें, ऐसा नहीं करना है। उन्हें फ्रेश फूड दें, फ्रेश वाटर दें, और जो भी फल फ्रूट खा रहे हैं वो भी फ्रेश दें। और
0: जी
1: ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्रूट भी आपने सुबह काट दिया या रात को काट दिया और सुबह उन्हें खाने के लिए दे रहे हैं। तो
0: जी
1: अगर आप उन्हें फ्रेश चीज़ें देंगे, फ्रेश वाटर देंगे, तो उन्हें कोई भी समस्या नहीं
0: नहीं होगी,
1: होगी।
0: यानी वो खुद भी बची रहेंगी और बच्चे भी, यानी परिवार भी सुरक्षित।
1: हाँ,
0: और अगर डॉक्टर साहब अगर फूड पॉइजनिंग हो भी जाती है या किसी भी सदस्य को घर में लू लग जाती है तो उसके लिए हमारी बहनों को बचाव में क्या करना चाहिए?
1: उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ठीक है, ऐसी चीज़ें दें जिसमें है ना पानी का सेवन हो, जैसे खीरा है, खीरा में 96% पानी होता है, ठीक है, तो वो आराम से कंज्यूम कर सकती हैं। दूसरा वो सत्तू मैंने आपको बताया ही था, सत्तू भी आराम से वो ले सकती हैं। लेमन वाटर, नींबू पानी का

0: भी सेवन वो इजीली कर
1: और
0: सकती
1: डॉक्टर साहब,
0: हैं।
1: मेडिसिन में जो घर में हम रख सकते हैं, मेडिसिन जो घर में रख सकते हैं नॉर्मल ऐसे टाइम पर,
0: मेडिसिन लेने की इतनी आवश्यकता
1: आवश्यकता
0: नहीं
1: नहीं
0: है,
1: है।
0: क्योंकि मेडिसिन बहुत हाई लेवल पे जब चीज़ें हो जाती हैं तब हम देते हैं। इससे अच्छा है वो फूड से ही अपने आप को नॉर्मल करें,
1: जी
0: ठीक है। तो मैं एडवाइस सबको यही करूँगी, मेडिसिन एक बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है तभी सजेस्ट करते हैं डॉक्टर, अदरवाइज आप जितना हो खाने पीने से ही अपने आप को नॉर्मल रखें।
1: जी डॉक्टर साहब, एक बात और है, क्योंकि इस मौसम में बार बार प्यास बहुत लगती है, चाहे हम घर में हो चाहे घर के बाहर हो, और जब हम तपती गर्मी में से घर के अंदर आते हैं तो आते ही हमारी जी एक हैबिट होती है फ्रिज को खोलना और पानी पीना, और जब हम उस समय पानी पी लेते हैं हमें पता नहीं चलता, लेकिन उसके बाद हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है या गले में खराश हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हमारे हो सकती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि हमें ये फ्रिज का पानी पीना चाहिए या हमारे बच्चों को, हमको नॉर्मल पानी या किस तरह का पानी का सेवन करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए?
0: पहली बात तो जब हम बाहर से आते हैं तो अपने आप को 5 मिनट के लिए रिलैक्स छोड़ना चाहिए, ठीक है।
1: जी
0: ऐसा नहीं होना चाहिए आ रहे हैं फ्रिज में से पानी निकाल रहे हैं, ये गलत चीज़ है। ऑब्वियसली आप धूप से आ रहे हो और एकदम से ठंडा पानी पियोगे तो गले में खराश होने संभव है। तो
1: जी
0: आप आए उसके बाद नॉर्मल 5 मिनट रिलैक्स फील करें, फिर आप उसके बाद नॉर्मल वाटर पिए, ठंडा पानी ना लें। और जैसे होता है किसी के यहाँ फ्रिज भी नहीं है या उनको ठंडा पानी पीना है तो मैं कहूँगी मटके का पानी वो ले सकते हैं, बस वही प्रोसेस रहेगी कि 5 मिनट रिलैक्स फील करने के बाद वो पानी
1: पी
0: पिए।
1: सकते हैं। और डॉक्टर साहब, हमारी एक स्वस्थ जो दिनचर्या होती है उसमें व्यायाम भी शामिल होता है, हमारी कुछ बहनें व्यायाम भी करती हैं और कुछ ज़्यादा बिजी होने के कारण नहीं कर पाती हैं, और गर्मियों के मौसम में बात आती है व्यायाम की, तो गर्मियों के मौसम में व्यायाम करना चाहिए या नहीं?
0: व्यायाम करना चाहिए, जो व्यायाम करता है वो जितना देर कर सकता है, चाहे 10 मिनट करे चाहे 15 मिनट करे, लेकिन डेली करना चाहिए। अदरवाइज जो नहीं करते हैं व्यायाम वो वॉक ज़रूर करने जाएं, सुबह
1: जी
0: उठें उसके बाद 15-20 मिनट वॉक करें, शाम को खाने के बाद वॉक करें। और आपको तो पता ही है आजकल क्या समस्या आ रही है, पेट
1: जी
0: निकलना है, वेट बढ़
1: गैस,
0: जाना है,
1: हाँ
0: गैस
1: जी
0: की प्रॉब्लम आ रही है। तो हर जब भी वो कुछ हैवी कुछ खाएं, जैसे लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, या अर्ली मॉर्निंग, कम
1: जी
0: से कम 10-15 मिनट्स वॉक करें, ये सारी समस्याएं अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी।
1: यानी सुबह तो हमें खाली पेट करना ही चाहिए और रात को खाना खाने
0: खाने
1: के
0: के
1: बाद
0: बाद
1: भी
0: भी
1: वॉक
0: पंद्रह
1: करनी
0: से
1: चाहिए।
0: बीस
1: जी
0: मिनट वॉक करनी
1: अच्छा
0: चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, इसके अलावा आप और क्या हमारी बहनों को बताना चाहेंगी जो कहीं हमसे छूट गया हो, तो आप हमारी बहनों को और बताइए।
0: मैं सभी बहनों से यही कहूंगी कि वो निरंतर अपने खान पान पे ध्यान दें। अगर कुछ बहनें ये होता है कि जनरली सोचती रहती हैं मुझे क्या खाना पीना है, उसमें वो गुलकंद का भी सेवन कर सकती हैं।
1: जी
0: गुलकंद हमारे शरीर के लिए बहुत ठंडक प्रदान करता है, ठीक है। तो वो गुलकंद भी दे सकती हैं, उसमें अच्छी मात्रा में विटामिन्स ई सी भी पाए जाते
1: जी
0: हैं, तो वो इजली ये गुलकंद भी खा सकती हैं। जैसे होता है कि खाने के बाद कुछ मीठा
1: मीठा
0: खाने का
1: खाने
0: मन
1: का मन
0: करने
1: कर रहा
0: करता
1: है।
0: है
1: जी
0: तो वो डेजर्ट के रूप में या
1: और वो
0: नॉर्मल मीठे
1: टेस्टी
0: के
1: भी
0: हाथ
1: होता
0: के
1: है।
0: अच्छा लगता है तो वो
1: जी
0: ले सकती हैं। बाकी खीरे का मैंने बताया ही, छाछ वो ले सकती हैं, तरबूज का जूस ले सकती हैं, सत्तू जितना ज़्यादा वो दिन में 1 या 2 बार लें,
1: ले सकती हैं।
0: ठीक है।
1: जी
0: और लेमन वाटर जो नींबू पानी, वो बहुत कॉमन चीज़ है, वो हर कोई पी सकता है, हर कोई ले सकता
1: और
0: है।
1: डॉक्टर साहब, इस समय आम का पना,
0: हाँ, आम का
1: आम वो भी चल
0: पना
1: रहा है,
0: वो
1: वो
0: भी
1: भी
0: आराम से ले
1: ले
0: सकते
1: सकते
0: हैं।
1: हैं।
0: और आइसक्रीम, क्योंकि जनरली देखा है मैंने आइसक्रीम का बहुत क्रेज़ है कि
1: जी
0: शाम को खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाएंगे, तो हाँ आइसक्रीम लेनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ले,
1: जी
0: ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर से तुरंत आप आ रहे हो और आइसक्रीम खा रहे हो, ठीक है। खाने के बाद 15-20 मिनट बाद आइसक्रीम खा के और वॉक ज़रूर करें,
1: जी
0: ठीक है, जिससे कि आपने जो भी पूरे दिन में खाया है या आपने डिनर किया है वो इजिली डाइजेस्ट हो जाए,
1: जी
0: तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा।
1: जी अभी हमने बातचीत की डॉक्टर सृष्टि भारद्वाज से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमने और हमारी प्यारी बहनों ने सुनी आरोग्य क्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता, गर्मियों में कैसा हो आपका आहार, जानकारी दी सृष्टि भारद्वाज ने, भेंट की रेशमा गर्ग ने। बहनों, अब रुख करते हैं कुछ आसान और उपयोगी घरेलू नुस्खों की ओर, जो गर्मियों में आपके घर और रसोई को साफ सुथरा, साथ ही कीटों से सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। बहनों, यदि घर में मक्खियां ज्यादा हो गई हैं तो पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक और कुछ बूंदे नींबू के रस की मिला दें। इससे घर में ताजगी तो बनी ही रहेगी, साथ ही

अतिथियों का आना भी कम हो जाएगा। बहनों, गर्मियों में कचरे के डिब्बे से बदबू आने लगती है, इससे बचने के लिए डस्टबिन के नीचे थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क दें, यह बदबू को कम करने में मदद करता है। यदि रसोई में कॉकरोच की समस्या है तो किचन के कोनों और सिंक के नीचे नीम की पत्ती से बना जो पानी होता है उसका उपयोग करें, कॉकरोच नहीं आएंगे। बहनों, ये छोटे छोटे घरेलू उपाय गर्मियों में घर को स्वच्छ और सुखद बनाने में हमारी मदद करते हैं, आप इन्हें आजमाएंगे ऐसी आशा है। इसी उम्मीद के साथ अब रुख करते हैं मनोरंजन की दुनिया की ओर और सुनते हैं यह गीत।

बहनों, इस गीत की समाप्ति के साथ अब वक्त हो गया है कार्यक्रम को भी समाप्त करने का। आपको आज का वनिता लोक कार्यक्रम कैसा लगा हमें 0565-2530-135 या फिर 94-12-22-55-75 पर कॉल करके अवश्य बताएं। तो मुझे यानी अब प्रियंका खंडलवाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अभी सुन रही थी बहने अपना कार्यक्रम वनिता लोक, और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम में फिल्म संगीत। लेते हैं कार्यक्रम का ये गीत फिल्म रेस से। आवाज दे रही है इस गीत को मोनाली।
1: All right, see, it hurts.

अभी आप सुन रहे थे मोनाली को फिल्म रेस में। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में मोहम्मद रफी को फिल्म द ट्रेन में। संगीत तैयार किया इस गीत के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

सुनते हैं फिल्म रफू चक्कर से ये गीत। जी हाँ, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, रफू चक्कर फिल्म से ये गीत। और इस गीत को आवाज़ दे रहे हैं शैलेंद्र सिंह और कंचन। गुलशन बावरा का गीत, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

कल्याण जी आनंद जी का था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 2 बजने को है तो आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, पहले अंग्रेजी में उसके बाद हिंदी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Three-decade pending Yamuna water-sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current class 10th batch from three-language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newson.ir

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
3: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओ एक एक घर

0: जाकर सभी इलेक्टर्स को इनूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं वो सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं, तो सभी BLOs को उनके इनूमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और

0: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
1: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
2: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव यौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्वकप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
3: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
2: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अबासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।

0: हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा।
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी। आय इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ। अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती हैं, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े बखत के लिए, कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फलकंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ। हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ,
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे। ठीक,
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
1: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं

0: ऐसे ऐसे जानवर होते हैं
1: अम्मा
0: की।
1: जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ। अच्छा।

0: बाबा।
1: अरे चुप्पा चुप्पा, क्या हुआ बेटा?
0: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
1: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: मुझे डर लग रहा है अम्मा।
0: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा, मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
1: चुप्पा चुप्पा,
0: सोचा बेटे सोचा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ, है? सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश। सोचा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये?
1: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
0: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, पुतवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ के हाथों से काटोगे।
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: अरे मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: अरे बात

0: तो तुम्हारी सच है?
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे। अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा। हैं?
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो, चलो। आगे चलकर देखते हैं।
3: ये देखो ये पेड़,
0: देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे,
0: चलो इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
0: आई, क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ?
1: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा दो।
1: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे, है ना?
2: हाँ बेटा, ये देखो ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है। हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों?
1: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
1: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
2: हाँ बिल्कुल,
0: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बुधवा रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
0: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को। तो
2: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
1: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
0: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
2: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
0: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
2: और क्या।
0: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
2: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
1: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
0: अरे चुप।
2: क्या हुआ?
0: अरे चुप्पा, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है
2: तू समझ गई ना?
1: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
2: बता?
0: रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
2: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
2: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।

0: चल। बता।
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे, हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं, क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
2: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
1: बोल ना।
3: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का, चल।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम

0: अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी, फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
1: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
0: किसी ने कहा,
2: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
0: किसी ने कहा,
3: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
0: किसी ने कहा,
4: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
0: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
0: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
1: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
5: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा आयोजित कार्यक्रम उमंग। इसी के साथ हमारी ये सभा भी संपन्न होती है। संध्या 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102 दशमलव 2 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5 बजने को हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में श्रोता सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण। सीधा प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र लालस और दीपिका दास। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
1: नमस्कार। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लिपिका दास के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए सशस्त्र सेनाओं के बहादुरों को रक्षा अलंकरण प्रदान करेंगी।
2: Today we gather to honor the courage, sacrifice and dedication of our brave

0: Defence personnel. We would like to inform our listeners that this is the second phase of this year's Defence Investiture Ceremony, in which Honourable President Srimati Draupadi Murmu would be conferring the Ati Vishisht Seva Medal, Uttam Youth Seva Medal, Param Vishisht Seva Medal and Sarvottam Youth Seva Medal.
1: इस वक्त यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं. उनके साथ हैं श्री एचडी कुमार स्वामी, साथ में हैं श्री किरण रिजिजू जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, साथ ही मौजूद हैं इस वक्त सीडीएस जनरल एनएस राजासुब्रमणी, सीओएस जनरल धीरज सेठ, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन. कुछ ही पलों में महामहिम राष्ट्रपति यहां पर पधारेंगे और उसके बाद औपचारिक रूप से ये समारोह प्रारंभ होगा. हम बता दें हमारे श्रोताओं को कि 105 बहादुरों को, सैनिकों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा. राष्ट्र की रक्षा के लिए विशिष्ट योगदान देने के लिए 56 सैन्य अधिकारियों को अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध के दौरान विशिष्ट सेवाएं देने के लिए 12 सैनिकों को उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवाएं देने वाले 30 सैनिकों को परम विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध में विशेष बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले 7 सैनिकों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे.
0: Dear listeners, as we witness these distinguished awards being conferred at this Ganatantra Mandapam at the Rashtrapati Bhavan, we celebrate their unwavering service to our nation. All awardees and the proud families are seated, waiting for the arrival of the Honorable President.
1: हम ये बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति का इस वक्त इंतजार. उपराष्ट्रपति जी इस वक्त पधार चुके हैं और वे विराजमान हैं और उन्हीं के साथ ठीक उनके पास बैठे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. महामहिम राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक दोनों तरफ 3-3 सैनिक मौजूद हैं जो अपनी पूरी वेशभूषा में इस सभागार की शोभा बढ़ाते हुए दोनों तरफ आज वे 105 लोग बैठे हैं जिन्हें ये सम्मान दिए जाएंगे और आगे की रोज में वे लोग, इनके परिवार के लोग जो इस मौके के साक्षी बनेंगे. ये ऐतिहासिक क्षण और रक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं देने वाले हमारे सैन्य अधिकारियों और बहादुरों का आज यहां पर सम्मान होगा राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में.
0: टोटल ऑफ 105 अवार्ड्स विल बी कॉन्फर्ड टू द अवार्डीज टुडे, अ वेरी प्रेस्टिजियस इवेंट दैट ऑनर्स आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी पर्सनल for exceptional acts of bravery, conspicuous courage and devotion towards their duties.
1: सभी को प्रतीक्षा है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की और वे पधारेंगी और उनके बाद रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार उनसे स्वीकृति लेंगे कि आज का समारोह प्रारंभ किया जाए और उसके बाद और उससे पहले राष्ट्रपति के आगमन के बाद सुविधा प्रेम बहादुर गुरंग बैंड मास्टर हैं महा रेजिमेंट सेंटर सागर के, उनके नेतृत्व में वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी और ये बिगुल की आवाज आप सुन रहे हैं. राष्ट्रपति जी इस वक्त प्रवेश करती हुई गणतंत्र मंडप में पारंपरिक हैंडलूम की जो साड़ियां पहनती हैं वो उन्होंने पहनी हुई, नीले रंग का बॉर्डर और थोड़ा सा सुनहरी गुलाबी रंग उनकी साड़ी में, उनके आगे और पीछे उनके एडीसी चलते हुए धीरे धीरे सधे हुए कदमों से राष्ट्रपति जी अपने आसन तक जाती हुई, इनके ठीक पीछे बुद्ध की प्रतिमा.

0: वंदे मातरम और राष्ट्रगान। अब रक्षा सचिव राजेश जी अनुमति प्राप्त करते हुए आज के समारोह।
1: राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने अभिवादन कर स्वीकृति दी और अब ये रक्षा अलंकरण समारोह प्रारंभ होने जा रहा है।
2: The first set of awards that
3: अति विशिष्ट सेवा मेडल और साधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए एयर मार्शल तरुण चौधरी विशिष्ट सेवा मेडल, उड़ान पायलट

0: Lieutenant General Neeraj Vashney, Vishisht Seva Medal.
1: Lieutenant General Neeraj Vashney, VSM, the Corps of Electronics and Mechanical Engineers, जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने सल्यूट करते हुए सदैव कदमों से

0: और प्राप्त करेंगे वे अति विशिष्ट सेवा मेडल। और ये तालियां इस बात का परिचायक कि सैनिक ने राष्ट्र की सेवा की है।
1: लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला सेना मेडल बा।
2: लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला सेना मेडल द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स टू रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला अपने सैनिक परिधान में कोर ऑफ इंजीनियर्स के आप अधिकारी हैं और अपना सम्मान प्राप्त करके
1: लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वांद्रा सेना मेडल।
0: कोर ऑफ सिग्नल्स के लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वांद्रा सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को और जाते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए। महामहिम राष्ट्रपति जी सम्मान देते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त।
1: लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल।
0: इन्फेंट्री के हैं आप लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह YSM SM सलामी देते हुए राष्ट्रपति जी को और अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए सदैव कदमों से राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए। गौरव का क्षण इन सैन्य अधिकारियों के लिए और परिवार के सदस्य खड़े होकर तालियां बजाते हुए अभिवादन करते हैं।
1: लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह।
2: लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी saluting the president and marching towards the dais.
0: Artillery ke adhikari hain aap Lieutenant General Ranjit Singh Regiment of Artillery ke ati vishisht seva medal aur ye salute
1: Lieutenant General Ajay Kumar vishisht seva medal.
2: Lieutenant General Ajay Kumar vishisht seva medal the infantry.
0: Infantry ke adhikari Lieutenant General अजय कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए।
2: डेकोरेटेड विद अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल शमशेर सिंह विर्क सेना मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल शमशेर सिंह विर्क इन्फेंट्री के अधिकारी हैं और भारतीय सशस्त्र सेना भारतीय सेना को आपने विशिष्ट सेवाएं दी है इसलिए इन्हें प्राप्त हो रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: Lieutenant General Shamshir Singh, we are here receiving Ati Vishesh Seva Medal from the Honorable President.
1: Lieutenant General Aditya Vikram Singh Rathi, Sena Medal, Vishesh Seva Medal.
0: The Brigade of the Guards ke Lieutenant General Aditya Vikram Singh Rathi, Sena Medal aur Vishesh Seva Medal prapt kar chuke hain jaate hue Rashtrapati ji ke samne aur अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए।
2: लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य विक्रम सिंह राठी सेवा मेडल रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं आज इन्हें मिलने जा रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल। द कोर ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी हैं आप राष्ट्रपति जी के सामने जाकर उन्हें सैल्यूट करते हुए और अपना मेडल प्राप्त करते हुए।
1: लेफ्टिनेंट जनरल चीयर रथ गोपालन मुरलीधरन।
2: Lieutenant General Chiarath Gopalan Muralidharan, the Army Medical Corps.
0: Army Medical Corps के अधिकारी हैं Lieutenant General Chiarath Gopalan Muralidharan. भारतीय सेना की ओलिव ग्रीन वर्दी धारण किए हुए राष्ट्रपति जी से अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए। परिवार के सदस्य उनकी पत्नी और उनकी पुत्री
1: Lieutenant General Puneet Ahuja सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
2: Lieutenant General Puneet Ahuja, recipient of

0: Sena Medal and Vishesh Sena Medal, the Brigade of the Guards, to receive his Ati Vishesh Seva Medal.
1: Brigade of Guards ke Lieutenant General Puneet Ahuja VSM प्राप्त कर चुके हैं और आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की. राष्ट्रपति जी ने उनके सीने पर ये मेडल उनकी शान बढ़ाने के लिए लगाया. पुत्री और पत्नी
2: वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई विशिष्ट सेवा मेडल.
0: वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई विशिष्ट सेवा मेडल विल रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल.
1: नौसेना के अधिकारी वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई वीएसएम प्राप्त कर चुके हैं. आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की. भारतीय नौसेना की सफेद वर्दी और इस वक्त प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल.
2: वाइस एडमिरल रजत कपूर.
1: वाइस एडमिरल रजत कपूर जाते हुए राष्ट्रपति जी के मंच की तरफ पहले सैल्यूट किया है. नेवी का जो अलग सैल्यूट होता है उसके बाद जाते हुए मंच की तरफ और अब प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल.
0: वाइस एडमिरल रजत कपूर रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल.
3: वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली.
1: और अब बारी भारतीय नौसेना के एक और अधिकारी वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली की. आप अधिकारी हैं भारतीय नौसेना के. भारतीय नौसेना को आपने विशिष्ट सेवाएं दी है इसीलिए इन्हें प्राप्त हो रहा है आज अति विशिष्ट सेवा मेडल.
0: वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली receiving Ati Vishesh Seva Medal from the Honorable President.
3: Vice Admiral Sushil Menon, Vishisht Seva Medal.
1: और अगली बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की वाइस एडमिरल सुशील मेनन की. विशिष्ट सेवा मेडल इनके सीने पर टंगा हुआ है जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने और पहुंचकर अपना पदक प्राप्त करते हुए.
3: वाइस एडमिरल अनिल जग्गी.
1: नौसेना के ही सम्मानों की बारी अब आगे आते हुए वाइस एडमिरल अनिल जग्गी पहले मंच के सामने जाकर राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हैं. उसके बाद में पदक प्राप्त करने के बाद भी सैल्यूट करते हैं फिर अपने स्थान तक जाते हैं.
0: वाइस एडमिरल अनिल जग्गी रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल.
3: सर्जन रियर एडमिरल वर्तमान में सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे विशिष्ट सेवा मेडल.
1: रबारी सर्जन रियर एडमिरल अब सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे की जिन्हें वीएसएम मिल चुका है और आज प्राप्त करेंगे अति विशिष्ट सेवा मेडल.
0: सर्जन रियर एडमिरल नाउ सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल.
3: एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल वायुसेना मेडल उड़ान पायलट.
1: और अब भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की बारी. एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल फ्लाइंग पायलट जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने प्राप्त करेंगे अति विशिष्ट सेवा मेडल.
0: मेहताब सिंह देसवाल फ्लाइंग पायलट रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल.
3: एयर मार्शल कोंडन कोलंगारा अबू अहमद संजीव विशिष्ट सेवा मेडल.
1: एयर मार्शल कोंडेन कोलांगरा अबू अहमद संजीव वीएसएम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के सदस्य हैं प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल.
3: एयर वाइस मार्शल वर्तमान में एयर मार्शल सेटीपल्ली श्रीनिवास राव विशिष्ट सेवा मेडल.
0: एयर वाइस मार्शल

0: Marshall, now Air Marshal, Sattipalli Srinivasa Rao, Vishisht Seva Medal, Aeronautical Engineering, receiving the Ati Vishisht Seva Medal from the President.
1: एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के एयर वाइस मार्शल, अब एयर मार्शल हैं आप सत्तिपल्ली श्रीनिवासा राव, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए भारतीय वायुसेना के अधिकारी राष्ट्रपति जी को.
2: अपर महानिदेशक डॉनी माइकल, प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल, तटरक्षक मेडल.
0: एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉनी माइकल, पीटीएम टीएम.
1: भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक डॉनी माइकल अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल, मुस्कुराकर फोटो खिंचाते हुए उनकी धर्मपत्नी तालियां बजाते हुए सैल्यूट करके वापस अपने स्थान तक जाते हुए.
2: सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त.
0: Surgeon Vice Admiral Kavita Sahai, Seva Medal, VSM, retired.
1: Nari Shakti ka pratik, Surgeon Vice Admiral Kavita Sahai, Vishishta Seva Medal prapt kar chuki hai, ab Seva Nivrat hai, lekin aaj samman karti hui, Mahamahim Rashtrapati ji, Ati Vishishta Seva Medal unhe pradan karti hui, aur ye itni saari taaliyan is baat ka pratik hai.
2: मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा, सेना मेडल बार, विशिष्ट सेवा मेडल.
0: मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा, सेना मेडल, वीएसएम, द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, टू रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल.
1: आर्टिलरी रेजिमेंट के अधिकारी मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा, विशिष्ट सेवा मेडल पहले से लगा हुआ है और आज प्राप्त हुआ है इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल.
2: मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पहल, विशिष्ट सेवा मेडल.
1: अब बारी है इन्फेंट्री के ही एक और अधिकारी मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पाटिल की, विशिष्ट सेवा मेडल इन्हें प्राप्त हो चुका था, आज इन्हें मिल रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल.
0: मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पाटिल, वीएसएम, द इन्फेंट्री, रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल.
2: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह चौधरी, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल.
0: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दैट विशिष्ट सेवा मेडल, मेजर जनरल सुजीत, बेग योर पार्डन, मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह चौधरी, एसएम वीएसएम, द आर्मी एयर डिफेंस.
1: आर्मी एयर डिफेंस के अधिकारी मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह चौधरी, विशिष्ट सेवा मेडल आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इन्हें प्रदान कर रही हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल. सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को
2: मेजर जनरल आशीष शाह, सेना मेडल.
0: मेजर जनरल आशीष शाह, सेना मेडल, द आर्मड कॉर्प्स, मार्चिंग टुवर्ड्स द ऑनरेबल प्रेसिडेंट टू रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल.
1: आर्मड कोर के अधिकारी मेजर जनरल आशीष शाह महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए और प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल.
2: मेजर जनरल अमर राम दसानी, युद्ध सेवा मेडल.
0: मेजर जनरल अमर राम दसानी, युद्ध सेवा मेडल, द इन्फेंट्री.
1: इन्फेंट्री के अधिकारी हैं मेजर जनरल अमर राम दसानी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के सामने मौजूद हैं और प्राप्त कर रहे हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल.
3: मेजर जनरल विकास चौधरी, युद्ध सेवा मेडल.
0: मेजर जनरल विकास चौधरी, युद्ध सेवा मेडल, द इन्फेंट्री, टू रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल.
1: सैल्यूट करते हुए और जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने मेजर जनरल विकास चौधरी युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, इन्फेंट्री के अधिकारी हैं. और एक जोशीली मुस्कान उनके चेहरे पर सलामी देते हुए
3: मेजर जनरल तरुण अग्रवाल,
1: रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के मेजर जनरल तरुण अग्रवाल, आर्टिलरी का अधिकारी, राष्ट्रपति जी को सैल्यूट किया और अब जाते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए.

0: मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
1: इन्फेंट्री के ही अधिकारियों की बारी चलती हुई, बहुत सेवा की इन्होंने राष्ट्र की, सशस्त्र सेनाओं की, और अब बारी है मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर की।
2: मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर YSM SM रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल अरिंदम साहा, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: मेजर जनरल अरिंदम साहा, युद्ध सेना मेडल, सेना मेडल, सल्यूटिंग द प्रेसिडेंट एंड रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
1: युद्ध सेवा मेडल और सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं इन्फेंट्री के मेजर जनरल अरिंदम साहा, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। टुडे इट्स टर्न टू रिसीव अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी SM VSM मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, अति विशिष्ट सेवा मेडल आज उन्हें मिलता हुआ।
0: मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल, सेना मेडल।
2: मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल, सेवा मेडल।
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल, अति विशिष्ट सेवा मेडल आज उन्हें प्राप्त होता हुआ राष्ट्रपति जी के हाथों, जो कि सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर हैं।
0: मेजर जनरल धनंजय जोशी, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल धनंजय जोशी, विशिष्ट सेवा मेडल द इन्फेंट्री।
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी मेजर जनरल धनंजय जोशी, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल।

0: मेजर जनरल मनदीप सिंह सेना मेडल.
1: मेजर जनरल मनदीप सिंह सेना मेडल इज एन एक्स्ट्रा रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल.
2: इन्फेंट्री के अधिकारियों की सीरीज चलती हुई मेजर जनरल मनदीप सिंह की बारी है प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल.
0: रियर एडमिरल निर्भय बापना विशिष्ट सेवा मेडल.
1: द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड रियर एडमिरल निर्भय बापना विशिष्ट सेवा मेडल.
2: अब आरी आ रही है नौसेना के अधिकारियों की रियर एडमिरल निर्भय बापना विशिष्ट सेवा मेडल. आज सम्मानित हो रहे हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल से राष्ट्रपति जी के हाथों से.
0: एयर वाइस मार्शल कौशिक चैटर्जी.
1: Air Vice Marshal Kaushik Chatterjee, Medical, to receive the Ati Vishisht Seva Medal.
2: भारतीय वायुसेना की चिकित्सा विंग के एक महत्वपूर्ण सदस्य एयर वाइस मार्शल कौशिक चैटर्जी. राष्ट्रपति जी इन्हें प्रदान कर रही हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल.
0: एयर वाइस मार्शल संजीव वशिष्ठ वायुसेना मेडल उड़ान पायलट.
1: The next recipient of Ati Vishisht Seva Medal is Air Vice Marshal Sanjeev Vashisht, VM Flying Pilot.
2: Abari, Bharatiya Vayu Sena ke is pilot ki Air Vice Marshal Sanjeev Vashisht Ati Vishisht Seva Medal aaj Ganatantra Mandap mein unhe prapt hota hua.

0: ఎయిర్ వైస్ మార్షల్ వడపల్లి రవి సత్యనారాయణ రాజు విశిష్ట్ సేవా మెడల్.
1: Air Vice Marshal Vadapalli Ravi Satyanarayan Raju Vishesh Seva Medal, Aeronautical Engineering, to receive that Vishesh Seva Medal.
2: Aur ab Vayu Sena ke ek aur adhikari Air Vice Marshal Sanjeev Kumar, Air Vice Marshal Vadapalli Ravi Satyanarayan Raju Vishesh Seva Medal, aap Aeronautical Engineering ke Mechanical Wing ke adhikari hain, prapt karte hue ati vishisht seva.
0: Air Vice Marshal Sanjeev Kumar Talian, Vayu Sena Medal, Udan Pilot.
1: Air Vice Marshal Sanjeev Kumar Talian, VM Flying Pilot,
2: ab Bharati,
1: receiving Dati Vishisht Seva Medal.
2: Bharati Vayu Sena ke Air Vice Marshal Sanjeev Kumar Talian, Ati Vishisht Seva Medal.
0: Air Vice Marshal Manmeet Singh.
1: Air Vice Marshal Manmeet Singh, Administration Fighter Controller.
2: भारतीय वायुसेना के फाइटर कंट्रोलर हैं एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह. आपको प्राप्त होता है अति विशिष्ट सेवा मेडल आपकी सेवाओं के लिए.
0: एयर वाइस मार्शल मनु मिड्ढा, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट.
1: एयर वाइस मार्शल मनु मिड्ढा, बीएम Flying Pilot, is the next recipient of Ati Vishisht Seva Medal.
2: और अब बारी अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की एयर वाइस मार्शल मनु मिड्ढा की. आप एक पायलट हैं.
0: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त.
2: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे, विशिष्ट सेवा मेडल, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में थे, अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज एक और उपलब्धि इनके कैरियर में जुड़ती हुई, इन्हें मिलता हुआ अति विशिष्ट सेवा मेडल.
1: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे, बीएसएम, रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल.
0: मेजर जनरल संदीप कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त.

0: Major General Sandeep Kumar wishes Seva Medal. The judge at Pokhara General Department, retired, is receiving Tati Vishesh Seva Medal.
1: Major General Sandeep Kumar Vishisht Seva Medal. The Judge Advocate General Department retire ho chuke hain Ati Vishisht Seva Medal praapt karte hue Rashtrapati ji ke kar kamlon se aur salute.
2: Major General Parag Anant Deshmukh Sevanivrat.
0: Major General Parag Anant Deshmukh, the Army Medical Corps retired, is the next recipient of the Ati Vishisht Seva Medal this evening.
1: Army Medical Corps ke Major General Parag Anant Deshmukh ab retire ho chuke hain praapt karte hue Ati Vishisht Seva Medal.
2: Air Vice Marshal Satish Kumar Mathur, Udan Pilot Sevanivrat.
0: Air Vice Marshal Satish Kumar Mathur, flying pilot, retired.
1: और अब राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए एयर वाइस मार्शल सतीश कुमार माथुर, आप वायुसेना में उड़ान पायलट थे, रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल राष्ट्रपति जी के कर कमलों से.
2: एयर वाइस मार्शल नंद कुमार नायर विशिष्ट Seva Medal, Sevanivrat.
0: Air Vice Marshal Nand Kumar Nair, VSM Aeronautical Engineering Electronics, retired, receiving the Ati Vishisht Seva Medal.
1: Bharati Vayu Sena ke Aeronautical Engineering Wing mein rahe aur khas taur par electronics ka kaam sambhalne wale Air Vice Marshal Nand Kumar Nair ab retire ho chuke hain, praapt karte hue Ati Vishisht Seva Medal aur salute karte hue
2: Brigadier Pavan Dhul, Vishisht Seva Medal.
0: Brigadier Pavan Dhul, VSM, the Army Medical Corps.
1: Army Medical Corps ke adhikari Brigadier Pavan Dhul Vishisht Seva Medal se alinkrit ho chuke hain aur aaj bari hai Ati Vishisht Seva Medal ki, praapt karte hue Rashtrapati ji se. अबारी सैल्यूट की
2: सुबेदार एच होकाटो सेमा 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स शॉटपट कांस्य पदक विजेता वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित.
0: सुबेदार एच होकाटो सेमा 9 असम रेसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड.
1: सुबेदार होकाटो सेमा कौन नहीं जानता इन्हें, भारतीय सेना के हैं लेकिन अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, शॉटपट के खिलाड़ी रहे हैं. नाइन असम के राष्ट्रपति जी के सामने अपना पदक प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल.
3: अब उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे. युद्ध संघर्ष युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल. लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल.
1: हमारे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है. आर्मर्ड कोर हेडक्वार्टर साउथ सदर्न कमांड का नेतृत्व करते हैं. उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति जी से
0: लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, पीवीएसएम एवीएसएम, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट.
3: एयर मार्शल मनीष खन्ना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट.
1: और अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने एयर मार्शल मनीष खन्ना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, फ्लाइंग पायलट है, आज प्राप्त करते हुए युद्ध के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल.
0: एयर मार्शल मनीष खन्ना एवीएसएम वीएम फ्लाइंग, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल.
3: लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल.
0: लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव एवीएसएम एसएम द पैराशूट रेजिमेंट, टू रिसीव द उत्तम युद्ध सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट.
1: अगला युद्ध उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव.

0: सबको मिलता हुआ अति विशिष्ट सेवा मेडल पैराशूट रेजिमेंट हेडक्वार्टर के आप अधिकारी हैं।
1: लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
0: गढ़वाल राइफल्स हेडक्वार्टर 9 कोर के अधिकारी अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल और आज प्राप्त होता हुआ उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत।
2: लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत एवीएसएम वीएसएम रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत सुरेंद्र पेंढारकर अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंढारकर एवीएसएम वाईएसएम फ्रॉम द असम रेजिमेंट रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: द असम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत पेंढारकर अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल इन्हें मिल चुका है और आज प्राप्त होता हुआ उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ एवीएसएम एंड वाईएसएम फ्रॉम गढ़वाल राइफल्स रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: गढ़वाल राइफल्स के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं। उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सशस्त्र बलों के लिए विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति जी के
1: लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ एवीएसएम युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: वाइस एडमिरल तरुण सोपती अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
2: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द उत्तम युद्ध सेवा मेडल इज वाइस एडमिरल तरुण सोपती एवीएसएम वीएसएम।
0: नौसेना के अधिकारी वाइस एडमिरल तरुण सोपती अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल अब मिलता हुआ उन्हें उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा अति विशिष्ट सेवा मेडल वायुसेना मेडल उड़ान पायलट।
2: एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल वायु मेडल फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: लड़ाकू विमान उड़ाते हैं आप एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी वायुसेना मेडल उड़ान पायलट।
2: एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी वायु मेडल फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल दिस इवनिंग।
0: और अब बारी है एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी की। आप फ्लाइंग पायलट हैं और युद्ध के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: एयर कमोडोर प्रभात मलिक वायुसेना मेडल उड़ान पायलट।
2: एयर कमोडोर प्रभात मलिक वायुसेना मेडल फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: वायुसेना के ही एक और अधिकारी अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल एयर कमोडोर प्रभात मलिक।
1: ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर उड़ान पायलट।
2: ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर फ्लाइंग पायलट टू रिसीव द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: और अब बारी वायुसेना के एक और अधिकारी की कि वे जाएं और राष्ट्रपति जी से उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करें। यह हैं ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर।
3: परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे अति असाधारण कोटि की

0: विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल। सर्वप्रथम वाइस एडमिरल वर्तमान में एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: वाइस एडमिरल नाउ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
2: हर बारी परम विशिष्ट सेवा मेडल की सबसे पहले एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, जो कि नौसेना के अध्यक्ष हैं, एवीएसएम है, वीएसएम है, प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह एवीएसएम वाईएसएम वीएसएम फ्रॉम द इन्फेंट्री रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: परम विशिष्ट सेवा मेडलों की श्रृंखला में अब बारी है लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह की अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इन्फेंट्री के अधिकारी हैं।
0: वाइस एडमिरल संजय बात्सायन अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल।
1: The next recipient of the Param Vishisht Seva Medal this evening is Vice Admiral Sanjay Vatsayan, AVSM NN.
2: भारतीय नौसेना के अधिकारी वाइस एडमिरल संजय वात्सायन अति विशिष्ट सेवा मेडल, नेवी मेडल प्राप्त कर चुके हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करके राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हैं।
0: वाइस एडमिरल अजय कोचर अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल।
1: वाइस एडमिरल अजय कोचर अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: और अब जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के सामने अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित एवीएसएम वीएम वीएसएम फ्लाइंग पायलट इज द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: अब राष्ट्रपति जी से परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने जा रहे हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, भारतीय वायुसेना के पायलट हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
0: एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल।
1: एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: परम विशिष्ट सेवा मेडल की श्रृंखला में अब माननीय राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए एयर मार्शल तेजिंदर सिंह आप पायलट हैं, भारतीय वायुसेना के अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
0: एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: भारतीय वायुसेना के एक और अधिकारी एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए।
0: लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक उत्तम युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक उत्तम युद्ध सेवा मेडल From the infantry receiving the Param Vishisht Seva Medal.
2: भारतीय सेना की इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूट फर्नांडिस अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूट फर्नांडिस अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: द कोर ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूट फर्नांडिस अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए।
0: लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल नवदीप सिंह सरना अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा।

0: वायुसेना से रिटायर हो चुके हैं, एयरोनॉटिकल इंजीनियर रहे हैं मैकेनिकल विंग में, एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल सूरज सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल, उड़ान पायलट सेवानिवृत्त।
2: The next recipient of Param Vishesh Seva Medal this evening is Air Marshal Surat Singh, ABSM, VM, BSM, retired.
0: भारतीय वायुसेना के पायलट रहे हैं एयर मार्शल सूरत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल, और सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को।
3: लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
2: Lieutenant General Arvind Walia, Ati Vishisht Seva Medal, retired, receiving the Param Vishisht Seva Medal.
0: और अब पारी है परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया की। आप कोर ऑफ इंजीनियर्स में थे और रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अपना पदक राष्ट्रपति जी के हाथों से।
3: लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
2: Lieutenant General Rakesh Kapoor, Ati Vishesh Seva Medal, Vishesh Seva Medal, retired, receiving the Param Vishesh Seva Medal this evening.
0: Armored Corps के अधिकारी रहे हैं Lieutenant General Rakesh Kapoor, Ati Vishesh Seva Medal, और विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के बाद, रिटायर होने के बाद आज प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: Lieutenant General Gajendar Joshi, Ati Vishesh Seva Medal, Sena Medal, सेवानिवृत्त।
2: Lieutenant General Gajendra Joshi, Ati Vishesh Seva Medal, Sena Medal from the Infantry, retired.
0: Infantry के एक और अधिकारी, भारतीय सेना को आपने अपनी सेवाएं दी हैं, Lieutenant General Gajendra Joshi, Ati Vishesh Seva Medal, और सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर रहे हैं अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
2: लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना, अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, रिटायर्ड।
0: और अब बारी कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की। सेवाएं दे चुके लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना की अति विशिष्ट सेवा मेडल, आप रिटायर हो चुके हैं और प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
2: लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार, रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल, रिटायर्ड, विल रिसीव द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: कोर ऑफ सिग्नल्स में आपने काम किया था, लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं और आज प्राप्त कर रहे हैं रिटायर होने के बाद परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: एयर मार्शल सुनील काशीनाथ विधाते, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, सेवानिवृत्त।
2: एयर मार्शल सुनील काशीनाथ विधाते, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेना मेडल एंड वायु मेडल, रिटायर्ड, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: भारतीय वायुसेना में रहकर आपने बहुत उड़ाने भरी है, एयर मार्शल सुनील काशीनाथ विधाते, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल। सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को।
3: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
0: भारतीय सेना के अगले अधिकारी परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
3: मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल फ्रॉम द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: अगला परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के आप अधिकारी रहे हैं।
3: मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान,

0: अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: Major General Charanjit Singh Mann, earlier recipient of Ati Vishisht Seva Medal and Vishisht Seva Medal, is now receiving the Param Vishisht Seva Medal.
2: Armored Corps ke adhikari Major General Charanjit Singh Mann Param Vishisht Seva Medal prapt kar rahe hain Rashtrapati ji ke kar kamlo se. Medal prapt karne ke baad unhe salute karte hue.
0: Major General Rupesh Mehta, Sena Medal, Vishisht Seva Medal.
1: Major General Rupesh Mehta, Sena Medal and Vishisht Sena Medal from the Regiment of Artillery, receiving the Param Vishisht Seva Medal.
2: Artillery Regiment के अधिकारी Major General Rupesh Mehta की बारी है अपना Param Vishisht Seva Medal ग्रहण करने की. आप विशिष्ट सेवा मेडल से पहले ही अलंकृत हो चुके हैं.
3: अब सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे. युद्ध अथवा संघर्ष अथवा युद्ध स्थिति के दौरान अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल. सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल.
1: The first recipient of Sarvottam Yudh Seva Medal, Lieutenant General Pratik Sharma, PVSM, AVSM, CM, from the Madras Regiment, Headquarters, Northern Command.
2: सात बहादुरों को मिलेगा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल. सबसे पहले बारी है लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा की परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल. मद्रास रेजिमेंट के आप अधिकारी हैं. प्राप्त करते हुए युद्ध के दौरान अपनी सेवाओं के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल.
3: एयर मार्शल नगेश कपूर परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल.
1: एयर मार्शल नगेश कपूर PVSM AVSM VM फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल.
2: सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने की बारी अब है भारतीय वायुसेना के अधिकारी एयर मार्शल नागेश कपूर की. परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल. आप फ्लाइंग पायलट हैं भारतीय वायुसेना के.
3: लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, बार टू सेना मेडल एंड बार.
1: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल इज लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई UISM, Ati Vishisht Seva Medal, Seva Medal from the Kumaon Regiment, Integrated Headquarters of Ministry of Defence, Army.
2: Kumaon Regiment के अधिकारी विशिष्ट सेवाएं दी आपने. Lieutenant General Rajiv Ghai, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल.
3: Air Marshal Avdhesh Kumar Bharti, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल.
1: Air Marshal Avadesh Kumar Bharti, Ati Vishisht Sena Medal, Vayu Sena Medal from Flying Pilot, receiving the Sarvottam Yudh Seva Medal.
2: Bharatiya Vayu Sena ke ek aur utkrisht adhikari pilot Air Marshal Avadesh Kumar Bharti, Ati Vishisht Seva Medal prapt karte hue apna Sarvottam Yudh Seva Medal. Salute karte hue Rashtrapati ji ko aur apne
3: Vice Admiral Sanjay Jasjeet Singh परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, सेवा निवृत्त.
1: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह PVSM AVSM NM रिटायर्ड.
2: वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह अब प्राप्त कर रहे हैं अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल. आपने भारतीय नौसेना में युद्ध के दौरान
3: एयर मार्शल दी थी. नर्मदेश्वर तिवारी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, सेवानिवृत्त.
1: एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, फ्लाइंग पायलट रिटायर्ड रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल.
2: भारतीय वायुसेना के एक उत्कृष्ट अधिकारी और पायलट एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल.
3: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त.
1: द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल इज एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र AVSM VSM फ्लाइंग पायलट रिटायर्ड.
2: भारतीय वायुसेना के एक और पायलट रहे एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा

0: मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल और सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को। और इसी के साथ आज के जो रक्षा अलंकरण थे उनका समापन होता हुआ रक्षा सचिव राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए।
0: माननीय राष्ट्रपति जी ने अनुमति दी।

0: दूसरा चरण यह था जिसमें विशिष्ट सेवा पुरस्कार आज सशस्त्र सेनाओं के विशिष्ट अधिकारियों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति जी अब गणतंत्र मंडप से सबका अभिवादन करते हुए धीरे धीरे बाहर जाती, उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और उनके ठीक पीछे अन्य अधिकारी। और ये बता दें कि आज 105 अधिकारियों को ये विशिष्ट अलंकरण यहां पर प्रदान किए गए, जिसका आंखों देखा हाल आप आकाशवाणी के जरिए सुन रहे थे।
1: As this solemn ceremony draws to a close, let us offer our deepest respect to all the awardees and their families. May we always remember that the spirit of duty that drives our armed forces. I, Lipika Das, along with my co-commentator, Mahindra Singh Lales, OB in charge, Prabha Kumar, with our technical team, Ashok Kumar Mishra, Sumit Katiyar, Hemraj Meena, and producer, Pramod Kumar, take you back to the studios of Akashvani.

रमा सिंह की शब्द रचना भी आपने सुनी संवेद स्वरों में FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। और अब श्रोता सुनेंगे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे दिलीप यादव।

Lembra que pra mim.

किशन भैया, जल है तो कल है ये जो नारो है, वाके पीछे एक मर्म छुपो भयो है। और ये मर्म ये है, पानी बहुत ज़रूरी है, बिना जल के न जीवन है न खेती है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं जल संरक्षण से बढ़ेगी खेती की आय, यह विषय पे। निश्चित रूप से बिना पानी के खेती की उम्मीद कर वो बेमानी है, और हमको खेती अगर करनी है, अच्छी खेती करनी है, तो जल संरक्षण की दिशा में हमें काम करना ही चाहिए। अब देखो किसान भैया, बहुत सुंदर सुंदर मशीन आ चुकी हैं, हालांकि आप सब लोग इन मशीनों को प्रयोग कर रहे हैं। तो अब यहाँ की हम बात करें उत्तर प्रदेश की, चूँकि यहाँ जो छोटी हैं और राजस्थान जैसे इलाके में किसान के पास ज़्यादा ज़मीन है, पंजाब में ज़्यादा ज़मीन है, तो वहाँ जल संरक्षण के कार्य किसान भैया तालाब खोद सकें, ज़मीन पर्याप्त है और बहुत सारे साधन हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात है, या अपने बोरिंगन को रिचार्ज करने की बात है, या जो कुआं हैं जिनके माध्यम से हम सिंचाई करें, उनमें बरसात के जल से जल स्रोतन को समृद्ध करने की जो तकनीकी है, ये सब आवे वाले कल के काजे जल की व्यवस्था के साधन हैं। तो किसान भैया देखो, जल संरक्षण के काजे सबसे पहली और प्राथमिक जो काम हमारे यहाँ या हमारे क्षेत्र में समझो जाए, वो है अपने खेतन की जुताई, समतलीकरण, लेवलिंग और मेड़बंदी। क्योंकि बरसात को सीजन आए भी बारो है, अगर हमारी मेड़ दुरुस्त हैं तो खेत को पानी खेत में और गांव को पानी गांव में। ये जो नारो है उत्तर प्रदेश सरकार के उस साल से दे रही है, तो हमें अपने पानी को, बरसात के पानी को अपने खेत में ही रोकना है, और रोकवे के कार्य सबसे ज़रूरी हो हमारी अच्छी मजबूत मेड़। तो गर्मी के सीज़न में हालांकि किसान भैया या काम को करें हैं, उल्टे माजे लगा के अच्छी मेड़बंदी करें, जैसे कि पानी, बरसात को पानी हमारे खेतन में ही रुके और हमारे जल स्रोत समृद्ध हों। तो यह के जो लाभ हैं वो बहुत सारे लाभ हैं। अगर हम अपने जो बोरिंग है, अगर हमारे खेत में कोई बोरिंग बेकार पड़ो है, तो वहाँ के माध्यम से हम भूगर्भीय जल के जो स्रोत हैं उनमें बरसात के पानी को इकट्ठा कर सकें, और जब हमें पानी की ज़रूरत है तो वह पानी को उपयोग करके हम फसल ले सके हैं। बहुफसली खेती, कम पानी वाली जो फसल हैं, जैसे बाजरा है, सरसों है, कम पानी वाली फसलन के काजे अगर हम बरसात के सीजन में जल संरक्षण पर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी अगली फसल के काजे हमारे पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद रहेगी, और यहाँ से लागत में कमी। क्योंकि अगर हमने अपने खेत में जल संरक्षण किया है, तो हमें नीचे तक नमी बरकरार बनी रहेगी और हमें कम से कम पानी की आवश्यकता पड़ेगी। जल संरक्षण से और जो छोटे मोटे जो काम हैं, जैसे कि धान की खेती यहाँ किसान भैया करें, लेकिन बहुत से इलाके में जहाँ पानी थोड़ा ज़्यादा फसल में खड़ो रहे, वहाँ धान के संग में लोग मछली की खेती भी करें, मछली डाल दें और धान की फसल भी होती रहे और मछली भी पलती रहे। तो जल संरक्षण के संग संग और जो दूसरे सहायक कार्य हैं उन्हें भी हम कर सके हैं, और या के माध्यम से हम अपनी जो आय है वह में इजाफा कर सके हैं। तो किसान भैया, ये चर्चा है गई जल संरक्षण पे। अब सबसे ज़रूरी जो दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ है वो है मृदा स्वास्थ्य। मृदा स्वास्थ्य, अगर हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक होगा तो हमारी फसल निरोगी होगी, और वहाँ से प्राप्त जो उत्पाद है, अनाज है, दाल है, फल है, बाकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी होगी, और बाकी कीपिंग क्वालिटी, यानी कि बाज़ार में अगर हम कोई सब्जी को लेके जा रहे हैं, अगर रासायनिक खादन से ही तैयार सब्जी है तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, और जहाँ में कार्बनिक तत्वों की मात्रा रही है, मिट्टी की जो भौतिक स्थिति है अच्छी है, तो आपकी जो सब्जी या आपके फल जो भी बाज़ार में जाएंगे, उनके स्वाद, सुगंध, चमक, हर चीज़ में अंतर होगा। तो ज़रूरी है कि हम अपनी मिट्टी की सेहत को ध्यान रखें, क्योंकि लगातार धान गेहूं के फसल चक्र जिन इलाके में अपनाए जा रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों को अवशोषण ज़मीन से है रहे हो। क्योंकि धान की बात करें 30-35 मन को भीगो, गेहूं की बात करें 35-40 मन को भीगो, यानी 90-100 मन हर बार, एक साल में हम दो फसल

से अपने खेत से अन्न के रूप में ले रहे हैं। लेकिन देवे की अगर हम बात करें तो एक ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद हो वह खेत को हम नहीं दे रहे। तो मिट्टी की सेहत तो हमें सुधारनी है, तो हमें कंपोस्ट खाद, चाहे वो गोबर की खाद के रूप में हो, वर्मी कंपोस्ट के रूप में हो, अगर ये सब नहीं है तो देखो आजकल जो जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, ये बहुत छोटे छोटे 5 किलो, 5 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर, थोड़ा सा गुड़, बेसन, गूलर के पेड़ के नीचे की मिट्टी मिला के ड्रम में 1 महीना सड़ा के वाकू तरल के रूप में पानी के संग में बहाए के भी हम जो जीवांश कार्बन है वाकू सुधार सकें। बैक्टीरियन की जो संख्या है अपनी मिट्टी में, उन बैक्टीरियन की संख्या को बढ़ाई सके हैं। और ये बैक्टीरिया ही हमारे जो रासायनिक खाद हम डाल रहे हैं, चाहे वो DAP हो, NP हो, पोटास हो, जिंक हो, सल्फर हो, मैग्नीशियम हो, ये जितने तत्व हैं इनको पौधा तक पहुँचावे को काम ये बैक्टीरिया ही करें। जब खेत में बैक्टीरिया ही नहीं होंगे तो जितनों ये तत्व जड़ ले पावेगी ले पावेगी, बाढ़ बाकी जमीन में वैसे ही बेकार पड़े रहेंगे, या तो पानी के संग बह के चले जाएंगे, या जमीन में नीचे चले जाएंगे, या गैस के रूप में, जैसे नाइट्रोजन उड़ जाए तो गैस के रूप में उड़ के वायुमंडल में चले जाएंगे। तो हमारी जो ज़रूरत है वो यह बात की है कि मिट्टी की सेहत हमें ठीक रखनी है, पोषक तत्वों का जो बैलेंस है, संतुलन है, वो ठीक रखना है। वाकई का ये ज़रूरी है कि हम जो जैविक जो तत्व हैं उनको समावेश अपनी खेती में करें। किसान भैया करवे लगे हैं क्योंकि लगातार समाचार पत्र और रेडियो के माध्यम से विशेषज्ञ उन्हें ढेंचा की, हरी खाद के ढेंचा की बात करें हैं, मूंग को खेत में पलटवे की बात करें हैं, सनई को खेत में पलटवे की बात करें, या कोई भी हरी फसल खेत में पलट के और वासे हरी खाद के रूप में मिट्टी की सेहत सुधारवे के जो तौर तरीका हैं वो अपनाने की बात लगातार होती रही हैं। और चूंकि ब्रज में गौशाला बहुत है और गौशाला के पास गोबर, सड़े हुए गोबर की खाद भी बहुत आयत में है, और हम देखे हैं जो किसान भैया जागरूक हैं या सब्जी बारी फसलन को करें हैं, वो कम से कम तीसरे साल 100 से 200 क्विंटल अपने एक एक पक्के बीघा में सड़ी हुई गोबर की खाद डालें और तीसरे साल डाले ही डालें, बिना वाको फ़ायदा मिले, क्योंकि उनकी जो सब्जी है, उत्पाद है, बाकी कीमत अच्छी मिले, बाकी गुणवत्ता अच्छी हो, और बाज़ार में बाकू एक अलग पहचान के रूप में कि फलाने गांव की सब्जी है जहाँ गोबर की खाद को प्रयोग हो। तो मिट्टी की सेहत हमारी आय में वृद्धि और हमारी समृद्धि दोनों की वजह है, क्योंकि अगर मिट्टी पोषण के हिसाब से ठीक है तो ऐसी खेती में रोग संक्रमण लगने की संभावना हो कम हो। तो भैया ये हमारी रही दूसरी चर्चा मृदा स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि विषय पे। तो मिट्टी की सेहत अगर ठीक रहेगी तो किसान निश्चित रूप से समृद्ध रहेगा, और चूंकि किसान अपने खेत के उत्पाद ही खावे वो निरोगी भी रहेंगे, उनको परिवार भी स्वस्थ रहेगा। अब आपको सुनबा में एक प्यारा सो लोकगीत, मेरे जलेबी से चिपके हाथ लंगूरिया पैठे की मिठाई ले आइयो, जय गायो है पिंकी शर्मा और सखियन ने।

0: मेरे जलेबी से चिपके हाथ लंगुरिया पैठे की मिठाई मुकू ले आइयो। पिंकी शर्मा और सखियन के स्वर में आप सबने लियो या लोकगीत को आनंद। अब कार्यक्रम में सुनवा मैं आपको एक भेंट वार्ता टिकाऊ खेती के फायदा विषय पे। वार्ताकार विशेषज्ञ हैं सुनील कुमार चौधरी और इनसे भेंट करी है ओपी सिंह ने।
1: किसान भाइयों, सामान्यतः जब हम खेती करते हैं तो खाद की, पानी की, बीज की बात करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी जो जरूरत है वो हमारी खेत की मिट्टी है। और खेत की मिट्टी लगातार खेती करते रहने से उसकी उपजाऊ शक्ति कम होती भी जाती है, तो उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़े, उपजाऊ शक्ति बनी रहे, उसके लिए हम सबको ये जरूरत है कि समय समय पर उसकी हम देखभाल करें, समय समय पर उसकी जो जरूरत है उनका पूरा करते रहें। और वो पूरे करने के जो तरीके हैं वो कई तरीके से हैं। आप पुराने समय से जानते हैं, हम खेत में खाद डालते थे, हरी खाद बनाते थे, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें डालते थे। आजकल एक तरीका ये है कि हम उर्वरक डालते हैं जो बाजार में मिलते हैं, रासायनिक खाद जिनको बोलते हैं, चाहे वो यूरिया के रूप में डालें, चाहे वो DAP के रूप में डालें। और वैज्ञानिक लोग जहाँ तक बताते हैं वो लगभग, जो जानकारी सही तौर पे माने तो 16-17 पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमारी मृदा में पाए जाते हैं और पौधों की बढ़वार के लिए, उनके विकास के लिए आवश्यक है। तो जब भी हम कोई फसल उगाते हैं, जब भी कोई पौधा उसमें उगाते हैं, तो वो पौधा

0: मिट्टी में से इन तत्वों को लेता है अपनी जरूरत के लिए, अपने विकास के लिए। तो निश्चित तौर पर जब कोई चीज ली जाती है तो उसमें उसका कमी होना बहुत आवश्यक है। तो मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, मिट्टी की देखभाल हम कैसे करें, ये समय समय पर हम आपको रेडियो के माध्यम से जानकारी देते रहे हैं। आज इसी संदर्भ में हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए जो मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह चौधरी साहब। तो सुनील साहब, आपका इस चौपाल में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार जी, नमस्कार।
0: तो हम जो किसान भाइयों से गुफ्तगू कर रहे थे, बात कर रहे थे और जो ये बात रख रहे थे उनके सामने कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अगर ठीक है तो पैदावार भी निश्चित तौर पर ठीक रहेगी और तभी हमारे खाद पानी और अच्छे बीज देने का कोई लाभ भी हो सकता है। तो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसको एक वैज्ञानिक तरीके से अगर हम कहना चाहें तो उसको आप कैसे बताएंगे कि भाई मिट्टी का स्वास्थ्य भी होता है, जैसे हमारा सांस स्वास्थ्य है, पशुओं का स्वास्थ्य है, जीवधारियों का स्वास्थ्य होता है, तो मिट्टी का भी एक स्वास्थ्य होता है और वो कैसे बताएंगे, इस उसमें थोड़ी सी जानकारी हम आपसे लेना चाहते हैं।
1: किसान भाइयों, जैसे कि अभी हम इस बिंदु पे चर्चा कर रहे हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर, मिट्टी का स्वास्थ्य में अभी आपने पहले भी सुना होगा रेडियो के माध्यम से, पेपर में भी पढ़ा होगा कि पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 16 तत्व चाहिए जो बहुत आवश्यक हैं
0: जी।
1: इसमें आपको ये कैसे पता चले कि कौन से तत्व की कितनी कमी है, तो इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि मिट्टी की जांच।
0: जी जी।
1: तो मिट्टी की जांच के लिए आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि मिट्टी का नमूना कैसे लेना चाहिए और मिट्टी के नमूने की जांच कहाँ होती है, कितनी फीस लगती है, कब कराई जाती है, इन बिंदुओं पर हम आपको बताएंगे
0: जी।
1: तो सबसे पहले तो जैसे आप मिट्टी का नमूना लें तो कायदा तो ये है कि जैसे अपने यहाँ सीजन है खरीफ, रवि और ये जायद
0: जी,
1: तो मुख्य रूप से हमारे वृत्त क्षेत्र में खरीफ और रवि की जो फसलें हैं वो ज्यादा होती हैं। तो एक नमूना तो अपन खरीफ की फसलों से पहले ले लें और एक रवि की फसलों से पहले। अब आप देख रहे हैं कि रवि की फसलों की कटाई हो चुकी है, अब खेत खाली भी हो जाएंगे, तो इस समय आप नमूना जांच के लिए ले सकते हैं
0: जी।
1: तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस खेत से आप नमूना ले रहे हैं तो उसमें ये सावधानी बरतें हैं, एक तो मेड़ों के सहारे से नमूना नहीं लें बिल्कुल
0: जी,
1: मेड़ों से थोड़ा हटके नमूना लें और एक खेत में कम से कम 5-6 जगह से मिट्टी लें, जिससे समरसता रहे कि एक जगह पे कहीं पहले से खाद डला हुआ है या फिर कोई पशु की गोबर पड़ी हुई है या लैटिन वगैरह पड़ी हुई है या कोई भी खाद अन्य पड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सही रिपोर्ट नहीं आ पाती
0: जी।
1: तो आप 6-7 जगह से मिट्टी लेंगे तो इसमें ये रहेगा कि आपका तो सही सैंपल हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले 9 इंच गहराई तक मिट्टी खोदनी है। 9 इंच गहराई तक मिट्टी खोदने के लिए आप अंग्रेजी की जैसे वी बनाते हैं इस शेप में गड्ढा खोदें
0: जी,
1: जैसे आप खुरपी से ले रहे हैं या फावड़े से ले रहे हैं
0: तो थोड़ा तिरछा खोद,
1: हाँ थोड़ा तिरछा खोद लें तो अंग्रेजी की जो वी बन जाती है इस तरह से खुद जाएगा। 9 इंच गहराई तक लें तो पहले की उस मिट्टी को निकाल दें और बी शेप में जो साइड की मिट्टी है उसको खुर्चें। तो ये आप 6-7 जगह से खुर्चेंगे मिट्टी तो इसका वजन करीब 2-2.5 किलो हो जाएगा। अब इस मिट्टी को लेके अच्छी तरह आप मिला लें,
0: मिलेगी जो 5-6 जगह से ली है उस सबको मिला लें,
1: सबको मिला लें अच्छी तरह। मिलाने के बाद ये मिट्टी ज्यादा हो गई तो हमें नमूने के लिए अधिकतम 500 ग्राम मिट्टी चाहिए और कम से कम 250 ग्राम। अब इस मिट्टी को हमें कम करना है तो इसको हम क्या करें कि इसको अच्छी तरह मिला के 4 हिस्से बनाएं। 4 हिस्सों में से 2 हिस्से वापस अपन खेत में ही डाल दें, 2 हिस्से बचे उन्हें वापस मिला के फिर उनके 4 हिस्से करें। तो ऐसे हम
0: ये क्रिया मतलब तब तक करते रहे जब तक वो
1: आधा किलो
0: और 250 ग्राम के बीच में रह जाए जी।
1: तो 1/2 किलो मिट्टी अपनी रह गई तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक साफ थैली लें जिसमें कोई पहले से और कोई चीज नहीं हो
0: जी जी।
1: तो उस थैली में क्या नाम है मिट्टी को डालें और फिर उसमें क्या नाम है एक स्लिप डालें तो जिसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, गांव का नाम,

0: का नाम और खेत के नाम तो जनरली जैसे एक किसान ने दो से ज्यादा सैंपल दिए तो हमें खेत का नाम भी लिखना जरूरी है क्योंकि उससे ये डिफाइन हो जाएगा
1: कि आपने किस खेत के किस लिए खेत मतलब हर खेत के लिए एक अलग नमूना
0: अलग नमूना।
1: अगर आपके चार खेत हैं तो चार नमूना
0: चार खेत को जैसे आप मुंह बोले नाम रखते हैं किसी को कुएं वाला कोई सड़क वाला
1: पीपल वाला
0: जो भी आपने नाम रख रखे हैं
1: जी जी
0: इस तरह से उस पर खेत का नाम लिखते हैं। अगर आप ज्यादा रिकॉर्ड रखते हैं तो खसरा नंबर भी लिख सकते हैं
1: बिल्कुल
0: और फिर उसमें लिखें आप कौन सी फसल बोना चाहते हैं तो ये आप डाल देंगे स्लिप में और ये
1: तो मतलब उस खेत की और जो ली जा रही हुई फसल है उसमें आपको किसान भाइयों को ये पता लग जाएगा कि जो हम फसल ले रहे हैं जैसे मान लो आप खेत है सरसों का आलू का गेहूं की खेत खाली हो रहे हैं आगे चल के उसमें धान लेना है आपको जो है मूंग लेनी है जो भी फसल लेनी है वो अगर लिख के भेज देंगे तो एक वैज्ञानिक भाई उनको बता सकते हैं कि जो भी फसल है उसके लिए इतने खाद उर्वरक डाले
0: हाँ इतनी जरूरत है क्योंकि फसल वाइज भी अपन उसमें रिपोर्टिंग करते हैं कि जैसे किस फसल के लिए कितना खाद चाहिए
1: और कितना उस जमीन में पहले से मौजूद है
0: उपलब्ध है
1: जी
0: तो इस हिसाब से आप जैसे मिट्टी की जांच के आधार पर आप खाद डालेंगे तो आपको ये सुविधा रहेगी कि आप अंधाधुंध जो अपन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो ऐसी स्थिति आ गई है कि अंधाधुंध खाद डालते डालते तो हमारी जमीन का पैदा का स्तर तो बढ़ नहीं रहा है खाद की मात्रा हम बढ़ाते जा रहे हैं और हमारे खान पान में भी इतना प्रदूषण हुआ है उससे कि नई नई बीमारियां फैल रही हैं और स्वास्थ्य भी सही नहीं रह रहा तो ऐसी स्थिति में हमें एक तो आर्थिक रूप से भी बचत होगी तो इसमें आपने मिट्टी के जो नमूने की जांच कराई उसमें ये रिपोर्टिंग में हम ये बताते हैं कि मिट्टी में कितना खार है कितना लवण है कितना इसका ईसी है कितना पीएच है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है फॉस्फोरस की कितनी है पोटास की कितनी है कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर और भी जो सूक्ष्म तत्व हैं तो ये सब रिपोर्टें हम उस मिट्टी की जांच में बता देते हैं। इस हिसाब से आप डालेंगे तो एक आपकी पैदावार तो बढ़ेगी और दूसरा आप क्या नाम है आपके खर्चे में भी कमी आएगी तो ये आप
1: दो तरफा एक तरह हुआ है कि आप कम पैसे से उचित खाद डाल के अच्छी पैदावार ले सकते हैं उसमें है ना। अब वो ये कि जैसे ये मौसम है फसल कट रही तो ये उपयुक्त समय है
0: हाँ अब ये जैसे कुछ किसान भाइयों ने अब जैसे खरीफ की फसल बोएंगे तब उपयुक्त समय है कि जैसे अब ये खाली खेत है इस समय जैसे जिन्होंने गर्मी की जुताई भी कर दी है तो और गर्मी की जुताई के बाद भी ले सकते हैं
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: क्योंकि मिट्टी की जांच में प्रयोगशाला में भी समय लगता है तो सही समय ये है कि आप जो सीजन में फसल लेना चाह रहे हैं उससे एक महीने पहले प्रयोगशाला में नमूना भिजवाएं
1: आपका पहुंच जाए जी
0: हाँ क्योंकि जिले लेवल में बहुत सारे नमूने आते हैं वहां भी लाइन लगती है तो आपको फसल से पहले रिपोर्टिंग मिल जाएगी तो आप उस हिसाब से डालेंगे तभी आपको फायदा मिल पाएगा। लेट देंगे तो आपको
1: इसमें लगभग कितना खर्चा आता है एक सैंपल में जैसे वो करा रहे हैं एक खेत का या दो खेत का तो एक सैंपल पर लगभग जो खर्चा है वो कितना आ जाता है इसमें।
0: वैसे सरकार का इस तरफ काफी ध्यान गया है पहले तो फीस इसकी काफी ज्यादा थी अब एक नमूने की फीस ₹5 कर दी है
1: जी जी जी
0: ₹5 में एक नमूने की जांच हो जाती है और गहन जांच कराएं तो उसकी ₹20 लगते हैं मिट्टी की जांच के
1: यानी ₹20 में अगर आप अपनी खेत का और मिट्टी का एक तरह से कहें तो अल्ट्रासाउंड करा के और ये देख सकते हैं कि भाई हमारी जो जमीन है उसमें कितनी ताकत है कितनी हमें और डालना है खाद बीज मतलब खाद तो हमें एक जो फसल हम लेने जा रहे हैं वो हमारी फसल अच्छी होगी
0: जी
1: ये पता लग जाता है एक तरह से
0: बिल्कुल।
1: तो मिट्टी जांच का जो महत्व है मैं समझता हूँ वो यही है कि एक तो कम पैसे लगते हैं कम पैसे कहें या ये कहें कि जो भी हमारे संसाधन उनका उचित उपयोग हो जाता है
0: हाँ संसाधनों का उचित उपयोग है और हमें ये भी पता चल जाता है कई बार क्या होता है कि हमारी जमीन समस्याग्रस्त होती है कि जैसे उसमें खार ज्यादा है कि ये फला फसल नहीं हो पाएगी उसमें मिट्टी की जांच से हमें ये भी पता चल लग जाता है कि इस मिट्टी पानी में कि हमारी ये फसल अच्छी तरह हो सकती है तो वही हम फसल बोएंगे तो हमें निश्चित रूप से ज्यादा
1: कई बार हमें पता ही नहीं है कि जिस जो फसल लेने जा रहे हम अच्छा खाद डाला अच्छा बीज भी डाला लेकिन उतनी पैदावार शायद इसलिए नहीं मिली कि वो हमारी जमीन उस फसल के उपयुक्त ही नहीं थी और अगर जांच करा ली होती तो ये हमें पता लग जाता।

0: जी
1: जैसे क्षारीय जमीन है, लवणीय जमीन है, तो उसमें जैसे हमारी दाल वाली फसलें हो नहीं पाती, हम दाल वाली फसलें बोई जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है इसमें हो सकती है कि नहीं, तो मिट्टी की जांच आपने कराई है, तो उसमें हम ये भी आपने लिखा है कि हम ये फसल बोना चाहते हैं, अगर वो फसल उसमें नहीं होगी तो हम उसमें ये नोट भी डाल देंगे कि आपकी जमीन में ये फसल नहीं हो पाएगी,
0: तो उसमें वैकल्पिक फसल आप ले सकते हैं,
1: ये ले सकते हैं
0: जी जी।
1: और उसके लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो लंबे समय तक आपको ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, जैसे गोबर की खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, आप हरी खाद बोएंगे तो हरी खाद से क्या नाम है जमीन का स्तर सुधरेगा, खार घटेंगे, और जो समस्याग्रस्त पानी है आपका जो खराब पानी है उसकी भी जैसे एक प्रबंधन के तौर पर देंगे उसे कि ज्यादा खार जमीन में नहीं पहुंचे, तो बरसात के लेवल पे जैसे आप 2-3 साल तक उसमें क्या नाम है खारा पानी नहीं देंगे तो दाल वाली फसलें भी आप उसमें ले सकेंगे, ये सब अपने प्रबंधन में मिट्टी की जांच के आधार पर आप कर सकते हैं,
0: आप कर सकते हैं। तो एक तरह से भूमि का सुधार, भूमि के मतलब समस्याग्रस्त मिट्टी की सुधार, ये सब भी जो है मिट्टी की जांच से हम पता कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं,
1: आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे किसान भाइयों हमारे क्षेत्र में क्षारीय जमीन की ज्यादा समस्या है, क्षारीयता ज्यादा है, तो क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए जैसे इस समय आप मिट्टी की जांच करा लेंगे तो बरसात से पहले तो उसमें जमीन सुधारने के लिए जिप्सम आती है, तो जिप्सम को आप क्या नाम है बरसात से पहले या जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो उचित मेड़बंदी करके और मिट्टी की जांच के आधार पर जिप्सम डाल के उसमें मिला देंगे, और जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है तो वो बरसात होने पे वो जमीन सुधरने का काम करती है, जिनके पास ट्यूबवेल की सही व्यवस्था है तो वो जिप्सम डाल के उसमें पानी भर दें तो जो हमारे सोडियम साल्ट है जो ज्यादा खार है तो वो घुल के जमीन की निचली परतों में चला जाता है और हमारी जमीन सुधर जाती है, तो ये भी आप क्या नाम है मिट्टी का सुधार कर सकते हैं,
0: कर सकते हैं। तो ये एक मोटी मोटी सी बात जो निकल के आई डॉक्टर साहब की बात से वो यही है कि मिट्टी की जांच कराना बहुत आवश्यक है, चाहे हम कोई फसल लेने जा रहे हों उससे पहले, चाहे अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य जांच करने की बात हो उससे पहले, और चाहे ये तय करने से पहले कि भाई जो फसल हम लेने जा रहे हैं उसमें कितने हमें खाद और उर्वरक डालने हैं, उससे पहले भी हमें मिट्टी की जांच अगर हम करा लें तो शायद कम पैसे में उचित संसाधन में उचित पैदावार भी ले सकते हैं और हमें दो तरफा लाभ मिलेगा, हमें कम पैसे में कम लागत से हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब जो जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: टिकाऊ खेती के फायदे भेंटवार्ता सुन रहे थे आप, विशेषज्ञ वार्ताकार है सुनील कुमार चौधरी और इनसे भेंट करी ओपी सिंह ने। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम की समय अवधि किसान भैया पूर्ण है चुकी है, अगले कार्यक्रम में फिर नए विषय विशेषज्ञ के संग आप सबसे होगी मुलाकात, तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राम राम।

अभी श्रोता सुन रहे थे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया दिलीप यादव ने। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। और अब प्रस्तुत है फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन।

सुखविंदर सिंह, रणदीप भास्कर और साथियों को भी आपने सुना। फिल्म थी हवाई ज़्यादा, बोल विभू वैभव के थे, संगीत दिया था मंगेश धाकड़े ने।

गुलजार की शब्द रचना अभी आपने सुनी, वाणी जयराम और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म थी गुड्डी, धुन तैयार की थी बसंत देसाई ने।

सपन जगमोहन के संगीत निर्देशन में नक्श लायलपुरी की शब्द रचना भी आपने सुनी किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म थी अभी तो जी लेने दे

0: अनुराधा पोर्टवाल और साथियों के गाए संत ज्ञानेश्वर फिल्म की इस भक्ति रचना के साथ ही आज का संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में आज हम अपने श्रोताओं को सुनवावे हैं ब्रज वार्ता, ब्रज के मंदिरन में संगीत परंपरा। वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रमोद पल्लव गोस्वामी।
2: नट नागर रास रचो नाचत प्यारी संग, शब्द उघटत श्याम नटवर मनो कल मुख चंग, विविध वर्ण संगीत अभिनय निपुण नख सिक अंग, सारे गाम पधनी सप्तम स्वरतान तरंग, सिद्ध रागनी राग सारंग सचित सरस सुगंध, धनन धनन तनन तनन तक तक धुन धनित मृदंग, तरल तिलक ललाट कुंचित चपल चिकुट सुभंग, थकित सुख पिक हंस के की कोक भ्रंग कुरंग, व्यास स्वामिनी नित्य बेहरत प्रणय कोटि अनंग। भैया, ब्रज को समग्र संगीत पावन भावन को संघात है। यहाँ मंदिरन में कीर्तन हुए, भजन हुए या समाज गायन हुए और या फिर ध्रुपद गायन, सबई में श्री राधा कृष्ण की पवित्र और कल्याणकारी बिनकी भक्ति को उज्ज्वल भाव समायो भयो है। याइते ब्रज मंडल में मंदिरन की अपनी अलग ही संगीत परंपरा रही है। मंदिरन की संगीत परंपरा में लाड़ लड़ेते इष्ट के दर्शनन को और रसमयी बनाए के बिन के भक्तन को जिस संगीत परंपरा सदातई भक्ति रस सागर में

ढोकी लगवाती रहे। मंदिरन में संगीत को जी भाव ठाकुर जी के स्वरूप के दृश्य भाव को और अधिक स्पष्ट करे है। जा परंपरा को रागमाला के नाम ते माने हुए जा में संगीत के भैरव वसंत आदि रागन को व्यापक रूप से ब्रज के अलावा राजस्थान गुजरात हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब आदि प्रदेशों में अनुसरण होतो आयो है। ब्रज के मंदिरन की संगीत परंपरा ब्रज क्षेत्र तक ही सीमित ना है, या को विकास सुदूर स्थित मणिपुर और पूर्वांचल एवं पंजाब और महाराष्ट्र में उभयो है। वैष्णव संगीत शास्त्र राग रत्नाकर गीत चंद्रोदय तथा तालारणव एवं भक्ति रत्नाकर में जी बात स्पष्ट है। गीत चंद्रोदय और भक्ति रत्नाकर में तो स्पष्ट रूप से जी बात देखी जा सके। अहे श्रीनिवास एई मधुर वृंदावने परम आनंदे रासे कृष्ण प्रिया संगे। ब्रज के मंदिरन की संगीत परंपरा सैकड़न बरसन ते प्राचीन है। मंदिरन में विशेष पदन में अनेकान राग रागिनी को प्रयोग भयो है, जा में कोमल और शुद्ध स्वरन को ही प्रयोग है। उत्तर भारत में स्थित या ब्रज के मंदिरन के संगीत को बाहर ते आये बारे शासकन ने खूब सजाये हुए। काहेते के मुसलमानी शासक अकबर ने या परंपरा को आत्मसात कियो और अपने नवरत्नन में तानसेन जैसी संगीत की हस्ती को राख्यो। भैयाओ जी बातों आप जानो के तानसेन के आदर्श संगीत सम्राट श्री स्वामी हरिदास जी ते मिलवे के ताई अकबर स्वयं आयो हतो। हिंदी मुसलमान के जा मेल जोलते सांस्कृतिक साझेदारी भई और परिणाम स्वरूप उस्ताद फैयाज खां बड़े गुलाम अली खां और डागर बंधु संस्कृत और हिंदी में नाद ब्रह्म की उपासना करवे लगे। याई परंपरा ते प्रभावित भये पंडित भीमसेन जोशी जो अपनी संगीत उपासना में भिन्न अल्लाह और निजामुद्दीन औलिया की स्तुति को गायो। तो भैया मंदिरन की संगीत परंपरा काउतनिया पीछे नहीं रही। काहे ते के वाने सहजई में सांप्रदायिक सौहार्द की वानगी प्रस्तुत करी है। हमारे संगीत में अनेकन घरानेदारी है। इन घरानेदारों को विकास हमारे मुसलमान संगीतज्ञ भैया नहीं कियो है। भारत के अनेकान धार्मिक स्थलन पर ध्रुपद धमार ठुमरी दादरा टप्पा चैती कजरी भजन और गजलन के माध्यम से आराध्य श्री राधा कृष्ण को रिझायो जाए है। जाऊ के बीच भक्त कवि सूरदास तुलसीदास आचार्य हरिवंश और स्वामी हरिदास एवं संत हरिराम व्यास मीराबाई कबीर आदि के भजनन ने पूरे भारतीय संगीत को एक सांस्कृतिक सेतु बनाया है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर पंडित विष्णु नारायण भातखंडे पंडित विनायक नारायण पटवर्धन पंडित नारायण राव आदि ने यह सांस्कृतिक सेतु को हमें दिखाया है। भैयाओ ब्रज के मंदिरन में संगीत की प्राचीन परंपरा आजो वाई तनिया चली आ रही है। पुष्ट संप्रदाय के देवालय श्री द्वारकाधीश मंदिर श्री राधा बल्लभीय संप्रदाय के श्री राधा बल्लभ मंदिर श्री स्वामी हरिदास जी के सेव्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में और निम्बार्क संप्रदाय के बड़ी कुंज स्थित मंदिर वृंदावन में ठाकुर गोरेलाल मंदिर रसिक बिहारी मंदिर और इन्हीं भक्ति संप्रदाय के सभी आश्रमन में सामान्य और विशेष सभी प्रकार के कार्यक्रमन के समय पे जाई संगीत परंपरा को निर्वाह हुए है। ये बात स्पष्ट है कि जा संगीत परंपरा ते आराध्य की भक्ति को भाव तो प्रबल होए, परंतु जिस संगीत परंपरा हम सबन को एक स्वस्थ जीवन देवे बारी हुए। काहे ते के जी रागबद्ध संगीत मंदिरन में दर्शनन को आयवे बारे भक्तन के मन मस्तिष्क के तनावन को समाप्त करे है। भैया आज के भागम भाग और भौतिकवादी समाज में मानसिक तनाव और वाते अनेकन रोग पैदा भई हैं। आजकल के अव्यवस्थित खान पान अनेकन रोगन को दे रहे हैं। हम सबन की दिनचर्या अव्यवस्थित सी है और अनेकन प्रकार के प्रदूषण वातावरण को विषैले बनाते रहे हैं। बड़े बूढ़े ते लेके छोटे बच्चान तक हमारा सिगरो समाज ही आज तनावग्रस्त है। ऐसे में मंदिरन देवालय की संगीत परंपरा जा सबते छुटकारो दिवाए रही है। ब्रज के सभी मंदिरन में पहले ते अधिक भीड़ हैवे के पाछे जी एक विशेष बात हुए के दूर दूर ते आए बारे भक्तन को वहाँ विशेष सुकून और शांति को अनुभव हुए है। तो भैया मंदिरन में सदीन ते जी संगीत परंपरा रही है लगातार संगीत की ध्वनिन ते ब्रज के इन देवालय के भीतर जबरदस्त नाद शक्ति ब्रह्म शक्ति विद्यमान है। या कारण जब तनावग्रस्त भैया बहन वहां प्रवेश करें तो बिना विशेष प्रकार की शांति को अनुभव हुए है। भैया बर्लिन यूनिवर्सिटी के चैरिटी

0: क्लिनिक के प्रोफेसर वोल फ्रेम सिडनर ने जी सिद्ध कियो है कि संगीत सुनवे ते चिड़चिड़ापन दूर होए। अनेकन शोध अध्ययनन में जी बातों स्पष्ट है कि मानसिक रोगन में संगीत दवाई के समान ही कारगर है। संगीत ते हमारे शरीर को अतिरिक्त स्फूर्ति और ऊर्जा प्राप्त हुए है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के मानसिक रोग विशेषज्ञ को मानना है कि संगीत थेरेपी ते मरीज जल्दी स्वस्थ लाभ करे। डॉक्टर संजय गुप्ता ने अपने शोध अध्ययन में जी बात सिद्ध की है कि शास्त्रीय संगीत सुनवे और उसके और बाकी मस्तिष्क से न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक तरल पदार्थ स्रवित हुए है, जाके कारण जाए सुनवे वारो शीघ्र ही तनाव से मुक्त है जाए है। जाई कड़ी में फैली कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लीसेस्टर विश्वविद्यालय और अनेकन रूसी वैज्ञानिकन को जी प्रमाण है कि 10 मिनट तक संगीत सुनवे से मन स्वस्थ है जाए है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस बंगलोर, बाल्टीमोर यूनिवर्सिटी के शोध निर्देशक डॉक्टर मिलर, ओहियो विश्वविद्यालय के डॉक्टर क्राफ्टमैन एलन आदि को जी विचार है कि संगीत मानव कल्याण को साधन है। ब्रजमंडल में पुष्ट मार्गीय देवालयन को जा संदर्भ में बड़ा योगदान है। श्री वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र गोस्वामी श्री विट्ठल नाथ जी ने पुष्ट मार्गीय सेवा को विस्तार करते हुए जा सेवा को 3 अंगन श्रृंगार भोग व राग में आकर्षक रूप से विस्तृत रूप प्रदान कियो हो। तो राग सेवा के विस्तार के ताई अष्टयाम सेवा के काजे बिन ने अष्ट सखान की मंडली को गठन कियो, वाय आज इस अष्ट छाप के नाम से जानो जाए है। पुष्ट मार्गीय मंदिरन की जी विशेषता है कि वहां ठाकुर जी की मंगला आरती, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या व शयन आरती के बखत पे झांकीन के संग संग कीर्तन संगीतमय पदन को गायन हुए है। जी संगीतमय पद गायन भावानुसार प्रतिदिन हुए है। वर्ष भर में विशेष अवसरन पे ऋतु अनुसार विशेष पदव गाए जाए हैं। इन सभी अवसरन पे ठंडे व गर्म रागन में निबद्ध पद पदावलीन को सरस गायन मन को मोहित करे व इन्हें सुन एक विशेष प्रकार की शांति मिले और मन के सब तनाव दूर होए। मन श्री बाल कृष्ण के दर्शनन में खो जाए है। पुष्ट मार्गीय मंदिरन में पद गायन की जे अमर संगीत परंपरा संपूर्ण मानवता को सुखी बनाए वे बारी है, जे बात निसंदेह पूर्ण सत्य है। पुराने समय पे इन मंदिरन में हारमोनियम वाद्य को प्रयोग नाए हो तो, परंतु अब जी वाद्यता नाए। गोस्वामी बालकन के जन्मोत्सव पे भगवान के स्वरूप के तिलक के समय पे पंच शब्द बाजे बजे हैं। श्री भातखंडे जी की पुस्तक मालिका में पुष्ट मार्गीय देवालयन के संगीत की मानवता को देन स्पष्ट रूप से देखी जा सके। भैयाओ, ब्रज के देवालयन में प्रचलित संगीत परंपरा के विस्तार के दर्शन इन देवालयन में हैवे बारे विशेष उत्सवन और पर्वन के बखत पे हुए हैं। श्री राधा वल्लभ मंदिर में राधा जन्मोत्सव यानी राधाष्टमी पे तथा श्री बांके बिहारी मंदिर में बिहार पंचमी अर्थात बांके बिहारी प्राकटोत्सव पे, राधा रमण मंदिर व अन्य प्राचीन सप्त देवालयन में वहां के श्री विग्रहन के प्राकट्योत्सवन पे जी संगीत देखे जा सके है। भैयाओ, वैसे चैतन्य संप्रदाय के मंदिरन में तो 12 महीना छठी चौमासे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे को कीर्तन बाजे ढोलक खोल मृदंग आदि की थाप पे होम तो ही रहे है। राधा वल्लभीय मंदिर और प्राचीन श्री हरि हितरवंशी के मंदिर व बड़े रास मंडल पे हारमोनियम सारंगी झांझ और पखावज की थाप पे श्री हितर चतुरासी और सेवक वाणी के पदन को सरस गायन नित्य प्रति हुए है। जब ताई पद गायन चले वाय सुनवे के ताई भक्तन के ठट जुड़े रहे हैं। कछु वर्षन ते श्री हिताश्रम सत्संग स्थल पे नियमित रूप से ब्रज के देवालयन की प्राचीन संगीत परंपरा को निर्वहन हो रहे हो। ब्रज के देवालय की प्राचीन संगीत परंपरा के दर्शन समय समय पे मंदिरन की शोभा और उनकी शोभा यात्रा में हुए हैं। तो भैयाओ, देवालयन की जा संगीत परंपरा में संगीत संबंधी ऐसे सूत्रन की प्राप्ति हुए है जिनते हम अपनी मानवता को स्वस्थ समृद्ध बनाए सके हैं। जा समय पे दिशा भ्रमित होती वही किशोर पीढ़ी को जा संगीत परंपरा ते नई दिशा दे सके हैं। जी बात तो 100 विशेष सांची है कि आजो देवालयन की संगीत परंपरा हमारे समाज को कल्याण कर रही है और भविष्य में वो करती रहेगी। पर जी बात हुए कि हमारो समाज और हमारी सरकारों जाके संरक्षण के ताई कछु ठोस कदम उठावे। भैया, जा देवालयन की संगीत परंपरा को संबंध योगी राज श्री कृष्ण से जुड़ो भयो है। संगीत भक्ति को पूरक है। यही संगीत भक्त और भगवान के बीच भक्ति को साधन बने हैं। महाराज के समय पर श्री कृष्ण की पीयूष वर्षणी बंसी ते सात स्वरण में ब्रज गोपीन को आह्वान भयो तो जा महाराज के पावन दर्शन को समस्त देवगण प्रकटे। याही ते भगवान कृष्ण के मधुर स्वरूप को वर्णन ब्रज के देवालयन में प्राचीन संगीत परंपरा में अमर है।
1: ब्रज के मंदरन में संगीत परंपरा अभी श्रोता सुन रहे जय ब्रज वार्ता। वार्ताकार है डॉक्टर प्रमोद पल्लभ गोस्वामी। यह के संगे आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम आप संपन्न हुए है।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही देर में श्रोता सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले।
5: हैप्पी बर्थडे भाई।
6: देखा, मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
7: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
8: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
9: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
7: आई नो ना।
9: RBI कहता है
10: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। महात्मा गांधी के अनुसार, युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
12: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या के श्री राम मंदिर के दान में हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्री राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई आज अयोध्या जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई। सभी आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के रिमांड की मांग नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर रही है।
13: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी।
12: इस मामले को लेकर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि बार एसोसिएशन मामले की CBI की जांच की मांग भी करेगा।
5: हमारे अधिवक्ता संघ अयोध्या का कोई भी अधिवक्ता ये राम जन्मभूमि चोरी

0: अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा। वकालतनामा दाखिल करने, अब जो की भीड़ है तो इस करने पर प्रत्येक नाम पर प्रमोशन स्वरूप अधिवक्ता संघ को वो 5 लाख रुपए प्रत्येक नाम से वो जमा करेगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शील नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में आज 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए परिवारों को सरकार ने जमीन का मालिकाना हक देकर न सिर्फ उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है बल्कि विरासत को भी संरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीलीभीत समेत प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है।
0: आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बन रहा है यूपी। अब यूपी के अंदर विकास हो रहा है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी पीलीभीत से होते हुए जा रही है शामली के लिए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगी। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी।
1: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों और सुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है।
2: आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही।
1: पीलीभीत के बाद मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा भी की। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। स्टाम्प और न्यायालय शुल्क और पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि ये निर्णय अधिवक्ताओं और डीड राइटर की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
3: स्टाम्प विभाग का एक शासनादेश ऑनलाइन रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जीव जारी किए गए 4/6/2026 को इस जियो में थोड़ी सी क्लियरिटी न होने के कारण से एक भ्रम इससे बन गई। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि साथ हमारा रोजगार छीना जा रहा है, और इस भ्रम को से हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/2026 का जो आया था जियो उसको हम निरस्त करते हैं।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दूसरे दिन देशभर से आए ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने लखपति दीदी डैशबोर्ड और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए शी लीप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारम्भ भी किया। इस आयोजन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना देशभर में लागू होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। इसके लिए 95,682 करोड़ की अंतरिम राशि स्वीकृत

दी जा चुकी है। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे समय पर अपनी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी और पारदर्शी ढंग से लागू करते हुए ग्रामीण विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। कार्यक्रम में डिजाइन प्रतियोगिता में प्रदेश के अभय गुप्ता और झील गौतम को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कल से यूपी टीईटी 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 15,99,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। जौनपुर के युवा

0: ने पंजीकरण कराया है। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंटरस्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में रोहित ने 87.05 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रोहित यादव के भाई राहुल ने कहा कि ये उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स के लिए चुने जाने पर उनके पूरे गांव में खुशी का माहौल है।
1: इस वाले गेम में क्वालिफाई मार्क था 77 पॉइंट कुछ था एशियन गेम्स के लिए, और वहाँ अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो करके 87.05 किए और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई भी किए हैं, जिसमें दो लोग जाते हैं। वहाँ एक नीरज चोपड़ा, उनका ऑलरेडी क्वालिफाई हुआ था डायमंड लीग से, 85 पॉइंट कुछ किए थे, और यहाँ से रोहित यादव, दो लोग जाएंगे एशियन गेम्स। हम तो खुश आए हैं, पूरा परिवार पहले से इंतजार कर रहा था कि हाँ अच्छा हो, अच्छा हुआ, पूरा गाँव खुश है इस चीज से, क्योंकि काफी मेहनत किए थे उसके पीछे।
0: राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में बीते 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी दो दिनों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बड़ी बहू
3: ये तुम्हारे ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
3: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना, और ये
2: मेरी बड़ी आपके नाम
3: पर दादी
2: हाँ
3: आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो
2: क्या
4: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: FM 102 दशमलव 2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, और अब प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्याम सुहानी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपके द्वारा प्रेषित 7:15 पर भेजे गए संदेशों को शामिल कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

समीर के बोल अभी आपने सुने उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। फिल्म थी राजा भैया। इस गीत को सुनना चाहा था संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर बिट्ठा सुरेश, सुषमा परिधि और मायरा सुरेश, महाराष्ट्र बोराला खुर्द से आदिनाथ बाग पाटिल, अमोक बाग, गुड़िया कृष्णाली और अशोक देशमुख, नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा निवृत्ति क्षीरसागर और संजय चौहान, राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका और रामेकर परिवार, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु, आशीष, शिवन्या और अन्नू गोस्वामी, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्माला ओम कुमार, दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन नेले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक केले, श्री बडनूर अकोला से अरुणा, बलदेव दामोदर, आदित्य दामोदर, सनावत से यूनस खत्री, शफी, इद्रीश, नूरू, मीना, इरफान और कासिफ मीना, समतानगर काष्टी से लक्ष्मण जी जगताप, श्रेया शिंदे, मानशी, निशांत जगताप, गांव चौलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया, ग्राम पीपर लोड छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योतिष और शिवांश वर्मा, बुलठाणा महाराष्ट्र से

वासुदेव बोधपड़े, अनीता गाठोड़े, रामेश राव गाठोड़े, कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, श्रीमती गीता टिहारिका, सुशांत और सुरेश चौरसिया, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, छत्तीसगढ़ पराली से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस और यशस्वी वर्मा, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सभिया, नसौर रेहान, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय श्री लक्ष्मी सावनकर, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब राम टेके, यशोधरा राम टेके, शव्या राम टेके, करणवीर हाउस भूचा कैचिया, भटिंडा पंजाब से परम सिंह चौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वीरेंदर, कुलदीप सेमू, एकम दमन और अभिज्योत, अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमान नाज़, असद असा, अरहम और समस्त हाशमी परिवार, मामलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, बसंतरा भोजने, पी एस नवहानकर, तुषार करांगले, रसीड़ा छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, मुरलीधर साहू, डीकेश साहू, मजनूगटीला दिल्ली से कमल मालूजा, मधु सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा माही मलिक, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, और ये सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुमन के युगल स्वर में बेटी बेटे फिल्म का गीत, बोल हसरत जयपुरी के हैं, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन को भी आपने सुना, फिल्म थी बेटी बेटे, बोल हसरत जयपुरी के थे। धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। इस गीत के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए गांव गोपी के नगरे से, मिठनलाल सारस्वत, नेहा नीरज, निकेता और इनके मम्मी पापा, गांव नगलापुला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह और राधा, रामानुज, पीहू, कृष्णा, राधिका, पवन, करण, नयन और इनके परिवारिकजन, गांव नौधरा से कोमल मास्टर, जशोदा, सूरज, शिवानी, गांव कुमुदवन से रमेश, सुरेश, सुनील, रचना और इनके मम्मी पापा, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से सोनिया, अजीत, शिवांश, चुन्ना और इनके मम्मी पापा, ब्रज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह नकला राणा से, शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी मथुरा, राजू लावण या खंदौली आगरा से, यादराम जी उसफार मथुरा, वीरेंद्र सिंह मंडी चौराहे मथुरा, नेत्रपाल सिंह नकला विजयी राया, भजनलाल कुमार राया, महेश चंद सदर बाजार मथुरा, सत्येंद्र चंदसौलिया जिला जालौन से, पंचमलाल चतुर्वेदी दौसा राजस्थान से, लाल माता सुतावा नगर रटलाई जिला झाड़ावार राजस्थान से, हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, पप्पूलाल बागरी, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचित बायल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सर्वद सानवी देशमुख, कुमारी हर्षदा देशमुख, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल नवानकर, पाकुड़ झारखंड से उत्तर कुमार भगत, श्वेता भगत, के सुतासु और नवानम सत्यमानंद, बुड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुट्टी भगत। 7:15 पे ये संदेश, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बिचेंद्र, विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष, विश्वकर्मा, पैठर से शेख चांद, शेख फूरखान, अदनान, गुफरान, नुमन और जाकिया, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, तनुजा ईशान देवांगन, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर मेकर, प्रमोद, प्रदीप मेकर, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमल अनेजा, सप्तरंग श्रोता परवार, कुंभार गली, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, निकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, सानिका, पुनावले, पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनवने, छत्तीसगढ़ सर

गांव, बाजार से नसीब मोहम्मद, सलमा, रेहान, फैजान, मोहब्बत, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू, पप्पी भाटिया, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फसान, फरहान, समेरा, स्पीन, रंगोली, राजनगर बिहार से नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल, रानी, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, प्रदीप कुमार, राजबहादुर साहू, शंभू, रजनी सिंह और सागर बाबू, ग्राम पोस्ट सोरई, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश से संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लवकुश और नामदेव का समस्त परिवार, शाहनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी, बेबी प्रियांशी, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, भावना, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल, पापा जी नाना चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल, डग्गू, भविका सिक्का, नेहरू चौक पैठा से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल, बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और समस्त परिवार, ग्राम कुष्टा बुजुर्ग, अमरावती, महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता कुमारी, प्रणाली हागोड़े, समस्त हागोड़े परिवार, सोंगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार, चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश, चंदन, गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव, लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षंदा और समस्त लोखंडे परिवार, 7:15 पीए संदेश, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश, बल्लू निषाद, तरुण श्रेणिका और श्री निजा, साधुर शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव गर्मा, हर्ष आहूजा, राजनगर मधुबनी बिहार से राजकुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रवि राज, गौरव कुमार और के सभी साथी, दात्री गेट भवानी भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल, कुणाल मेहरा ने। और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में इंतकाम फिल्म का गीत, बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इंतकाम फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, बोल राजेंद्र कृष्ण के थे, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव, अनसुईया जाधव, पवन राजे जाधव, छत्रपति जी संभाजी नगर से मंगेश इंगले, संध्या इंगले, चांदनी चौक गंडेरिया पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लकी, विक्की, रानू, रविंद्र, रौनक सेन, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिक्रोस्टा, रोजी डिक्रोस्टा, पर डिक्रोस्टा और विलेस डिक्रोस्टा, आप हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, लोकेश जोशी, पायल, बेबी वैदेही, हंसिका जोशी और अंकिता जोशी, महाकौशल जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनाली दुबे, रानू और मोनिका तिवारी, गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी, भावी नीमकाव महाराष्ट्र से श्रीराम गोंथली, वैष्णवी उषा, युवराज गोंथली, जिला वरंगल से मोहम्मद रजाउद्दीन, मोहम्मद फिसाउद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबेरिया, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनय, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, उमेश, प्रमिला बंचोर, मुठानी वाशंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई, दीपाली, श्लोक कुमार, कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार।

आर हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय, औसा जिला लातूर से उस्मान शेख, सायरा बानो, बाबा शेख सिमर और करिश्मा शेख, अरहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका और समस्त रावेकर परिवार, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, छत्रपति जी संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, सेक्टर नंबर 2 आवास विकास काशगंज से पवन गौड़, सुयश, आशीष, तन्मय और पूर्वा, सोपारा नाला सोपारा मुंबई से मोहम्मद आसिफ शेख, रूमा माहिरा, नोमान सुलेमान, शेख मोहम्मद, कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार साईं गायकवाड़, 715 पी ए संदेश वाडिंग खेड़ा, पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली आरती अरोड़ा, पद्मटा की स्नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, जामनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति, विपिन, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल, मुगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, लुमना, यश मंसूरी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान, पूजा परिहार, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह चंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, मजदू कटीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा सागर, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा माही मलिक, सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला आसमा, दीपक अनुश्री, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा, पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा, नेवासा कुपट्टी महाराष्ट्र से बंडू माया, शिवांश, चंद्रकला, देवीदास, हरिकुश बिडवे, तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष विवेक और बेबी आयुषी श्रीवास, नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज और पीआर जैन। और अब आज का ये कार्यक्रम हमें यहीं संपन्न करने की अनुमति दीजिए। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी का, श्रोताओं का हृदय से आभार। नमस्कार।

उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति को और स्नेहा को अभी आपने सुना। फिल्म थी पुकार, गीत मजरू सुल्तानपुरी का था, संगीत दिया था AR रहमान ने।

बाबर फिल्म का गीत अभी आपने सुना सोनू निगम की आवाज़ में। गीत समीर का था, संगीत दिया था आदेश श्रीवास्तव ने।

0: राजा मेहंदी अली खां के बोल अभी आपने सुने लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म थी मेरा साया, धुन तैयार की थी मदन मोहन ने। इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति पर रचनाएं।

0: योगेश श्रीवास्तव की शब्द रचना अभी आपने सुनी।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: और ये अब सुनते हैं उषा टंडन के स्वर में ये देशभक्ति परक रचना।

योगेश श्रीवास्तव की रचना भी आपने सुनी उषा टंडन के आवाज़ में FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक ही फिल्म से आज इस करके सुनते हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म के कुछ गीत।

अरिजीत सिंह, अल्तमश फरीदी और साथियों को अभी आपने सुना। बोल अमतोराज के थे, संगीत दिया था संजय लीला भंसाली ने। और अब सुनते हैं पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाज में बाजीराव मस्तानी फिल्म का अगला गीत।

पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल को अभी आपने सुना, बोल सिद्धार्थ के थे। एक ही फिल्म से करके मैं इस समय श्रोता सुन रहे हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म के कुछ गीत FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

अक्षय घोषाल, वैशाली मेहडे और साथियों के गाए बाजीराव मस्तानी फिल्म के इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही देर में समाचार होंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और

0: संरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के

0: दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2-पहिया, 3-पहिया, 4-पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया।

लता मंगेशकर, एस पी बाला सुब्रमण्यम को अभी आपने सुना। फिल्म थी पत्थर के फूल, गीत रविंद्र रावल का था, संगीत दिया था राम लक्ष्मण ने।

मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना, फिल्म थी द ट्रेन। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं रफ़ी के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी की शब्द रचना, लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म है आँखें।

लता मंगेशकर के गए आंखें फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 27 जून को विश्व एमएसएमई दिवस मनाया गया। भारत की अगर बात करें तो कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत एमएसएमई क्षेत्र है। एमएसएमई न केवल रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश। आपका स्वागत है डॉक्टर रजनीश कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331-0481 या 2371-7117, 2371-7106 या 2331-4444। याद रखें, इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और एमएसएमई क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
1: प्रियंका जी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो हैं, ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं
0: जी।
1: और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो एमएसएमई की है वो जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ एमएसएमईज के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसमें एमएसएमई का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
0: सही बात है, 38 करोड़ से जितने ज्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं, धर्मवीर जी।
2: जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ
0: जी।
2: तो एक्सपर्ट को नमस्कार। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड

0: मध्य यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50 भी स्टाफ काम करता है, कहीं 30 करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए।
1: जी
2: देखिए, एमएसएमई के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले इनको मिलता था, अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं। जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो हैं, वहाँ उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धनराशि चाहिए होती है, तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेटरल मांगते हैं
1: जी।
2: और कोलेटरल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम CGTMSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इनको बिना कोलेटरल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम CGTMSE से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2000 से ये योजना चल रही है, 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने
1: दी है।
2: और 2023 में एडिशनल 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज हमें देनी थी, और 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था हमने 3.5 साल में ही 10,00,000 करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं। तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण
1: उपलब्ध हो जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो CGTMSE, उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता
2: है। इसमें दो बातें मैं और बताना चाहूंगा। पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो RBI की लिमिट थी वो 10,00,000 रुपए थी, तो हमने RBI से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई है। तो 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटीज हम लोग देते हैं, इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है। तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि MSMEs अपने व्यवसाय विस्तार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं
1: जी, बूस्ट अप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
3: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी है लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है। देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंटी होती है तो वो आम आदमी की होती है, तो पता नहीं लगता अभी किस टाइम लोन आएगा, तो पता करने जाए तो ग्राहक कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी फैले कि जो ग्रांट आए लोन का टाइम को तो पता लगे लोगों को। नमस्कार
1: जी।
2: आपने जो प्रश्न पूछा इसके दो भाग हैं। पहला ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग में किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इसके लिए हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑर्डर है और ये हमारे एक्ट के तहत, MSME डेवलपमेंट एक्ट के तहत है, जिसके अंदर जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको 25% अपनी खरीद जो है वो मैंडेटरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से करनी है। और दूसरी बात यह है कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट

0: तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
1: अच्छा।
0: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपए है, और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है, तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है, अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है PMS, जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं, तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ गारंटीज के बारे में पता नहीं होता, तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है, ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं। तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक्स जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे CGTMSE से लेते हैं, और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी MSME एसोसिएशंस हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो कृपया CGTMSE का जरूर हवाला दें, ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है आप उसकी सुविधा
1: जी आप बिना गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो CGTMSE जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहां तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की, तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई। क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करती है, जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉरपोरेट कंपनीज की बात करते हैं तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
0: देखिए, जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं इनको जेम से करना है, ये हमारे GFR के अंदर ये चीज निहित है। दूसरी बात ये कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है, पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है, तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो जेम का फायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 5 साल में संख्या MSMEs की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ
1: जी। हम चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी
2: जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है MSME के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो कितने परसेंट में ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
1: जी
0: देखिए, जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं, RBI की गाइडलाइंस हैं। बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है, वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं, और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफी कम रहती है। एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं, पर नॉर्मली 8 से लेकर 10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध

0: इलाका है, तो ये आप हमारे CGTMSE का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप प्रोसेसिंग में हैं, तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा।
1: जी, मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।
2: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
2: मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से राशिद अहमद खान
1: जी।
2: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न हैं कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, तो उसकी सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये पूछना चाहता हूं कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए, या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए, तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू।
0: राशिद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये तीन श्रेणियां हैं MSME में, और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है और 125 करोड़ मीडियम के लिए है। मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि ये डेफिनेशन MSME की हमने पिछले साल रिवाइज की थी, और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया। और इसका पर्पज़ ये है कि बहुत से हमारे MSMEs इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी, या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम MSME का स्टेटस खो देंगे, और ये जो बेनिफिट MSMEs के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा।
1: जी, हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, विपिन जी।
3: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार।
3: मैम मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग हैं जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का, तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग ही शामिल होते हैं या फिर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं?
0: देखिए, आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूँगा, शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है।
1: शायद उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं, नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस वजह से?
0: जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना चाहूँगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की, और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो हमारा 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक 1,65,00,000 MSMEs हमारे साथ पंजीकृत थे। और ऐसे बहुत से MSMEs थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे, पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, MSME एसोसिएशंस के साथ, आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि MSME सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ये हम मानते हैं कि MSMEs जो हैं वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट है, और काफी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज थ्रू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया है कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है, तो मैं यहाँ बता

0: चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो पेमेंट डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफॉल्ट को कवर नहीं किया है तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए जीरो स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है तो वो एसएमए वन स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया तो वो एसएमए टू स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद ही वो एनपीए करार दिया जाता
1: है। और अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
0: देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफी मजबूत रही है, और उसका एक रीजन ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है
1: जी,
0: वो भी काफी सख्त है। तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो है वो क्लीन चलें। तो ये 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं तो उसमें आपको सहायता दी जाती
1: है। हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
2: जी मैडम जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: और जो एक्सपर्ट साहब हैं इनका भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एमएसएमई होती है नहीं, और इनमें जो लोग काम करते हैं तो एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक, और मिनिमम वेजेस में कितने निर्धारित करी गई है जी, और वेलफेयर स्कीम के बारे में बताइए कुछ के जो मजदूर काम करते हैं उनको, और वेलफेयर स्कीम्स कैसे होती हैं।
0: देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ, जहां तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है तो मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करती हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं, और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती हैं। तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड है आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आपका स्किल लेवल आता है, तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको जिनके अनुपालना करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग की एक एंटरप्राइज में 10 लोग हैं 20 लोग हैं तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो है वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
1: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, कोई हेल्पलाइन नंबर है जहां?
0: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहां पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कई बार हमने ये देखा मंत्रालय के पास, हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो विमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे रूप में आपसे साझा करना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती थी, और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशन की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया और उसके बाद काफी स्टेट्स ने अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया है।
1: हाँ, अब एक और श्रोता लेते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: जी
1: नमस्कार, सवाल पूछें।
3: जो लघु उद्योग ये बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन्न हो चुके हैं, अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
0: जो आपने प्रश्न पूछा है मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम

0: एंटरप्राइजेस जो है वो काफ़ी संख्या इसकी बढ़ी है, 1 करोड़ 65 लाख से अब 8 करोड़ 70 लाख से ऊपर हुए हैं। और हमारे एमएसएमईज जो हैं वो लार्जर कॉरपोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट है। हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम है वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी वो बने, और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने, और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करें फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है, और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि एमएसएमईज की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं।
1: जी
0: अभी जो हमने मेंशन किया, अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है, ट्रेड्स, जो कि आरबीआई रेगुलेटेड है। तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3 लाख करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा
1: जी
0: है।
1: जी
0: और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा
1: जी
0: हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, तो 1-800-1806-763 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
1: दिल्ली से जुड़े हमारे साथ कोको मस्ताना जी। कोको जी
2: हेलो।
1: जी हाँ, अपना सवाल
2: हाँ
1: पूछें
2: हाँ नमस्ते मैडम।
1: जी।
2: हेलो।
1: जी हम सुन पा रहे हैं, जल्दी से सवाल।
2: अच्छा, एक्चुअली हमारा ना बुटीक है
1: जी
2: सिलाई का, तो उसमें हमारे पास 2 कारीगर है, क्या हमारे को उसमें लोन मिल सकता है? फ्लैट्स घर का है मतलब।
0: बिल्कुल, आपको लोन मिल सकता है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एक PMEGP हमारी, वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है,
1: जी
0: इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं। तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है, आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
1: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि एमएसएमई को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
0: जी बिल्कुल, एमएसएमई को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे एमएसएमईज को मिलता है। और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर सके,
1: जी
0: किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाए बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये दो एक पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनी, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं? रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है?
0: देखिए, उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आप एमएसएमई में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हम इंप्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पाते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था। ये पोर्टल फुल्ली वॉलेंट्री है, ऑनलाइन है, और ये पोर्टल हमारा, इसमें हमारी एपीआई बैकिंग है, जिसके अंदर हम जीएसटी, इनकम टैक्स और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है। इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं
1: जी।
0: और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहां पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है, आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं।
1: चाहते चाहते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना
0: जी
1: शुरू की गई।

0: कि उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था। 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था। 2.5 साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके
0: जी
1: हैं। 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं। 17 लाख लोगों को 15,000 रुपये का टूल किट प्राप्त हो चुका है। 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं। तो ये एक ब्रॉड मैंने आपको
0: जी जी
1: जानकारी।
0: तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं एमएसएमई। डॉक्टर रजनीश, आप आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं रासलीला, हाउ लीला और आंख में चोले लीला। आलेख गोकुलचंद गोस्वामी का है।

0: अरे हाँ मैया,
1: देख तो बेटा आज सवेरे ते कन्हैया न जाने कहाँ चलो गयो है। न सवेरे ते दातन करी, न कुल्ला करे, न कले उकियो, ऐसो बाबा को लाड़लो है रे कि खेलबो ही खेलबो सूजे हर घड़ी।
2: अरे मैया, बाबा को लाड़लो ना है, तेने वाकु मूड पे चढ़ा राखो है। देख वो आ रहे है, वाकु समझा दे।
3: मैया मुई भूख लग रही है, माखन दे दे। मैया
1: माखन तो तुए दे दूंगी, पर पहले जी बताया कि तू कहाँ चलो जायो करे।
3: मैया मैं तो खीर में चले गयो हूँ।
1: अरे सुन लाला, तू एक बात बताऊं।
3: कहे मैया।
1: लाला तू बन में खेलबे मत जायो करे।
3: क्यों मैया?
1: अरे लाला बन में बड़े बड़े हाऊ आए हैं।
3: हाऊ मैया?
1: हाँ लाला।

0: देख लाला, वन में बड़े बड़े हाऊ आए हैं। तू वन में खेल बे मत जायो करे, वे छोटे छोटे बच्चान को छोरी में धर के ले जाए।
1: ए मैया, वे हाऊ कौन ने भेजे मैया?
0: अरे लाला, ये हाऊ राजा कंस ने भेजे हैं। ये छोटे छोटे बालकन को डरपा में है और पकड़ के ले जाए।
1: ए मैया, हाऊ कैसे हुए मैया? मैया मैंने तो कभी देखे ना है, जन उनके कैसे मुहड़े हुए मैया?
0: लाला, उनके बड़े बड़े मुहड़े हुए, बड़े बड़े दांत हुए और बहुत ही बड़े बड़े बार हुए। उन्हें देखते ही डर लग आवे लाला।
1: अरे मैया, तू तो उन्हें देखवे की कह रही है, पर मैया मोए तो उनके नाम में सुन सुन के डर लगे मैया। न जाने जन मैया आज तू कहा बात कह रही है। सुन मैया।
0: कह लाला।

0: भैया, मैंने कच्छ मच्छ बारहाओ नरसिंह परशुराम बामन और मैया राम अवतार धारण करके मैंने अनेक राक्षस मारे और मैया अनेक बार या पृथ्वी को भार उतारो, पर मैया मैंने हाउ तो कहूँ न देखे।
1: चल लाला, तुझे सबरे अवतार ते नहीं धारण करे।
0: हाँ मैया, मैंने
1: ना लाला, देख सांची सांची कह दे।
0: अरे ना मैया, मोते तो एक दिन बाबा अथाई पे बैठो बैठो कह रहे हो मैया।
1: हाँ जी, तो मैं सोच रही कि मेरो छोटो सो लाला इतने बड़े काम कैसे कर सके। तेरी बलिहारी जाऊ लाला, छोटे मोड़े थे ऐसी बड़ी बड़ी बात ना करें, ना तो कान पक जाएंगे।
0: सुन मैया,
1: कह लाला।

0: देख मैया, एक दिन मैंने माटी खाई ना, तो मैया तूने मेरो मुहड़ो फाड़ के देखो।
1: हाँ ना?
0: तो मैया मेरे मुहड़े में तीन लोक चौदह भुवन तूने देखे ना मैया?
1: हाँ लाला देखे।
0: और मैया तू डर पे गई, पर मैया तूने कहूँ हाउ तो ना देखे।
1: अरे लाला वा दिना तो मैंने तेरे मुँह में तेरे संग के सब सखा, तेरो बाबा, गिरिराज पर्वत और न जाने कहाँ कहाँ देख लियो, पर हाउ तो मैंने ना देखे।
0: अरे तो बस मैया, जब तेने हाउ हुआ ना देखे तो मैया हाउ है।
2: पर लाला तू जाए कहाँ रहे हो?
0: देख मैया तू मुझे खिलवे को जान दे, तू मुझे हाउ से मत डर पावे।
2: अच्छो लाला, पर जल्दी लौट आइयो।
0: अच्छो मैया मैं खेल

0: राम राम भैया, राम राम
1: राम राम।
2: कहे दादा, कैसे बुलाए?
1: अरे भैया, कहाँ आज खेल भी ना चलोगे?
3: खेल भी?
1: हाँ भैया।
3: अरे कहाँ चले वो भैया?
1: अरे भैया, आज बरसाने के गहबर वन में आँख मिचौनी खेलेंगे।
2: बरसाने के गहबर वन में
3: आँख मिचौनी?
4: बरसाने के गहबर वन में आँख मिचौनी, बरसाने के गहबर वन में आँख मिचौनी खेलेंगे।
2: तो चल भैया,
3: चल भैया,
1: चलो भैया।
2: हाँ आ जा भैया।

0: अरे भैया कन्हैया देख ये गहवर बन आ गयो है।
1: भैया ये बन तो बड़ो रमणीक है।
2: हाँ भैया ये बन मोए बहुत ही प्रिय लगे।
0: हाँ भैया अरे तो ये बन क्यों ना प्रिय लगेगो, क्योंकि ये बन श्री राधा रानी को है। और कन्हैया तू ब्रसवान सुता की या फुलवारी को मत मत भे। सुन भैया

0: खेला
1: से खेला वो
2: भैया आंख में चोनी खेलेंगे
0: आंख में चोनी
3: भैया आंख में चोनी खेलेंगे का
2: हां भैया
1: उंगलिया में चटकाऊंगा
3: उंगलिया में
2: चटकाऊंगा ना
3: भैया
2: मैं
3: चटकाऊंगा
2: ना भैया मैं चटकाऊंगा
1: ना मैं चटकाऊंगा
3: ले ले ना मैं चटका
1: रहा हूं हां मैं चटका
3: रहा हूं चल ले भैया छियो
0: ले भैया हमने तो ये पकड़ ली
1: अरे हां भैया तू पकड़
2: ले भैया हमने ये पकड़ ली
1: भैया पोत तो पे
0: पोत तो पे दे भैया पोत
2: मत जा भैया
1: को तुम्हें मिस हां भैया हम तो आगे
4: अट्टा वट्टा कुए का से को मेरा मन का चिल्ला भैया
5: आ जा
4: आ जा
3: अरे भैया ए तू चिल्लियो मैंने
0: मिचलियो
1: हां तू चिल्लियो
0: चलो भैया मैं मिच को चलो चलो भैया चलो
4: अट्टा वट्टा कुए कासी को मेरा फूटे आ जा भैया
0: आऊं भैया मैं
4: आ जा भैया
0: ले भैया मेरे को चीज को देखो और भैया देख हम पे दोनों पे पोत आ गए पर दादा कन्हैया बना आयो
1: अब के
0: यार ये छिपना चाहिए
1: अब के यहीं पे पोत उतार दूंगा मैं
0: देख भैया आपके तू कूच छिप लियो पोछो पे आवे वो
4: अच्छा
1: दुबक जा
0: दुबक

0: आइयो लाला तिहारी गोद भर दऊ।
1: अच्छा जी, अब तो तुमने गोदहु भर ली, अब तो हमें जान दे।
0: लाला गोद तो भर गई, पर मन तो ना भरो।
1: अरे मैया, पर हमारी मैया बात देख रही होगी।
0: अच्छो लाला, सांझ हेवे बारी है, मैया जसोदा तिहारी बात देख रही होंगी। जागर मोहन आवत रहियो, महर हमारी बात चलावे, पाला गन मेरो कहियो। हे लालन, जी तो तिहारो ही घर है, सो आम ते ही रहियो। और तिहारी मैया जसोदा हमारी बात चलावे तो हमारा पायन लगनो कहियो।
1: अच्छो मैया, तो हम तो जा रहे।
0: जाओ लाला।
1: अरे ओ भैया ग्वाल वालो।
2: हाँ भैया।
1: अरे नहाओ भैया।
3: आए दादा।
4: कह रहा है तू कहाँ चले गए हो?
1: अरे भैया तुम जन कहाँ चले गए? देखो मुझे अकेलो जान के बरसाने की गोपी चोर चोर करके पकड़ के ले गई।
4: अरे गोपी पकड़ के ले गई?
5: बरसाने की छोरी। अरे बरसाने की छोरी पकड़ के ले गई यार।
4: क्यों रे, फिर कहाँ गए हो भैया?
1: फिर भैया मैं कीरत रानी जी ने अपनी गोदी में बैठा के पुचकार के भैया मुकु बड़े बड़े सुंदर सुंदर मेवा पकवान मिठाई मुए खवाई।
5: अच्छा
1: हाँ भैया, और मुए गाड़ी गब्बाई मुकु।
5: अरे याके तो खूब मेहमानी हुई।
4: जा भैया, हम तो ते ना बोले। अरे देख मेहमानी खावे कु तो तू, और झाड़ झुकते में दूर फागवे कु हम तो ते ना बोले।
5: अरे भैया खेल में आमे ना है तेरे।
1: अरे ना भैया, तुम घर को चलो, और घर तुम्हें सुंदर सुंदर मेवा पकवान मिठाई और माखन मिश्री खूब खवाऊंगा।
5: माखन मिश्री खवावे हो?
1: चल भैया चल।
4: अच्छा एक काम कर, गैया ने घेर ला सबन।
1: अच्छा भैया मैं घेरू, भैया तुम घेरो अपनी।

0: मैं कब से तेरी बात देख रही हूँ
1: मैया, अब मैं खेल भी ना जाया करूँगा।
0: लाला जो ना जाएगा, कहाँ बात है गी?
1: सुन मैया।

0: भैया तू अपने भूषण ने मुँह पे ले ले और मोकू गुंजा की माला दे दे।
1: अरे लाला काहे को उतारे थे इनको?
0: अरे मैया जब मैं सखान के संग में आँख में चोनी खेल भी जाऊँ तो इन मनी मालान को प्रकाश है जाए सो झट बाल बाल आए के मोह पकड़ ले सो मैया मोई पे पोत रह जाए। मैया मैं अपने मुहरी तो दुबका लूं पर इनको कहा दुबकाऊं? देख मैया तो आज की बात सुनाऊं।
1: सुना

0: मैया आज मैं बरसाने खेल में चले गए। सो मैया मैं कीरत रानी जी के कोरी में जाएगी दुबक गयो। तो मैया जब भीतर से कीरत रानी जी बोली कि ये हमारी पौरी में कौन है, सखिया पकड़ के लाओ। तो मैया झट सखी मुझे चोर चोर करके और पकड़ के ले गई। तो जब कीरत रानी जी बोली कि सखी ये चोर ना है, ये तो नंदलाला है। तो मैया उन्हें अपनी गोदी में बैठा के पुचकार के मैया मुझे सुंदर सुंदर मेवा पकवान मिठाई मुझे खबाए और मैया गाड़ी गबाई
1: तेरे ताई।
0: हाँ मैया, और सुन मैया,

0: मैया जब बाहर से ब्रह्मान बाबा आए तो वे कहने लगे, ये नंद कुमार ना है, ये तो हमारी कुमार राधा के दूल्हे हैं। तो मैया तो सब मेरी हंसी करने लगे। तो मैया एक बार देख के मेरी नीचे कुनार रह गई।
1: बोला
0: कहा, मैया मेरी सगाई बरसाने
1: है। हाँ लाला, तेरी सगाई माही है रही है, पर तू वहाँ काहे को चलो गयो? अब तो तोय ब्रजरानी ने देख लियो है और वे तो पे प्रसन्न है गई है। जाते अब तो बात बिल्कुल पक्की है गई है। तो पर लाला अब वहाँ मत जाइयो।
0: अच्छा मैया, तो मैया मेरा ब्याह जल्दी ते करवा दे।
1: अच्छो लाला।
2: अभी श्रोता सुन रहे थे हाउ लीला और आँख में चोले लीला। आलेख गोकुल चंद गोस्वामी का था। एफ एम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनते हैं विदुषी भारती सिंह का ख्याल गायन में राग जोक। तबले पर संगत की है रामकृष्ण बोस ने, हारमोनियम पर जमीर अहमद ने।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी श्रोता सुन रहे थे विदुषी भारती सिंह का ख्याल गायन। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है।